0: दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हुए स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीता जयरमन मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कुछ अपने विषय में, अपनी जिंदगी के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, इस दुनिया में भला कौन हैं हम, क्यों हैं हम यहाँ। सीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं मैम?
1: थैंक यू। अभी फिलहाल तो मैं बेंगलोर में रह रही हूँ। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे एंड गॉट मैरिड इन बॉम्बे, देन नाउ सेटल्ड इन बेंगलोर। एक्चुअली मेरी लाइफ पे ये सेकंड लाइफ है। द फर्स्ट लाइफ आई मैरिड टू अ पर्सन एंड हु आई लॉस्ट माय स्पाउस एक्चुअली एंड दिस प्रेजेंट हस्बैंड माय जयरमन was my schoolmate and we got married at age of 60.
0: Okay, that's very nice.
1: And good friends we met and we used to go everywhere together, and all the friends in our class, they all used to come with their spouse. Sir, main aur Jairam akele the, so all friends telling me that why can't you it over and why can't it come forward, and with the permission, I should say, with the permission and agreement of our children, both his children and my children, we are staying together and running our life together, and it's my second life what, and it's a beautiful life.
0: Beautiful. I must say, and friends, did you listen to it? It really doesn't matter whatever goes on in our life. We should keep on going. And more important thing is happily. We should be contented. We should be happy. We should be peaceful. So Sita ma'am has told her story, which is quite beautiful, quite peaceful. Okay, I mean, this is quite modern and, quite, I must say, encouraging for n number of people who are actually sulking in their skins. Ki kya hai, hamari zindagi khatam ho gayi, abhi kya karna hai, bas upar wale ke paas jane ka intezaar karte hai. I don't know, I mean, personally, mere ko ye cheez zyada jamti nahi hai. Well, kisi ki bhavnaon ko main chote hi pahuncha sakta, phir bhi, zindagi ko jeene ka naam hai. चलिए सीता मैम, हम जिस विषय में बात करने आए हैं उसको शुरू करते हैं। आजकल लोग धर्म और आध्यात्म यानी कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को बहुत इजीली मिक्स कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। कई बार गीता पढ़ने की बात कर दी जाती है, विच इज वेरी वेरी हाईली रेटेड, समझ में किसी को आता नहीं है। तो रिलीजन हुआ और आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी हुआ, मिक्स कर देते हैं। मैम, थोड़ा सा अंतर बताइए ना दोनों के बीच में।
1: श्योर, एक्चुअली स्पीकिंग ना, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बोथ आर सेम ओनली, इट्स नॉट द सेम एक्चुअली। व्हाट इज द व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज बिलीफ, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस,
0: राइट,
1: व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय एजेस through our families or communities, whatever you may say. But in a simple sentence, if you say, it's a structured path to connect with the God. Ultimately, religion also teaches that you believe this God, that God. And like, Hindus, we say Rama, Krishna and all. Like Muslims, they say Allah and Jesus in Christianity. So ultimately, the structure is to connect with the God. So that is what this spirituality does. So not much difference, but there is a difference.
0: Right.
1: And it all depends upon how a person takes it.
0: Okay. So, आगे बढ़ते हुए मैम बताइए ना, what should we understand about religion? धर्म क्या है?

0: रिलीजन क्या है और आध्यात्म क्या है?
1: सी रिलीजन, इट्स ओके इफ इट टॉक इन इंग्लिश?
0: या श्योर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल मैम.
1: रिलीजन कैन बी द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी, द एक्चुअल इनर जर्नी. ओके. एंड spirituality is the discovery of self-discovery, feeling connected to God. That is the difference. So one has to understand, see, we cannot combine both together, but once if you want to enter into spirituality, first you should follow your religion also properly. You should not jump from one to other, you know. So, like that, if you follow, definitely आप ना दोनों में अंतर आप पहचान पाओगे.
0: Right, right. I get your point, ma'am. I get your point. Okay, दोस्तों आपको समझ में आया. सीता मैम बहुत आराम से समझा रही है कि अगर हम लोगों को, हमने रिलीजन को फॉलो किया फर्स्ट, रिलीजन को अगर, जो भी रिलीजन हमारा है उसमें हम लोगों को कोई डिफरेंसेस नहीं है. Whatever religion we are following, we should follow first and then we'll go towards spirituality. That's the path. And उन्होंने बताया religion यानी कि धर्म is a way of life and spirituality आध्यात्म is searching for ourselves to God. हम लोगों का connection कैसा है भगवान के साथ, उसकी खोज जो है वो spirituality है. Beautiful. मैम ये डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन धर्म का मीनिंग क्या हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स. तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए मैम, मुझे थोड़ा एनलाइटन कीजिए, थोड़ा बताइए कि रिलीजन फॉलो करने की बात की ना पीछे आपने, सो हाउ शुड वी डू इट, मतलब मेथड 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल मैथड रिलीजन फॉलो करने के लिए.
1: अच्छा, मैं पहले स्पिरिचुअलिटी की बताऊं.
0: हाँ हाँ, ओके ओके. आपको जिधर भी ठीक लगता है.
1: फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअलिटी,
0: ओके,
1: पहले अपने को अंदर से देखना जरूरी है. सो स्टार्ट लुकिंग इनसाइड फर्स्ट. ओके, आपने अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं. मैं, मेरी इस जगह का मतलब क्या है. Where do we go for peace? All this will lead you to the spirituality. See, it's not necessary that आप बहुत सारे books पढ़ोगे, और books are books पढ़ सकते हैं, मगर उसमें क्या होते हैं, कभी we get confused. हाँ, कोई धर्म ऐसे बोलते हैं, कोई धर्म ऐसे, but you listen only to your mind. Whatever you feel is right for you in a right way, you should follow that. This is what I have been doing, and I advise everybody to do the same thing, because that is how you lead towards the spirituality. Religion, what is religion? Religion is, again, see, we have been brought in a community, and we right from our childhood we'll be following, our parents will say go to temple, go do this puja, that and all, you know. So we just follow whatever our religion say, but in that, in due course, we have been, by going to this temple and everything, in due course you develop into spirituality. This is what the difference between the religion and spirituality. How to enter into religion, how to enter into the spirituality.
0: ये तो spirituality के बारे में हो गया मैम. अब religion के बारे में बताइए ना, what methods, practical methods की हम बात कर रहे हैं, कि आपने कहा ना कि हम एक religion follow करें, so how should we follow it?
1: So देखिए, रिलीजन फॉलो करने के लिए कहेंगे हम लोग है ना, जंप नहीं करना चाहिए दिस रिलीजन टू दैट रिलीजन. सो यू रियली गेट कंफ्यूज. सो वंस इफ यू आर बॉर्न इन अ वॉट एवर द कम्युनिटी इज, ओके, सो यू ट्राई टू फॉलो योर ओन रिलीजन. देर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी रिलीजन, बट यू हैव टू स्टिक टू योर ओन रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड यू शुड से अवर रिलीजन एज फॉर द हिंदू धर्म, वी गो टू टेम्पल, राइट. हम लोग के ना पूजा करते हैं घर में, कुछ शांति वगैरह करते हैं. सो यू शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय अदर्स हू टीज एट यू, अरे तुम्हारे तो हिंदू में बहुत सारे गॉड है. नहीं, इट्स नॉट दैट. So you should think that our Hindu dharma is so huge, it has spread everywhere. So that is why so many gods and goddesses.
0: Mm.
1: But whereas we mean that if Christianity follows one Jesus, it's not wrong. See, they are strong and they are able to follow one religion. There is no harm in following one religion, and you should follow your own religion.
0: Okay. Let me understand this, ma'am. Following one religion means, if at all I am a Christian, let's say. To the church every Sunday and praying to God, praying to Jesus, is the method of following religion?
1: See, one has to follow. At the meantime, see, one should be a good human, first of all.
0: Right.
1: All the religion teaches only one thing, be a good human. See, doing good things to the society, whatever the good things you are following, that will be followed by your next generations, you know. So we are the pillars, the parents are the pillars to start our new next generation. So when you don't do anything properly, obviously your children will not be following. So it all depends upon the parents who are the pillars of the family.
0: Okay, that's very nice. So, dosto, jis tarike se Sita ma'am ne yahan par hamein bataya, religion kis tarike se follow kiya jata hai aur kiya ja sakta hai, ek bahut hi pavitra tarike se, pious tarike se, aur hum spirituality ko kaise practice karte hain, wo bhi Sita ma'am ne bataya. चलिए यहाँ पर एक हल्का सा, यस मैम प्लीज.
1: स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग टू टेम्पल पूजा करना. मैं ये नहीं कर रही हूँ, दिस विल नॉट हेल्प. स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट द रियल मतलब है कि हमें अपना अपने आप के अंदर की शांति को ढूंढना चाहिए और कि विच विल टेक यू टूवर्ड्स द गॉड, भगवान को ढूंढना है. This is from journey from outside to inside. When you get disturbed and not able to handle the situation, man ko ekdam shant aur stable rakhna chahiye. It is very difficult, but nothing is impossible in this world. Theek hai, panic hone se baat aur bigad jati hai. Andar ki spirituality jagne se, you yourself can find the difference in you, and that will reflect on your face also. Kabhi koi sadhu sant ko dekhte hain, who are too much into spirituality, you can really see the bliss on their face. Why this is coming? Because they've already understood, they have gone inside and they have understood the reason of their coming into this world. That is why Ramakrishna Paramahamsa, Satya Sai Baba, and all those people, Vivekananda, everybody, because they understood what is really is there inside them, what for they have come to this world. So they

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सीता मैम, आपने बहुत कन्वीनियंटली, बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया कि किस तरीके से हम लोग आज के वक्त में स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब हम लोग अपनी कंपनीज में देखते हैं, बट हमारे पास बहुत इजीली टूल्स अवेलेबल हैं जो हम अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपने पुरानी बात भी बताई कि जब आपकी फैमिली में आप खेल के आते थे तो क्या क्या होता था। ओके, नाउ हुआ क्या मैम, आपने कहा कि उस जमाने में जब हम लोग थे तो टीवी नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो कंपैरेटिवली इट वाज इजी कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं। लेकिन आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है मैम, अब उसको हम डिनाय तो कर नहीं सकते, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक भी नहीं सकते। आफ्टर ऑल अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया को ही यूज करते हुए कर रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया को हम अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस होने के लिए कैसे यूज करें मैम, इसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए ना।
1: सोशल मीडिया इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, इट ऑल डिपेंड ऑन एन इंडिविजुअल हाउ ही और शी टेक्स। एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है, आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज, ऑल दोज मीडियाज आर देयर, इन दैट यू कैन रियली See, even when you are traveling also, or when you are stressed off, you can hear to nice soothing bhajans and nice soothing instruments, which will release your stress. Because that is what is happening in all those this thing, you know, like stress management companies. What they do is they make you sit silent, calm, and they play some music, and they say that you do meditation. See, meditation is not that easy what you all think, but it will make you perfect by doing practice. To me, when I started my meditation, hardly I was able to sit for 5 minutes. So you cannot expect, aaj maine baith gayi, so tomorrow I should get that. It's nothing you can get immediately. It is not Swiggy or Maggie, within 2 to 10 minutes you get everything, right? Sitting at home you get everything. It's not that way. But the practice makes you perfect. You should, I mean, they have to put, for anything you have to put.

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सीता मैम, कई सारी बातें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है आज आपकी बातें सुनकर। बहुत सारे यंग जनरेशन भी आपकी बात सुनकर महसूस कर रही होगी कि आप जो कह रहे हैं वो सेंसिबल है। मोर ओवर, अपनी जिंदगी को खुश और पीसफुल बनाने का जो तरीका है वो आपने एग्जेम्प्लीफाई भी किया है इस उम्र में आके। तो जाहिर सी बात है, यंग जनरेशन को तो आपसे कनेक्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दे वुड फील हैप्पी दैट ओके, सीता मैम इज वन हु इज क्वाइट मॉडर्न एंड ट्राइंग टू मेक हर लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी, तो व्हाई शुडंट वी फॉलो हर। तो अगर यंग जनरेशन आपके इस प्रोग्राम को सुनकर सीता मैम आपको फॉलो करने की सोचे कि चलिए सीता मैम से कुछ सीखते हैं और शायद सीता मैम कुछ अच्छी बात कह रही हैं, सो लेट मी लर्न फ्रॉम सीता मैम, तो आप यंग जनरेशन को 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड देना चाहेंगे सो दैट दे कैन बिकम रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल? प्रैक्टिकल मेथड बताइए मैम।
1: अपने आप पे करना है या अपने बच्चों के ऊपर करना, ये जरा बताइए मुझे।
0: मैम फ्रैंकली जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत लोग पेरेंट्स हों, हो सकता है उसमें बहुत लोग यंग जनरेशन हों, उनके बच्चे हों। अब ओके, ऐसा करते हैं मैम, बिल्कुल किसी भी एक प्लेन एंड सिंपल पर्सन के लिए जो भी आपके इस प्रोग्राम को सुने।

0: diverting, I should say. Diverting, I think that will be a right word
1: right.
0: for this. Yeah.
1: Right. Amazing. Well, thank you so much, ma'am, for your time. And आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो बहुत प्यारा मेथड है, आराम से अडैप्टेबल है, आराम से समझा जा सकता है. सीता मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, सीरियसली, जेन्युइनली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी.
2: ॐ भास्कराय नमः.
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहिए ना।
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
0: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: ये है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
0: कहिए कहिए ना।

पेड़ के नीचे वाली क्लास। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी स्कूल की सबसे पहली याद क्या है? कोई क्लासरूम, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई शरारत, या फिर वो पहला दिन जब आप नए बैग और नई बुक्स लेकर स्कूल गए थे? हम सब के पास स्कूल की कुछ खूबसूरत यादें होती हैं। किसी को ब्लैक बोर्ड याद आता है, किसी को लंच ब्रेक, किसी को स्कूल बेल, और किसी को वो टीचर जो हमेशा कहते थे, ध्यान से पढ़ोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर स्कूल बिल्डिंग ही ना होती तो, अगर क्लासरूम्स ही ना होते तो, अगर ब्लैक बोर्ड ही ना होता तो, अगर आपके पास पेंसिल तक ना होती तो, क्या फिर भी जिंदगी बदल सकती थी? आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है, एक ऐसे छोटे से गांव की कहानी है, और एक ऐसे पेड़ की कहानी है जो बहुत साल पहले जन्मा था।

एक सपने की कहानी। आज के पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि उसमें मुश्किल से 100 लोग रहते थे। ना पक्की सड़कें, ना बिजली, ना लाइब्रेरी, ना लेबोरेटरी और ना ही कोई स्कूल बिल्डिंग, बस एक पेड़। जी हाँ, एक पेड़। और उस पेड़ के नीचे लगती थी क्लासेस। वही क्लासरूम था, वही स्कूल था, वही सारी दुनिया थी। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था हरगोबिंद खुराना। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, और अगर आज तक नहीं सुना तो आज से जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है विश्वास की। ये कहानी है उस एक इंसान की जो आप पर भरोसा करता है जब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट होती है। हरगोबिंद के पिताजी एक पटवारी थे, अमीर नहीं थे, बड़े अफसर नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दौलत थी, एक सोच, एक यकीन। उनका मानना था कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे चाहे हालात कुछ भी हों। कहते हैं पूरे गांव में सिर्फ उनका एक ही परिवार था जो पढ़ा लिखा था। सोचिए, जहां लोगों को शायद पढ़ाई की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, वहां एक पिता अपने बच्चों के लिए सपना देख रहा था। और कई बार सपने देखना भी एक हिम्मत का ही काम होता है दोस्तों। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि एजुकेशन की शुरुआत स्कूल से नहीं होती। एजुकेशन की शुरुआत घर में किसी एक विश्वास से शुरू होती है, किसी की माँ के हौसले से, किसी एक पिता के सपने से, किसी टीचर के भरोसे से। हर गोबिंद बड़े हुए, स्कूल खत्म हुआ और फिर हर रोज 1 घंटे पैदल चलकर पढ़ने जाते। चाहे बारिश हो, धूप हो, थकान हो, सफर जारी रहा। स्कॉलरशिप मिली, लाहौर पहुंच गए, फिर लिवरपूल, फिर ज्यूरिक, फिर कैम्ब्रिज, फिर कनाडा, फिर अमेरिका। एक छोटे से गांव का लड़का, दुनिया के ऐसे कोई कोना नहीं था जहां वो नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल है कि वो भाग किस चीज के पीछे रहे थे? पैसे के, शौहरत के, नोबेल प्राइज के? जी नहीं दोस्तों, वो भाग रहे थे एक सवाल के पीछे। दुनिया के सारे बड़े लोग अक्सर किसी ना किसी सवाल के पीछे ही भागते हैं। किसी को सितारों का राज जानना होता है, किसी को समुंदर की गहराई नापनी होती है। और हर गोबिंद खुराना जानना चाहते थे कि जिंदगी का कोड क्या है। हम सबके अंदर डीएनए होता है, जैसे किसी किताब में रेसिपीज लिखी होती हैं, वैसे ही डीएनए में जिंदगी के निर्देश लिखे होते हैं। लेकिन ये भाषा कैसे काम करती है, शरीर को कैसे पता चलता है कि क्या बनना है, यही राज था और यही पहेली थी। और हर गोबिंद खुराना ने अपनी जिंदगी के सालों इसी पहेली के नाम कर दिए। दिन रात प्रयोग, असफलता, दोबारा प्रयोग, दोबारा मेहनत, और फिर एक दिन रास्ता मिल गया। उन्होंने जेनेटिक कोड को समझने में दुनिया की मदद की, ऐसा काम जिसने बायोलॉजी का इतिहास बदल दिया। 1968 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। जी हाँ, नोबेल प्राइज, जो दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है दोस्तों। लेकिन मुझे उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा नोबेल प्राइज नहीं लगता, मुझे सबसे खूबसूरत हिस्सा लगता है वो पेड़। और वो पिता, क्योंकि नोबेल प्राइज से पहले, बहुत पहले, एक पिता का भरोसा आया था। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं, हर सफलता के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो खुद कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। कोई माँ, कोई पिता, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई जीवन साथी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है,
बहुत दिलचस्प, बहुत गहरा, जब हर गोविंद ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ साइंस की बात नहीं की, उन्होंने अकेलेपन की बात की, क्योंकि कभी कभी आप इतना दूर निकल आते हैं कि वापस लौटने की जगह भी वैसी नहीं रहती और आगे बढ़ने की जगह भी अपनी नहीं लगती। सोच के देखिए, जिस गांव में पैदा हुए वो पीछे छूट जाता है, जिस देश में रहते हैं वहां भी कभी कभी अपनापन अधूरा लगता है। बहुत सारे लोग जो अपना शहर छोड़कर बड़े शहरों में आए हैं या देश छोड़कर बाहर गए हैं, वो इस एहसास को पूरी तरह समझ पाएंगे। एक अजीब सा सवाल होता है, मैं बिलोंग कहां करता हूं? और फिर जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो जगह नहीं होते लेकिन घर बना लेते हैं। हर गोविंद जी के लिए वो घर उनकी पत्नी एस्तर थी, और कितनी खूबसूरत बात है ना। कभी कभी घर एक बिल्डिंग नहीं होता, घर सिर्फ एक इंसान होता है, एक आवाज, एक मुस्कान, एक साथ। दोस्तों, आज जब हम स्मार्ट क्लासरूम्स, टैबलेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तब कभी कभी उस पेड़ को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो जरूरी है ही, लेकिन सपने उससे भी ज्यादा जरूरी हैं, रिसोर्सेज जरूरी हैं, लेकिन हौसला उससे भी ज्यादा जरूरी है। और कभी कभी एक पेंसिल ना होने के बावजूद एक बच्चा दुनिया का जेनेटिक कोड समझ सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी पिता ने यकीन किया था। सोच के देखिए, आज की बात बस इतनी सी है। हो सकता है आप किसी बच्चे की जिंदगी में वो टीचर हूं, हो सकता है आप किसी के लिए वो माँ हूं, हो सकता है आप किसी के लिए वो पिता हूं, और हो सकता है आपके एक भरोसे की वजह से कल कोई हर गोविंद खुराना पैदा हो जाए। मैं हूं आज तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे आज की बातें इधर की उधर की ये कहानी। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, तब तक अपने आसपास के सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि कभी कभी एक पेड़ के नीचे शुरू हुई पढ़ाई नोबेल प्राइज तक पहुंच जाती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: गोलू ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। सर, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इंस्पेक्टर ने पूछा, अबे कौन दे रहा है धमकी? गोलू ने कहा, सर बिजली वाले बार बार कह रहे हैं बिजली का बिल भर दो नहीं तो काट देंगे।

नाक का सवाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक चीज के बारे में बात करूंगी जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद कभी उसके बारे में सोचते नहीं। आपकी नाक। जी हाँ, आपकी नाक। और अगर आप हिंदी में किसी की इज्जत की बात करना चाहते हैं तो भी नाक ही बीच में आ जाती है। खानदान की नाक मत कटवाना, हमारी नाक ऊंची कर दी। नाक का सवाल है। अजीब बात है ना, दिल को प्यार से जोड़ा जाता है, आंखों को सपने से, लेकिन इज्जत को नाक से जोड़ा गया। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हजारों सालों से भारत में नाक सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं थी, ये सम्मान का प्रतीक थी, गौरव का प्रतीक थी, पहचान का प्रतीक थी। और इसीलिए बहुत पुराने समय में जब किसी को सजा देनी होती थी तो कभी कभी उसकी नाक काट ली जाती थी। सोचिए, मौत नहीं, जेल भी नहीं, बस नाक काट दी जाती थी। और फिर पूरी जिंदगी इंसान को अपने चेहरे के साथ साथ अपनी सजा भी उठानी पड़ती थी। लोग देखते थे, उंगली उठाते थे, पहचान जाते थे, ये वही इंसान है ना, ये वही अपराधी है ना, ये वही व्यक्ति है ना जिसे समाज ने ठुकरा दिया। मुझे लगता है कई बार शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफ सामाजिक अपमान देता है। जख्म तो भर जाते हैं दोस्तों, लेकिन नजरों के तीर बहुत देर तक चुपते रहते हैं। और फिर 2600 साल पहले एक व्यक्ति ने शायद यही सोचा। उसने सोचा, गलती अपनी जगह है, सजा अपनी जगह है। लेकिन क्या किसी इंसान से उसका चेहरा हमेशा के लिए छीन लेना ठीक है? क्या उसे जिंदगी भर अपमान में जीने के लिए छोड़ देना ठीक है? और उस वक्त उस व्यक्ति का नाम था सुश्रुता। दोस्तों, हम सब ने डॉक्टर्स के नाम सुने हैं, साइंटिस्ट्स के नाम सुने हैं, इन्वेंटर्स के नाम सुने हैं, लेकिन कभी कभी इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम स्कूल की किताबों में भी पूरी जगह नहीं पा पाते। सुश्रुता उन्हीं नामों में से एक है। लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व, आज से करीब 2600 साल पहले, ना मॉडल हॉस्पिटल्स, ना एनेस्थीसिया, ना एमआरआई, ना सिटी स्कैन, ना लेजर, ना प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स। और उस दौर में एक व्यक्ति सर्जरी के बारे में ऐसी बातें लिख रहा था जिसे पढ़कर आज के डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। नाम था सुश्रुता संहिता, एक ग्रंथ, 184 अध्याय, हजार से ज्यादा रोगों का वर्णन।

से अधिक सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये सब उस समय जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत समझ रहे थे। लेकिन सुश्रुता की सबसे अद्भुत खोज क्या है? नाक को दोबारा बनाना। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। 26 साल पहले सोचिए किसी व्यक्ति की नाक काट दी गई, चेहरा विकृत हो गया। सुश्रुता ने कहा हम इसे दोबारा बना सकते हैं। उन्होंने एक तरीका बताया, माथे या गाल की त्वचा का एक हिस्सा लेकर उसे नाक के आकार में लगाया जाए, नाक के दोनों छेदों में छोटी नालियां रखी जाएं ताकि सांस चलती रहे, फिर धीरे धीरे वो त्वचा पुराने शरीर का हिस्सा बन जाए। आज सुनने में यह आम सा लगता है, लेकिन 2600 साल पहले ये किसी जादुई कहानी से कम नहीं था। और मुझे लगता है यहाँ असली कहानी सर्जरी की है ही नहीं, असली कहानी सोच की है। बाकी सभी लोग सजा देख रहे थे, सुश्रुता इंसान देख रहे थे। बाकी लोग अपराधी देख रहे थे, सुश्रुता चेहरा देख रहे थे। बाकी लोग भूतकाल देख रहे थे, सुश्रुता भविष्य देख रहे थे। और फिर समय ने एक अजीब सा चक्कर लगाया। सदियां बीत गईं, राजे महाराजे बदल गए, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन सुश्रुता की बात वही रही। 1792, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश आर्मी के बीच का एक युद्ध। एक बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था, नाम था कवसजी। युद्ध के दौरान पकड़ा गया और सजा के रूप में उसकी नाक और एक हाथ काट दिया गया। एक साल तक वो बिना नाक के जीता रहा। सोचिए उसकी जिंदगी, लोगों की नजरें, लोगों के सवाल, लोगों की फुसफुसाहट। लेकिन फिर 1793 में एक भारतीय वैद्य ने उसकी नाक दोबारा बना दी, बिल्कुल उसी सिद्धांत पर चल के जिसे सुश्रुता ने 2000 साल पहले लिखा था। इस सर्जरी को दो ब्रिटिश डॉक्टर्स ने देखा, वो हैरान रह गए। उन्होंने इसके बारे में लिखा, रिपोर्ट इंग्लैंड पहुंची और यूरोप दंग रह गया। जो टेक्निक उन्हें किसी मॉडर्न इन्वेंशन जैसी लग रही थी, वो भारत में हजारों साल पुरानी थी। और सबसे दिलचस्प बात, आज भी दुनिया भर के सर्जन्स एक मिलती जुलती टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, टूल्स भी अलग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी अलग हो सकती है, लेकिन बुनियादी विचार वही है जो सुश्रुता ने दिया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी में एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। हम अक्सर किसी व्यक्ति को उसकी गलती से पहचान लेते हैं, उसकी असफलता से पहचान लेते हैं, उसके बुरे वक्त से पहचान लेते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी गलती से बहुत बड़ा होता है दोस्तों, अपने जख्म से बड़ा होता है। और शायद इसीलिए सुश्रुता ने नाक नहीं बनाई, उन्होंने सम्मान लौटाया, उन्होंने आत्मविश्वास लौटाया, उन्होंने एक इंसान को उसका चेहरा वापस दिया। और कभी कभी चेहरा वापस देना जिंदगी वापस देने जैसा होता है। आज जब हम सब मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो कभी कभी अपनी विरासत को भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रगति सिर्फ मशीन से नहीं आती, प्रगति इंसानियत से आती है। और सुश्रुता की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर जख्म के पीछे एक इंसान होता है और हर इंसान एक दूसरे मौके का हकदार होता है। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक किसी के जख्म को मत देखिए, उसके पीछे के छुपे हुए इंसान को पहचानिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी चिकित्सा
दवा नहीं, दया होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ बोली, कहाँ हो बेटी? रिंकी बोली, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है माँ, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आप कहाँ हो? माँ बोली, थिएटर में बेटे, तुम्हारे ठीक पीछे बैठी हूँ, ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना।

तरक्की बड़ी या तमीज। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जो तेजी से बदल गई हैं। कल तक जो चीज सपना लगती थी आज वो आम बात है। मोबाइल लग्जरी हुआ करता था, आज हर जेब में है। हवाई जहाज में सफर कभी खास लोगों के लिए हुआ करता था, आज आम आदमी भी आसमान नाप रहा है। बड़े बड़े मॉल्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, एक्सप्रेसवेज, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट होम्स, सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है। लेकिन एक सवाल कभी कभी दिल में आ ही जाता है, क्या हम भी उतने स्मार्ट हुए हैं या सिर्फ हमारे गैजेट स्मार्ट हुए हैं? सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, अनाउंसमेंट होती है, यात्री कृपया बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाइए, और अचानक ऐसा लगता है जैसे सबको एक ही वक्त में दुनिया बचानी हो। जिन लोगों की सीट नंबर 28 है वो भी गेट पर सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, जिनकी सीट नंबर 30 है वो भी, और जिनकी सीट नंबर 32 है वो भी पहले से ही लाइन में खड़े हैं। कभी कभी लगता है प्लेन नहीं, स्कूल की लंच ब्रेक शुरू हुई है। सबको अपनी सीट मिलनी है ये तय है, प्लेन किसी को छोड़कर उड़ने वाला नहीं है ये भी तय है। फिर भी एक अजीब सी जल्दी, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे पहले घुसने वाले को कॉकपिट का एक्स्ट्रा कमरा मिलने वाला हो। और फिर जब प्लेन लैंड करता है सीट बेल्ट साइन अभी भी जल रहा होता है, प्लेन अभी भी पूरी तरह रुका नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग खड़े हो जाते हैं एक हाथ से सीट पकड़कर, दूसरे हाथ से केबिन बैग खींचकर, जैसे एयरपोर्ट के बाहर ओलंपिक रेस शुरू हो रही है। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि 5 मिनट रुक जाने से आखिर होता क्या है, आखिर चला क्या जाएगा। शायद वक्त नहीं, बस सब्र चला जाता है। और फिर आइए मॉल्स में, मॉल्स जहां हर चीज चमक रही होती है, लाइट्स, म्यूजिक, ब्रांड्स, कॉफी और लोग, बहुत सारे लोग। लेकिन कभी कभी लगता है हम शॉपिंग कम और रास्ते रोकने ज्यादा जाते हैं। एक पूरी फैमिली रास्ते के बीच में खड़ी है, 3 दोस्त एस्केलेटर के मुहाने पर ही बातचीत शुरू कर देते हैं, और पीछे 50 लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। किसी ने चिप्स का पैकेट खाया, रैपर नीचे गिरा दिया, किसी ने कॉफी पी, कप बेंच पर ही छोड़ दिया। और फिर हम वही लोग हैं जो अगले दिन सोशल मीडिया पर लिखते हैं इंडिया शुड बी क्लीनर। कभी कभी लगता है हम देश से वो उम्मीद करते हैं जो हम खुद करने को तैयार नहीं होते। और फिर आता है हमारा अपार्टमेंट कल्चर, वो खूबसूरत सोसाइटी जिसमें स्विमिंग पूल है, गार्डन है, क्लब हाउस है, जिम है, सिक्योरिटी है, और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। वहां एक अलग ही दुनिया चलती है दोस्तों, किसने पार्किंग में गाड़ी टेढ़ी लगाई, किसने लिफ्ट में पानी गिरा दिया, किसने रात को आवाज की, किसने मेरे प्लांट के पास अपना गमला रख दिया। कभी कभी लगता है दुनिया के सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अगर सोसाइटी ग्रुप्स में सॉल्व होने लग जाएं, तो यूनाइटेड नेशंस भी रेजिग्नेशन दे देगा। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बहुत गहरी बात छुपी है, हमने तरक्की कर ली लेकिन क्या हमने तहजीब सीखी है? हमने बड़े घर बना लिए लेकिन क्या हमने दिल बड़ा किया है? हमने एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीद ली लेकिन क्या हमने रास्ते देना सीखा है? हमने ब्रांडेड कपड़े भी पहन लिए लेकिन क्या हमने प्लीज, थैंक यू और सॉरी ये 3 शब्द बोलना सीखा है? क्योंकि असली क्लास कपड़ों में नहीं होती दोस्तों, असली क्लास बर्ताव में होती है। एक दरवाजा पकड़कर किसी को पहले जाने देना, एक सिक्योरिटी गार्ड को मुस्कुराकर नमस्ते कहना, एक वेटर को इज्जत से थैंक यू बोलना, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन असल में
यही बातें किसी समाज का कैरेक्टर बनाती हैं, किसी देश का कैरेक्टर बनाती हैं। एक बार एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, बेटा, किसी इंसान की औकात उसकी गाड़ी से नहीं पहचानी जाती। मालूम करना हो तो देखो वो वेटर से कैसे बात करता है। और सच कहूं, उस दिन मुझे समझ आया कि शिक्षा और संस्कार में फर्क होता है। डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन तहजीब आपको इंसान बनाती है। हम चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन एक सुपर पावर सिर्फ सैटेलाइट से नहीं बनती। एक सुपर पावर तब बनती है जब उसके लोग एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं, जब लाइन तोड़ना शर्म की बात होती है, जब कचरा फेंका जाना गलत माना जाता है, जब नम्रता को कमजोरी नहीं ताकत समझा जाता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, तरक्की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन अगर तरक्की के साथ तमीज भी चलती रहे तो सफर और खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि शहरों में इमारतें बनती हैं, लेकिन मुल्क को उसके लोग बनाते हैं, और लोगों को उनका व्यवहार। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की थोड़ी खटकती हुई बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और बात के साथ, जो शायद इधर की हो या उधर की, लेकिन होगी जरूर हम सबकी। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा, हजार के बाद लाख, फिर करोड़, फिर अरब आता है, अरब के बाद क्या आता है? बच्चा बोला, सर अरब के बाद तो ईरान आता है ना।

0: जाएगा।
1: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: रामपोर्ट
1: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। लीजिए दोस्तों, सुनिए कहानी मृणालिनी साराभाई जी की, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध डांसर हैं। बेटियों के लिए पिता इस संसार सागर में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। किसी भी दिशा में चली जाएं बेटियां, पिता को बार बार खोजती और निहारती रहती हैं कि न जाने कब पिता अपनी आंखों से कुछ बात बता दे, उनके मुखड़े पर कोई उम्मीद तैरने लगे। चुपचाप बहुत थोड़ा बोलेंगे पिता और बहुत कुछ मन में रख लेंगे। बेटियों के लिए न जाने क्या क्या अच्छा सोचते रहेंगे पिता, और बेटियां भी कोशिश में लगातार लगी रहेंगी कि पिता को पूरा जान पाएं। पिता अगर अपने कर्म में कोई मिसाल कायम करें

बेटियां भी उस मिसाल को मशाल मानकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए पिता वही हैं जो अपनी बेटियों के पंख और परवाज को विस्तार दें, और ऐसी बेटियां भी खुशनसीब होती हैं जिन्हें पिता द्वारा दिखाए गए आकाश में शानदार उड़ान का मौका मिलता है। वो बेटी भी खुशनसीब थी। बैरिस्टर पिता सुब्बाराम स्वामीनाथन अपनी बेटी के अस्तित्व की धुरी थे। उनकी मुस्कुराहट, स्नेह से सराब और चमकती आंखें। पिता ने एक दिन गर्व से कहा कि ये बच्ची बड़ी होकर कुछ बनेगी, और ये बात बस गहरे असर कर गई। पिता किसी से डरते नहीं थे, बेटी पर भी असर पड़ा उसका। पिता कभी हिम्मत नहीं हारते थे तो बेटी ने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पिता ने बार बार कहा तो बेटी भी बार बार दोहराने लगी कि मुझे नर्तकी बनना है। जब दूसरे ज्यादातर बच्चे खिलौने और चॉकलेट के बारे में सोचते थे, तब वो नर्तकी बनने के बारे में सोचती थी। उसने सबको बता दिया, मैं नर्तकी बनूंगी, नृत्य ही मेरी सांस है, मेरा जुनून है। पिता तभी कुछ अनमने से लगते थे जब वो बेटी वाद्य यंत्र पियानो के अभ्यास से मुंह चुराती थी। बेटी को वो वाद्य यंत्र पसंद नहीं था। दरअसल वो ठहरी चंचल, किसी एक जगह पर स्थिर बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। उसे गति और गतिशीलता से प्रेम था। पिता के सानिध्य में बेटी साहसी और नवाचारी भी खूब हुई। एक बार मंच पर लकड़ी का घोड़ा दौड़ाना था। बेटी ने ऐसी तेजी से दौड़ाया कि घोड़ा ही टूट गया, लेकिन वो नहीं रुकी। जब घोड़ा टूटा तो दूसरे लोग ये मान रहे थे कि नाटिका बिगड़ गई, लेकिन उस बेटी ने नाटिका को रुकने नहीं दिया। सामान्य गति में नाटिका को आगे बढ़ाती ही गई, अपना किरदार ठीक से निभाया। पिता ने कुछ कर गुजरने का जुनून ऐसा पैदा कर दिया था कि वो बेटी जब पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड गई तो वहां भी विदेशी नृत्य सीखती रही। थोड़े से ही समय के लिए अमेरिका में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में भी वो पढ़ी, लेकिन दिल हिंदुस्तान ही खींचता रहा। बहुत मुश्किल था फैसला। सब अलग अलग तरह के नर्तक थे, सब अपनी अपनी कलाओं में माहिर, लेकिन शांति निकेतन में उस बेटी ने देखा कि कोई छात्र एक साथ कई तरह की कलाएं सीख सकता है। एक साथ अनेक प्रकार के नृत्य सीखना भी मुमकिन है। उस छात्रा की दृढ़ता देखकर प्रसन्न गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दिशा देने में चूक नहीं की। गुरुदेव ने भी इस एहसास को मजबूत किया कि मृणालिनी, तुम्हें नृत्य करने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव ने उन्हें अपने नाटक चांडालिका में मुख्य भूमिका दी और उनसे अपने हिस्से की कोरियोग्राफी स्वयं करने को कहा। मृणालिनी ने पहली बार टैगोर के नृत्य नाटकों में भरतनाट्यम की शुरुआत की, जिससे उन्हें पहली बार बहुत सराहना मिली। वो सराहना से बहुत खुश हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा को किसी ने नृत्य के संसार में पूरी तरह से आजाद कर दिया। वो अब जिधर चाहें उड़ सकती हैं। सीखने की तमन्ना इस तरह से मजबूत हुई कि किसी महान गुरु ने भरतनाट्यम सिखाया तो किसी ने कथकली में पारंगत कर दिया, तो किसी ने मोहिनी अट्टम में सिद्ध बना दिया उन्हें। गुरु उन्हें सिखाकर धन्य धन्य हो जाते थे। वो अगर 19 भी सीखती थीं, तो उसे 21 बनाकर पेश कर देती थीं। देश की आजादी के बाद साल 1949 में उन्होंने अहमदाबाद में अपना नृत्य विद्यालय खोला। नृत्य ने ही उन्हें सब कुछ दिया। नृत्य ने ही जीवन साथी महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई तक पहुंचाया। वो मृणालिनी स्वामीनाथन से मृणालिनी साराभाई बन गई। विक्रम साराभाई जब आजाद भारत में आधुनिक विज्ञान की नींव रख रहे थे, तब मृणालिनी साराभाई भारतीय नृत्य और संस्कृति की नींव गढ़ रही थी। नृत्य में उनकी सृजनशीलता और नवाचार को पूरी दुनिया ने पहचाना। दुनिया हर वर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाती है। तब मृणालिनी साराभाई को जरूर याद किया जाता है। अपने पापा की इस बेहद कामयाब प्रिय परी को
97 साल लंबा जीवन मिला और अपने पिता को वो अक्सर याद करती थी। पिता ही मेरी पूरी जिंदगी थे।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ज्योतिष बोला, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? गीता बोली, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथों में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए, क्या क्या हो चुका है।

आकाश के पार, आकाश के आर पार घूम रहे हैं बादल, घूम रहे हैं बादल। खेतों के आर पार हवा है, खेतों में भटक रहा मैं, अपनी मां की खोई हुई संतान। गली के आर पार झूम रही पत्तियां, पेड़ों के पार पक्षियों की चीख पुकार, पहाड़ों के पार दूर बहुत दूर कहीं मेरा भी घर है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

अहंकार और संस्कार में देखिए फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है।

कुछ ऐसे पल होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच विचरती है और ईश्वर का प्रवास यानी कि बाहर निकलने की सांसें हमारे अस्तित्व की जलराशि पर चारों ओर विद्यमान रहता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वो अलग हट जाता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत अहम की सबलता और निर्बलता पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति यह है कि जब थोड़ा सा भी कोशिश करें तो बड़े बड़े परिणाम आ जाते हैं और भाग्य को बदल डालते हैं। दूसरे वो काल स्थल है जब बहुत काम करने पर भी छोटा सा ही रिजल्ट निकलता है। यह सच है कि बाद वाला पहले वाले को तैयार कर सकता है। शायद ये यज्ञ का थोड़ा सा धुआं जो ईश्वर की उदारता को वर्षों से बुलाकर नीचे ला रहा है वही काम आता है दोस्तों। वो व्यक्ति या राष्ट्र परेशान ही रहता है जो जब दैवी क्षण आए तब सोता रहे और उसका उपयोग ना करे, इसलिए कि दीपक को स्वागत के लिए दुरुस्त नहीं रखा गया और पुकार के लिए कान बंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तीन बार लानत है जो बलवान और तैयार होते हुए भी शक्ति को यूं ही गंवा देते हैं और उस पल का गलत उपयोग कर देते हैं। उनके लिए ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता या एक महाविनाश हो सकता है। ऊपर वाले की घड़ी में तुम अपनी आत्मा को ढंग से लगाओ, मिथ्याचार बंद करो, अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चाई दोस्तों यही है, आप कर सकते हैं अहंकार कि मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, काफी सारा धन है, ठीक है किसी को मत बताइए, लेकिन मन ही मन अपने को तो पता ही होता है ना। सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। स्वभाव का सारा कपट जो कभी ऊपर वाले के नेत्रों और आदर्श के प्रकाश के विपरीत आपका बचाव था, अब वही कवच अंतराल में बदल गया है और आघात को आमंत्रित कर रहा है। यदि तुम उस क्षण जीत भी जाओ तो भी तुम्हारे लिए ये बुरा ही होगा, क्योंकि आघात बाद में आएगा और जीत के बीच में तुम्हें नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध होकर तुम सारा भय अलग कर सकते हो, क्योंकि वो घड़ी प्रायः भयंकर ही होती है, पर जो उसके उद्देश्य की सत्यता पर खड़ा रहेगा वही उस पर टिक पाएगा। यदि वो गिर भी गया तो फिर से उठ जाएगा। यदि ऐसा भी लगे कि वो हवा के पंखों पर उड़ रहा है तब भी लौट तो आएगा ही। तुम अपने कान में सांसारिक विवेक को बहुत पास से फुसफुसाने ही मत दो, क्योंकि ये घड़ी अप्रत्याशित है। उस सांस की शक्ति को तुम अपने तुच्छ उपकरणों से मत मान

मापो, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। सबसे ऊपर तुम अपनी आत्मा को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही अहंकार से अलग रखो, तब तुम्हारे पास आगे एक आग चलेगी और तूफान मददगार होगा और महानता के जिस ऊंचे से ऊंचे शिखर को जीता जाना चाहिए उस पर आपका झंडा फहराएगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। हजारों साल पहले से दुनिया में चारों तरफ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेयर करना, पूजा करना, इबादत करना प्रचलित है। सामूहिक जागरण होते हैं, पाठ होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, कीर्तन चलते हैं और इन सब में लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं और ज्यादातर एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना, पाठ या प्रेयर को पढ़ा जाता है, गाया जाता है। इस तरह की सामूहिक व्यवस्था और तरीका कहां से आया? हर धर्म के ग्रंथ इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के नियम बताते हैं और उनमें भी इन सामूहिक प्रेयर्स को करने के लिए बताया गया है। अब ये ग्रंथ या तो परम महान शक्तियों से आए हैं या उनसे सीखकर परम गुरुओं ने यह व्यवस्था इन ग्रंथों में बताई है। पर सवाल यह है कि इस सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या है और क्या उद्देश्य है? कुछ ऐसा है जो इन परम गुरुओं ने समझा और हमें यह सामूहिक आयोजन करने का रास्ता दिखाया। क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि दुनिया के कोने कोने में बने स्कूलों में बच्चे अपनी शिक्षा शुरू करने से पहले सामूहिक तौर पर प्रेयर करते हैं? स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थनाओं का यह विचार कहां से आया, कौन लाया और क्यों? इन सवालों के आसान और साधारण से जवाब हो सकते हैं। सामूहिक प्रेयर से सद्भावना बढ़ती है, सामूहिक प्रेयर से मन एकाग्र होता है, समाज के प्रति अच्छा सोचने और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा का भाव खत्म होता है। और भी इस तरीके के जवाब हो सकते हैं। सामूहिक स्तर के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी यह प्रक्रिया की जाती है। जैसे कोई चुना हुआ मंत्र, प्रार्थना या शब्द को 108 बार या उससे ज्यादा बार जपना। इतने बार जपने के पीछे भला क्या उद्देश्य है? प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट एजर मिशेल ने पॉल टेंपल की सहयोग से 1973 में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉयटिक साइंसेज की स्थापना की। यह इंस्टीट्यूट अपनी तरीके का पहला और शायद अकेला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में बना हुआ है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन, चेतना, अचेतना, विचारों की शक्ति, अध्यात्म, हेल्थ केयर के दूसरे तरीके, मृत्यु के बाद चेतना जैसे कई विषयों पर रिसर्च हो रही है। इनमें से एक रोमांचक रिसर्च विचारों के वजन के बारे में है। जी हां, विचारों का वजन। इंस्टीट्यूट पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी एक विचार में कुछ वजन हो सकता है और कितना, क्योंकि यह बात तो साइंटिफिक तौर पर तय है कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सभी कुछ। अगर एनर्जी का एक समूह एक आकार लेता है जैसे हमारा शरीर, और शरीर का कुछ वजन होता है, तो इस समूह की एक अकेली इकाई का भी कुछ वजन होगा क्या? उस एक इकाई

का वजन नापा जा सकता है? कोशिशें जारी हैं। अब परिकल्पना यह है कि विचार भी एनर्जी है। अगर किसी एक विचार का वजन बढ़ाया जा सके तो शायद वह विचार आकार ले ले। तो किसी विचार का वजन कैसे बढ़ाया जाए? जिस तरह मिट्टी के एक एक कण को मिलाएं तो एक ईंट बन सकती है, उसी तरह अगर एक ही तरीके के विचार को इकट्ठा करें तो शायद उसका एक ऐसा वजन बने जो वह आकार ले ले। बात कुछ कुछ तो संभावित लगती है, क्योंकि मिट्टी के कणों को देखा जा सकता है और इकट्ठा करके उसका वजन बढ़ाया जा सकता है, पर विचार तो किसी ने देखे ही नहीं। पर ऐसा लगता है कि उस विचार में कुछ तो वजन होगा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस एक विचार को करें तो शायद वह विचार कुछ वजन ले ले और आकार में आ जाए। बात समझने में थोड़ी कठिन है, पर यह बात हमारे पौराणिक ज्ञानियों, साधुओं और गुरुओं ने समझ ली थी। आधुनिक रिसर्च तो अब शुरू हुई है। विचारों के वजन बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमारे गुरुओं ने सामूहिक चेतना के नियम बनाए। आराम से समझें, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर एक विचार को दोहराएं तो उस विचार का वजन बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही वो आकार लेने के नजदीक आएगा, यानी कि कैसे ना कैसे हमें प्रभावित करेगा। अब गौर कीजिए कि दुनिया के कोने कोने में होने वाली इस सामूहिक चेतना की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विचार क्या हैं, जिनका वजन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, सबसे आसान विचार जो स्कूलों में प्रेयर्स में दोहराया जाता है, हमें शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, यह एक उदाहरण है। और भी प्रेयर्स हैं, पर उद्देश्य एक ही है, इस विचार का वजन बढ़ाकर मन के विश्वास को मजबूत करना। इसी तरह जब किसी मंत्र का 108 बार या और अधिक बार मनन किया जाता है, कोशिश उसके वजन को बढ़ाने की ही है, जिससे कि उस मंत्र का प्रभाव हम पर पड़े। अब यह सिद्धांत सिर्फ प्रेयर्स या मंत्रों पर ही लागू नहीं होता। सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी भी विषय के विचारों के बारे में हो सकती है। सामूहिक चेतना के कुछ विचार किसी व्यक्ति को राजा बना देते हैं और किसी को रंक, किसी योजना को सफल कर देते हैं और किसी को असफल, किसी देश को प्रसिद्ध कर देते हैं और किसी को नाकारा बना देते हैं। जब कोई एक परिवार या समूह एक तरह के विचार का मनन करता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है और उसका प्रभाव उस परिवार पर या उस समूह पर दिखाई देता है। अब विचार यह करना है कि हम किस विचार के वजन को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: अजय मुक्केबाज, MC मेरी कॉम।
7: भारत की MC मेरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया।
8: अरे भाई, कमाल हो गया, लगातार 4थी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
9: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
8: हाँ?
9: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
8: हाँ,
9: अरे भाई, 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार 4थी बार, अरे कमाल है, मेरी कॉम कमाल है।
10: नवम्बर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
11: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
10: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो,
12: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
13: पापा, मैंने, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
12: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
13: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
12: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
13: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
12: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
11: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
10: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ाचंद्रपुर जिले का गांव कंगहोई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अकाकॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद
11: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
10: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
11: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
10: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
11: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एमबीसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठी बैठी बैठी।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।
0: आओ, आओ। मैडम जी एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे।
1: सुनो ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे अरे, अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डट कर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरी कॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरी कॉम ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरी कॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरी कॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरी कॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
2: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती। 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
3: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
2: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
1: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
2: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।
3: एक अजेय मुक्केबाज, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
5: मेरा प्यारा दोस्त,
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर

0: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था।
0: यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था। इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
0: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
0: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल

0: गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
2: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
3: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
4: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
2: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
4: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
2: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
4: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
2: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
4: क्या?
2: लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। वैसे भी ये

0: सभी बराबर हैं।
1: नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार चुटलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा। अरे आजा, आजा।
2: दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कुंकू करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है।
3: वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: इंसुलिन की कहानी भाग 2।
6: बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी। संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़ खानों में ले गई, जहाँ मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी।
7: 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है।
8: प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें।
9: डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए।
8: जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है, उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है।
9: वेरी गुड।
8: पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है।
9: कौन सी समस्या?
8: हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए।
9: डॉक्टर बेंटिंग, पतझड़ का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है।
8: अच्छा, वो कौन है सर?
9: जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं।
8: अच्छा।
9: वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में PhD की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे?
9: कोलिप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे।
8: जी सर।
9: उनका शोध कार्य होगा रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है

0: और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है इस बारे में?
1: जी सर।
0: और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं, इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे।
1: जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा?
0: मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं।
1: जरूर।
0: अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।
1: बिल्कुल सर।
0: मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा।
1: धन्यवाद।
0: आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे।
1: आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग।
2: बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज।
3: एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम तेजी से होने लगा। सवाल ये था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप अल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है,
4: मैंने कर दिखाया।
1: कॉलिप, शाबाश।
4: थैंक यू।
1: मुबारक हो। ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा।
4: हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था।
1: लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? हमें भी तो बताओ वो तरीका। मतलब विशुद्धीकरण के चरण।
4: मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियोड ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा।
1: हाँ, जरूर आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करें।
4: जी जी, शुक्रिया।
2: बेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर? अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
3: सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहाँ एक मेहमान आया।

0: अंदर आ जाइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
2: बेंटिंग, अरे तुम जोसेफ कितने कमजोर हो गए हो, अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है।
3: बेंटिंग, मुझे डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूं। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है।
2: जोसेफ हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे।
2: जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे।
3: बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है?
2: जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया।
3: बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी।
2: हाँ।
3: पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
2: क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे।
3: क्यों बचकाना बातें कर रहे हो?
2: नहीं,
3: इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
2: नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
1: हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉमसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया।

0: डॉक्टर जेफरी?
1: यस।
0: वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ?
1: आपका मतलब है लियोनार्ड थॉमसन?
0: हाँ वही।
1: उसकी हालत तो बहुत गंभीर है।
0: हाँ?
1: वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है।
0: अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं?
1: जरूर।
0: तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन। इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है।
1: ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं।
0: ठीक है, आइए।
2: डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग!
0: अरे डॉक्टर जेफरी, आइए ना।
1: डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया। लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है।
0: अरे वाह!
1: उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए।
0: हाँ।
1: ये रिपोर्ट
0: लाइए।
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है
1: जी,
0: कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है
1: जी।
2: एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे, अगर हार्मोन इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है।
0: जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा।
3: मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी के बचने की उम्मीद है,
0: और ये उम्मीद जरूर कामयाब होगी।
3: लगा दो इंजेक्शन।
0: बस हो गया।
2: मानव हृदय में कुछ न कुछ आशा हमेशा बनी रहती है, और यही हालत थी फ्रेडरिक जोसेफ और चार्ल्स की। फ्रेडरिक की सारी उम्मीद इंसुलिन पर टिकी थी। कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई। उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी। फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे।
3: बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की।
0: शुक्रिया।
3: जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
0: अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी।
3: कोई बात नहीं दोस्त,
0: बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग।
0: अरे अरे आओ बेस्ट।
1: मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है।
0: अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है?
1: डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है।
0: अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है।
1: जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा।
0: जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ओंटारियो में पहुंच रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा।
1: जी,
0: अपना ख्याल रखना।

0: डॉक्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी।
1: हेलो
2: हेलो बेंटिंग।
1: हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ।
2: बेंटिंग, मैं जोसेफ।
1: अरे जोसेफ, कैसे हो तुम?
2: बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले, मेरी सांसें सहज हो गई।
1: क्या?
2: मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया।
1: सच जोसेफ?
2: और जानते हो बेंटिंग,
1: हाँ?
2: मेरी भूख वापस लौट आई।
1: थैंक गॉड।
2: एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था।
1: ओह जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ।
2: बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग।
1: अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। जोसेफ, याद रखो, ये स्थायी निदान नहीं है। तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ
2: बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: अरे नहीं,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
1: नहीं जोसेफ, नहीं।
2: कैसे करूं?
1: नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के।
1: हाँ, जरूर मिलूंगा।
3: और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है।
0: दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोर ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियोट को उनके इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर ये खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बटना चाहिए था, न कि उनके और मैकलियोट के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था।
1: सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: जानता हूँ सर, जानता हूँ, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियोट। ये बेस्ट थे जो बुनसेन बर्नर के लॉ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे और ये बेस्टी थे सर, जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे। शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे।
4: डॉक्टर बेंटिंक, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: सर, मैं आशा करता हूँ कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूं। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूं सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता।
0: बेंटिंक पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंक ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंक ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी, हर्ट दैट ही इज नॉट सो एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल ट्रस्टीज। बेंटिंक की घोषणा के बाद प्रोफेसर जे जे मैक्लियोर ने भी अपने पुरस्कार की $40,000 की धनराशि डॉक्टर जे वी कॉलिप के साथ आधी आधी बांट ली।
3: कुल मिलाकर सन 1923 एक अत्यंत रोमांचकारी वर्ष था। कृतज्ञ कनाडा राष्ट्र की संसद ने बेंटिंक को $7,500 की सालाना आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।

0: पद को नाम दिया गया बेंटिंग एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च।
1: सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंग को सर की उपाधि से सम्मानित किया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंग ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे। ऐसी ही एक उड़ान T9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी।

0: साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार, जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है, जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफी बढ़ चुकी है और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता हैं वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
5: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही है। किस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
6: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि। अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है। इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता, साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्व पूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है, इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
5: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहां पर उसके पहलू जो है तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहां आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी जो जैविक उद्यमी हैं, और किसानों की एक समस्या रहती थी कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो है वो खोल दी गई है। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं, पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको हर वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहां उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी जो कि एक सफल उन्नत किसान है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहां पर हासिल की हैं, उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरेंद्र राणा जी, और वहीं ये पहुंचे यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आपसे हम यहां जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए, और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
7: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर 2 सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है बहुत ही सफल योजना है, और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है, और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब 2 साल पहले ये योजना चालू की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम पे, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं, और एक आपको मालूम है कि हमारा PGS इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, pgsindia-ncuf.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
5: जी,
7: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है। दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है, लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना वो चालू किया गया है, और देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है, तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है नहीं जुड़ा है उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई जो आज तक नहीं हुआ है कि किसानों के, पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
5: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया गया।
7: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं।
5: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर बात कही जाती है, जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्णचंद्रा ने हमें बताया, काफी संख्या में जो किसान है वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
8: इसमें मुकुल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को
5: जी।
8: मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्णचंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए। उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
5: जी।
8: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
5: जी।
8: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
5: जी,
8: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
5: जी।
8: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
5: जी।
8: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
5: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है
8: जी।
5: जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनोज जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं?
9: डेढ़ साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और किशन चंद्रा सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
5: जी।
9: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीज़ों को खरीदते थे
5: जी बिल्कुल।
9: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफ़ी भलाई हो सकता है
5: जी।
9: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
5: जी,
9: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहा है बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना। तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
5: जी,
9: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
5: जी,
9: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
5: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर,
9: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
5: जी।
9: और इससे किसानों को काफी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तीन तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
5: जी।
9: तीन तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
5: जी,
9: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदभोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
5: जी,
9: कालोनिया। अब इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं, जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
5: जी,
9: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
5: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रही
9: है। मांग भी देखने को मिल रहा है
5: जी। बिल्कुल, बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्रा, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
7: देखिए ये हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पांस है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ 2 साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
5: बिल्कुल
7: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट तक तो 10,000 किसान है।

0: तो 30% तक उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैविक उत्पाद की आपने यहाँ बात कही और हम अक्सर देखते हैं बाजार का जब रुख करते हैं तो जैविक उत्पाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उपभोक्ता तक जब तक असली एक जैविक उत्पाद नहीं पहुंचेगा शायद मांग जो है उतनी ज्यादा निकलकर नहीं आएगी, कैसे पहचान हो सकती है?
0: हाँ देखिये, प्रमाणीकरण बताया आपको, प्रमाणीकरण जैसे आपके मनु जी बैठे हुए हैं ये प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं
1: जी,
0: ये प्रमाणीकरण के साथ साथ बाजारी भी कर रहे हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे इन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया, तो किसानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं,
1: सारी जानकारी
0: उस पर एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन, अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं, तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहां से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है, तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रेजिडुअल टेस्टिंग करते हैं,
1: तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनु जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक हैं वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके?
2: देखिये, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए पीके भिवाई स्कीम में, पीजीएस का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किया तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे
1: जी,
2: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की है, किसी मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे
1: जी,
2: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था, पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी
1: बिल्कुल,
2: उसमें क्या था कि 3 साल आपको जैविक पूरे खेती करनी होगी तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं
1: जी,
2: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद डर रहता उपज ना आ पाए,
2: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुकाव उनका नहीं होता था
1: जी।
2: लेकिन जब ये स्कीम आया, पीके वीवाई का स्कीम आया, जिसमें पीजीएस ग्रीन जो सर अभी बोले हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का
1: जी,
2: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा, जहां रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
1: जी,
2: और क्योंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदि है
1: जी,
2: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
1: जी,
2: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो, और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का
1: जी।
2: पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले 2 साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पे देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
1: जी,
2: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम उससे हम लोग 10-15%।
1: बिल्कुल मनु जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
2: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस
1: जी,
2: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा, तो उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में
1: जी।
2: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अभी 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी,
2: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आगे भी जुड़ेगी, तो जितना ये किसान इसमें

0: जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की उसके किस तरीके परिणाम जो है अभी तक आपको मिले हैं?
2: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,
2: तो वहां से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था
1: जी,
2: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी,
2: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो
1: जी,
2: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो
1: जी।
2: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी,
2: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी,
2: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्योर चाहिए
1: जी,
2: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना डीएपी पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहां उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारे जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: नहीं, अब काफी हद तक इसमें डर कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है।
2: तो
4: कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी हैं, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है। तो इस सब उनके में जागरूकता है, अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है।
2: बिल्कुल, लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसे आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी।
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए। अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में, और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा। तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आएगी, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा, और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो जुड़ना शुरू हो गया। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि डिकम्पोजर यूज करिए। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए।
2: बिल्कुल,
4: जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम करवाए और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है, जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं, तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर ग्यारह क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपकी जो इनकम है वो करीब चार लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब चार गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती है,
2: प्रशिक्षण उन्हें दिया
4: जाता है और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि कैसे कर रहे हैं। हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चले और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को बढ़ा
4: जी दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फार्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में उनसे अनुरोध किया गया
2: जी।
4: वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल एक नई शुरुआत जो है नई पहल ऐसी की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खुली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फिर लाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने तीन सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही तीन डिमांड है, इसी तीन डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो ज्यादा डे टू डे में ज्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: तो अब इसकी लॉन्जिबिलिटी कितने
2: फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मांग सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी,
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 केजी गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी,
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
2: जी।
6: और 7 दिन में, गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है, और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है।

0: थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
1: जी,
0: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
1: जी।
0: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
1: जी।
0: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
1: जी।
0: दूसरी चीज आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
1: जी
0: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से, और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
1: जी।
0: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
2: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णचंद्रा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इस तरह के जो उत्पाद का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
3: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली, इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती केंद्र इसमें इन्वॉल्व था 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
2: जी।
3: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, तब इसको डेवलप किया गया, डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया, ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, तो यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये बनाया गया। तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के, राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना काम इन्होंने गांव गांव जाके किया है वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है
2: जी।
3: और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमें करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है, एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए, जैसे बरसाना में है गौशाला है वहां पर उन्होंने दिया तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया, तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
2: जी,
3: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है, सब हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
2: जी,
3: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा है, और किसान जुड़ते चले जा रहे हैं और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं अपने आप कर दें, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें, तो उसके फायदे अनेक हैं और एक बार जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया 90.8 FM, आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: कि जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान है वो खेती करते हैं जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
5: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
2: जी,
5: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज्यादा से ज्यादा हो
2: जी,
5: तो वहां उनका थोड़ा सा बचत
2: जी।
5: दूसरा जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
2: जी,
5: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
2: जी,
5: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम,
2: वो भी आय का जरिया मान,
5: एक आय का जरिया मान सकते हैं
2: जी।
5: अब जो किसान है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए
2: जी, बिल्कुल,
5: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
2: जी,
5: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए स्टिकर लगाए
2: जी,
5: तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
2: जी।
5: तो बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा, लागत
2: जी, लागत कम हो जाती,
5: लागत कम लगा, उससे उनकी बचत हुई। दूसरा, उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ।
2: बिल्कुल।
5: तीसरा, जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
2: जी,
5: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
2: जी।
5: चौथा, जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट। तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
2: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
5: का आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
2: जी,
5: जहां पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
2: जी,
5: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक गाड़ी चले गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
2: जी,
5: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सके और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें ट्रेन में या रोड में? तो अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
2: जी,
5: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचे
2: उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
5: खराब नहीं।
2: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, तो कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने हैं अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
5: देखिए, उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
2: जी।
5: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहा है जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो
2: जी,
5: क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं।
2: बिल्कुल।
5: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को भेजना है जो वो खेती कर रहे हैं
2: जी।
5: बस उसमें बेहतर इनपुट दे, जैविक इनपुट,
2: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्णचंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ मनु जी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको, जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं, प्रसंस्करण की इकाई है, इसके जरिए उनको भी आय का जरिया मिल सकता है?
3: बिल्कुल मिल रहा है। और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल, इस तरह से आपके साउथ में जाए, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर जो स्पाइसेस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है
2: जी।
3: तो ये जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए, तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास है, दूसरे के देश से दूसरे का इनके पास आता है, तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था, अब ये इस साल से अभी नवंबर से इन्होंने चालू किया, तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्पाइसेस वहां हो रहा है तो वहां से यहां आएगा, तो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा, तमिलनाडु भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट का भी देगा, तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे।
2: बिल्कुल।
3: ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि
2: उपलब्धता हो सकेगी। साथ साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, उत्पाद आपने बताया, डिकम्पोजर की भी आपने बात की, इससे क्या फायदे हुए? लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में, अगर एक किसान की हम बात करते हैं, किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें?
0: आज की तारीख में मुगल जी किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है
2: जी,
0: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल, और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरी चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है
2: जी।
0: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है।
2: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है
2: जी,
0: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है, और बल्कि और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है
2: जी, ये आपका निजी अनुभव है यानी?
0: मेरा अपना अनुभव है जी। दूसरे जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, और समाज को भी चाहिए, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है
2: जी।
0: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है
2: जी।
0: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है
2: जी,
0: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
2: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
0: है। जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है
2: जी।
0: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है, जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
2: जी।
0: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
2: जी।
0: तीसरे आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
2: जी।
0: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
2: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं, और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
3: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक ऊपर शुरू कर दिया
2: जी।
3: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने इस पे ऊपर काम चालू हो गया। और जहां तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
2: जी।
3: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
2: जी।
3: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
2: जी,
3: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है, अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहें, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
2: जी।
3: आपके
2: योगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
3: दिखाएंगे या है
2: जी।
3: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी यही है कि ये सब चीजें आप एक बोतल लेंगे, फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाएगी कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा, और ये कहना मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली है, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3-4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं
2: जी।
3: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है
2: जी
3: स्ट्रेस में है, आपकी रेनफेड एरिया, तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
2: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
3: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपके है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली प्योर उत्पाद खाएं, छह महीने आप अपने बॉडी में चेंज देखेंगे
2: जी।
3: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही, ये सब इससे निवारण है।
2: बिल्कुल डॉक्टर चंद्र, जो किसान है वो तो आपने बताया कैसे जुड़ेंगे, लेकिन उपभोक्ता भी है,
3: उपभोक्ता के लिए भी, मतलब किसानों के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी जमीन को बचाना है तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है। अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहेंगे, इसे मनु जी वगैरह भूल गए, इसमें थोड़ा सा एक काम ये लोग और भी कर रहे हैं कि किसानों के, इन्होंने दे रहा है कि जो भी किसान काम कर रहे हैं उनको आपका जो सीड है, सीड भी वो लोग वहां पर उत्पाद कर रहे हैं, आपस में सीड बांट रहे हैं, तो सीड उत्पादन भी वहां पर,
2: यानी बीज उत्पादन भी, मुनाफा
3: शुरू हो रहा है। और जिसके पास जानवर नहीं है, तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे उद्योगीकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है,
2: बिल्कुल एक पूरी कड़ी है। लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं, यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
3: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा यह है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है, और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है, पोर्टल पर जाइए, आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
2: इस पर सारी जानकारी जो है,
3: सारी जानकारी है, और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
2: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है किसान उस बाजार को समझे, साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र है, यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है, उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी, यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
1: तो जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं, बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव।

0: यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना खुद का अपना प्यारा खास शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी सिर्फ जीते नहीं हैं, उसे हर मिजाज से महसूस करते हैं, हर सफर में कहानी ढूंढ लेते हैं, हर इंसान के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, और हर पल में एक गीत गा देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत वार्म, वाइब्रेंट और सोलफुल पर्सनालिटी जुड़ी हैं, कविता देश पांडे जी। डांस से लेकर म्यूजिक तक, टीचिंग से लेकर ट्रैवलिंग तक, इनकी जिंदगी के हर मोड़ पर एक अलग ही कहानी बनी है, एक अलग ही एहसास है। तो चलिए कविता जी को थोड़ा सा और जानते हैं। आज हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग पे एक और नए खास एपिसोड में। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
2: जैसा नाम वैसा ही महसूस कर रही हूँ, जिंदगी के रंग, एंड देन बहुत जिंदा दिल
1: जी,
2: ऐसा लग रहा है, खुशनुमा।
1: बिल्कुल, आपकी पर्सनालिटी ही, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत ही खुशनुमा है। बहुत सारे लेवल्स रहे हैं, बहुत सारे मुकाम रहे हैं आपके जीवन में, और एक एक करके हम जानेंगे आपको थोड़ा सा और आज के हमारे सफर में। तो क्या आप हमारे साथ हैं?
2: जी बिल्कुल,
1: चलिए।
2: ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ।
1: बिल्कुल, तो चलिए ये खूबसूरत सी जर्नी SN रेडियो पर जिंदगी के रंग गीतों के संग से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है मैम आपसे, बहुत ही सिंपल, कि आपने हमें बताया कि आप बचपन से ही, आपके पेरेंट्स ये जानते थे और मानते थे, क्योंकि कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो बचपन से जानते थे कि आप में एक रिदम है, डांस है, म्यूजिक है, आप एक अलग हटके आर्टिस्टिक सी पर्सनालिटी है। तो बचपन वाली जो कविता थी, वो आपके हिसाब से आज जब आप याद करते हैं तो वो कैसी थी? वो नॉटी थ्री ड्रीमी थी या बिल्कुल एक फ्री बर्ड थी? किस तरह से आप खुद को डिफाइन करेंगे?
2: मैं कहूंगी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, क्योंकि नॉटी भी थी मैं, बट मुझे डर भी लगता था मेरे सिबलिंग्स से, जो मुझे ओवर पार करते थे फिजिकली। और हाँ, तो आई हैड अ वेरी नाइस नॉर्मल चाइल्डहुड। तो बड़ा भाई और छोटी बहन, आई कैन से दैट बुली करते थे मुझे, सो आई वाज नॉट ए, आई कांट से कि मैं बहुत दूध की धुली, ऐसा कुछ नहीं।
1: दैट्स ऑनेस्ट।
2: कुछ करो और छिप जाओ, एंड देन बाद में रोना धोना एंड ऑल दैट,
1: सुमड़ी में निकल जाओ।
2: बिल्कुल।
1: तो कोई एक वाक्या, कोई एक ऐसी बचपन की ऐसी शैतानी जो आज भी आपके और आपके पूरे परिवार के जहन में एकदम ताजा है?
2: ऐसे तो बहुत बहुत बातें हैं जो आज भी याद करती हूँ मैं, और हंसी भी आती है, बुरा भी लगता है, बट देन जो बीत गई सो बात गई, उनको याद करके बस कुछ यादें ही होते हैं, एंड नो मैटर व्हाट यू से, हाउ मच यू से, रह जाती है यादें आपके साथ।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बट फिर भी कोई एक भाई बहन के साथ किया हुआ झगड़ा, या कोई ऐसा यू नो रिवेंजफुल चीज, या कोई ऐसी मजेदार चीज जो बहुत ही चटपटी हो, उस टाइम पे बहुत बहुत डांट पड़ी हो, बट आज वो याद करके हंसी आती है?
2: ओके, आपने ये मतलब बात छेड़ी है, तो मुझे दो तीन बातें याद आ रही है। क्या?
1: बिल्कुल मैम।
2: ओके, सो एक तो ऐसी बात है कि मेरे बड़े भाई और मुझमें 2 साल का अंतर है, मुझमें और मेरी छोटी बहन में हार्डली 2 साल का अंतर है।
1: ओके
2: तो छोटी बहन मतलब मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी, उसे संभालना चाहती थी. ऐसा ऐसा था. और बहुत क्यूट बहुत ब्यूटीफुल बहन मेरी, तो मुझे लगता था कि उसे मतलब मेरा उसको उठाना उसको उसकी देखभाल करना मेरा मतलब कर्तव्य है, ऐसे लगता था. बट मैं खुद ही छोटी थी. तो एक बार ऐसे ही हम लोग बाहर बैठे थे और वो घर के बाहर ना ऐसा ऐसी जगह होती थी जहां पर यू नो प्लेटफॉर्म जैसा
1: जी,
2: तो वहां पे मैं बैठी थी और मेरे सामने मैंने अपनी बहन को बिठाया था. और ये शायद कुछ मैं रहूंगी 4-5 साल की और वो मेरे से एज आई सेड हार्डली 2 इयर्स
1: जी,
2: हार्डली वो 3-4 साल की होगी.
1: बताइए.
2: हाँ, तो वो बैठी है मेरे सामने, मैं मतलब ऐसे पैर फैला के बैठी हूँ, वो सामने बैठी है. और जस्ट बारिश हुई थी शायद, तो पानी जा रहा था नीचे से, तो मैं बड़ी बहन हूं ना तो मुझे दिखाना था उसे छुट्टी को कि देखो कैसे पानी वहां से बह रहा है. तो मैं आई बेंट फॉरवर्ड, तो नेचुरली इवन शी हैड टू बेंट फॉरवर्ड बिकॉज मैं पीछे थी. तो इस झमेले में वो गिर गई.
1: ओहो.
2: और वो जो फोरहेड पे जो निशान है
1: जी,
2: तो वो मुझे आज भी याद सताती है. मतलब जब भी मैं उसको देखती हूँ तो ये तो मेरा दिया हुआ है,
1: ये याद रहता है. बिल्कुल बिल्कुल.
2: और इस बात के लिए मुझे घर के बड़े बुजुर्ग शायद मेरे उम्र के आई मीन टू से दैट नो, मैं जब तक 25-30 साल की हुई तब तक मुझे कोसते थे घर के लोग.
1: बताएं, बताएं. तुम्हारी वजह से उसके माथे पे वो निशान है.
2: बिल्कुल. और जब मेरे दो बच्चे हो गए एंड देन आई गॉट द करेज टू से कि देखिए ये कोई मतलब आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस.
1: आई नो, आई मीन इट वाज इन जस्ट श्योर यू नो बचपन.
2: यस एब्सोल्युटली. एंड मैं उसको दिखाना चाहती थी, मैं बड़ी बहन थी ना, तो उसे पानी कैसे बह रहा है देखो, मैं तो आई एम हैविंग अ गुड टाइम इवन यू हैव अ लुक. ये था. लेकिन उस मतलब वो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मेरी वजह से वो मार्क है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: यस,
1: कोई नहीं, सही में बीत गई तो बात गई. और ये तो खैर होना ही था कहीं ना कहीं. बट ये सब चीजें अब याद आती हैं तो बहुत खूबसूरत एहसास भी होते हैं, उसमें दर्द भी होता है, उसमें फैमिली की डांट भी होती है. बट आई थिंक यही पार्ट है ग्रोइंग अप का. और जो बच्चे थोड़े अलग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी थोड़े अलग ही होते हैं. हम मान सकते हैं कि आप बिल्कुल एक अलग ही बच्चा थे. और मैं इसे बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली में वन ऑफ द मोस्ट यू नो क्या बोलू मैं. मतलब मेरी मम्मी आज भी ये कहती है तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ आएगा. तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो क्या ही समझाएंगे मुझे. तो मैम इसी एहसास से हम सुनते हैं हमारी बचपन की यादों के नाम एक खूबसूरत सा गीत, दिल है छोटा सा.

0: क्या खूबसूरत गीत है ये। सच में ऐसा लगता है बचपन में लौट गए, और ऐसे लग रहा है कि सच में अभी इस समय बारिश हो रही है। मैम आगे चलते हैं, आपको बुक्स का बहुत शौक है, आपने हमें बताया स्टोरी बुक्स भी आपको बहुत पसंद थी, और स्टोरी बुक्स आपका वक्त चुरा लेती थी, आपने हमें बताया। तो आज भी क्या जब आप बुक्स पढ़ते हैं, या क्या आज भी आपकी जो दिनचर्या है उसकी उसकी उसमें आज भी आपके लिए बुक्स एक इमोशनल एस्केप का काम करते हैं? और कोई बचपन में पढ़ी हुई कहानी, कोई ग्रोइंग अप में पढ़ी हुई कहानी जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जिसकी सीख या जिसका असर आपके ऊपर?
1: वैसे तो बहुत सी कहानियां पढ़ा करती थी मैं, ऑलवेज टाइम मिला तो बुक उठा लिया। एंड देन थोड़ी अकल जब आने लगी, सींग जब आते हैं ना उस टाइम पे, तो मैं तो गुड गर्ल, वैसे पढ़ाई में अच्छी थी तो गुड गर्ल जैसी स्कूल की किताब लेकर बैठी हूँ और उसके अंदर कोई बुक स्टोरी बुक छिपाकर।
0: वाओ,
1: मम्मी आ गई तो पूछ लिया उन्होंने क्या कर रही हो, तो मेरे हाथ में तो स्कूल का बुक है। ऐसी शैतानी तो बहुत की है। बट देन एट द सेम टाइम माय फादर न्यू दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ही अंडरस्टूड बिकॉज ही हिमसेल्फ रेड अ लॉट, ही रीड्स इवन टिल डेट। माय मदर नॉट अ रीडर, बट देन ये पापा जो थे, मतलब है, वो क्या करते थे कि मुझे बाहर ले जाएंगे अपने साथ जब वो कुछ काम के लिए जा रहे या घर का सामान लाना है, सब्जी वब्जी, तो उनका मतलब इतना अनयूजुअल यूनिक तरीका था मुझे इनकरेज करना रीडिंग में। तो वो ले जाएंगे और बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं तो बोलती थी कि आप कुछ ना दिलाए, एक स्टोरी मतलब बुक्स का एक स्टॉल था तो वहां पे तब उन दिनों तो बहुत कम पैसों में मिल जाता था ना
0: जी।
1: तो मैं उनको बोलती थी कि आप कुछ मत दिलाइए, मुझे ये चंदा मामा दिला दीजिए बस। यस ये एक, एंड देन घर के पास एक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी और उसके प्रीमाइसिस में वी यूज टू हैव दीज रशियन बुक स्टॉल्स का एग्जीबिशन।
0: वाओ,
1: सो वहां पर मैं जाती थी एंड देन 10-15 पैसों में बुक्स आ जाते थे
0: जी।
1: अब पता चल रहा है कि वो जो भी कहानियां थी किस तरीके से तोड़ मोड़ के यू नो उन्होंने परोसे, बट देन अब व्हेन यू कंपेयर द रियालिटी विद द बुक्स वी द रशियन बुक्स वी यूज टू रीड ऑल दोज, मतलब दूसरे आइडियोलॉजी के, बट देन इट डिड हेल्प मी पिकअप द रीडिंग हैबिट।
0: राइट,
1: एंड देन एक तीसरी बात, मतलब आपको बहुत अजीब लगेगा, आई हैव बीन अ वेरी फ्रेंडली पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड
0: जी।
1: ओके, तो मेरे जो हम उम्र थे तो उनके साथ खेलो, उन लोगों का खेलना अलग होता था और मैं बोर हो जाती थी थोड़ी देर बाद। मैं बेसिकली वेरी आर्टिस्टिक एंड देन थोड़ी एज आई सेड ड्रीमी नॉटी, सब कॉम्बिनेशन।
0: तो
1: मेरे बड़े फ्रेंड्स होते थे, तो बड़ी लड़कियां हमेशा बड़ी लड़कियां, उनके साथ भी मेरा उतना ही मतलब ट्रू फ्रेंडशिप होता था कि मुझमें और उनमें कम से कम 12-15 साल का अंतर।
0: वाओ,
1: वो लड़कियां आई एम टॉकिंग अबाउट
0: जी,
1: एंड बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन कल्चर
0: जी,
1: सो वहां पे उन लड़कियों को जो टीनेजर्स हैं, जस्ट यू नो कॉलेज में गई हैं,
0: राइट,
1: जस्ट गई हैं, तो उनको घर में बोलेंगे कि नहीं नहीं अकेली नहीं जाना है बाहर।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो वो लड़कियां क्या करती थी कि चलो मेरे साथ, ठीक है, तो उनके साथ मैं खेलने जाती थी, उनके साथ टाइम पास करती थी एंड वो जब बोलती थी ना मेरे साथ चलो
0: जी,
1: तो सेम तरीका उनके

0: साथ बाहर जाऊंगी तो चॉकलेट चाहिए, नहीं नहीं नहीं नहीं स्टोरी बुक दिला दो। उन दिनों चॉकलेट का बहुत, मतलब इट वॉज नॉट ऑल दैट कॉमन यू नो, कभी कभार। एंड देन एक और बात मैंने जो बताया ना कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी
1: जी,
0: ये लड़कियां लाइब्रेरी जाती थी अपने रेफरेंस बुक के लिए,
1: राइट।
0: उस जमाने में ना, मतलब मेरे सीनियर्स, आप इमेजिन कीजिए मेरे सीनियर्स 15 साल बड़े मेरे से, 15-16 साल,
1: राइट।
0: वो लड़कियां कहा, मतलब दे डिड नॉट बाय बुक्स, दे यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, पिकअप द रेफरेंस बुक, कम होम, टेक आउट द नोट्स,
1: राइट।
0: तो उनके साथ मैं जाती थी लाइब्रेरी, तो अगेन आई पिक्ड अप द रीडिंग फ्रॉम देयर।
1: तो माहौल ने बहुत आपको इन्फ्लुएंस किया बेसिकली। कोई ऐसी स्टोरी जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, उन दिनों की याद दिलाती है, उन दिनों के माहौल की याद दिलाती है, या आपके दिल के किसी भी कोने में यू नो वो बहुत एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी किताब जो आप रेकमेंड करना चाहें?
0: एक तो चंदा मामा
1: जी,
0: देन रीडर्स डाइजेस्ट।
1: Oh, nice.
0: When I picked up, see, I was, my medium of instruction was my mother tongue, Kannada.
1: Yeah.
0: So, when I picked up English, I started reading Reader's Digest.
1: Wow, nice.
0: Yes. So, that is the 6th-7th standard mein.
1: बिल्कुल, वो तो एक मिक्स बैक ऑफ फन होती थी, उसमें रिडल्स भी होती थी, गेम्स भी होते थे, एंड ऑफ कोर्स रीडिंग।
0: Amazing magazine it used to be, till one point of time.
1: Until one, absolutely.
0: Yes.
1: Absolutely.
0: Later they started adding those advertisements in the magazine. So reading कम advertisement ज्यादा हो गया, तो मैंने बंद कर दिया पढ़ना।
1: बिल्कुल, जैसे आजकल हमारे ऑडियो स्टेशन हैं उसी तरह,
0: जी,
1: रेडियो स्टेशन की जगह। जी
0: जी जी। सो मैं कहूंगी कि स्टोरीज अगर मैं बताऊं, एक तो रामायण महाभारत की कहानियां।
1: हाँ जी,
0: मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, मतलब बचपन से, क्योंकि वो कल्चर रहा है घर, तो जिसे बोलते जिन्हें बोलते हैं विष्णुपासक, हम वो लोग हैं। तो मेरी दादी करती थी तो मैंने भी फॉलो कर दिया, एंड शी यूज टू सिंग अ लॉट ऑफ भजन्स ऑफ कृष्णा, तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस बहुत है मुझ पर, इवन खान पान में भी।
1: जी।
0: एंड देन शी यूज्ड टू, मतलब परोसती थी वो एवरी सिंगल डे रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियां। एक एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग, आपने मतलब छेड़ दिए बात अगेन,
1: जी,
0: तो फैंटम की कहानियां।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सो ही हैज एंड ही हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन मी फाइट अगेंस्ट evil.
1: Right, right.
0: Okay. चाहे तो mask करके fight करो, but do. Be a ghost, but then do it. Fight.
1: Fight, yes.
0: Fight for the situation which is there.
1: Yes.
0: In front of you. ये जो है, अगर कोई कम है, जो कमजोर है, मदद करो उसकी.
1: बिल्कुल. Robin Hood बनो. Yes.
0: Yes, yes.
1: Amazing.
0: तो वो जो है, that, मतलब मुझे लग रहा है कि वॉट एवर आई हैव बीन डूइंग इन माय लाइफ,
1: जी,
0: नेवर गिवन अप ऑन एनीथिंग,
1: जी,
0: बट यस आई हैव बिकम अ घोस्ट फॉर माय ओन सिचुएशन,
1: राइट,
0: एंड ट्राइड टू सॉल्व।
1: अमेजिंग अमेजिंग मैम, व्हाट अ स्टोरी आल्सो, एंड व्हाट अ रिलेशन विथ योर ओन लाइफ। आई मीन जिस तरह से आपने फैंटम को रिलेट किया अपनी लाइफ स्टोरी से,
0: जी,
1: और आपके खुद के एटीट्यूड से, तो ये दिखाता है कि एक्चुअली बुक्स का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग होता है, और स्पेशली वो जो बढ़ती उम्र में जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो आपके जहन में बस जाते हैं और आपकी यू नो थिंकिंग शेप करने लगते हैं। तभी कहते हैं कि अच्छी बुक्स पढ़ो और अच्छे लोगों से तो मिलो ही, बट बुक्स का आई थिंक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो बहुत ही खूबसूरत मैम, इसी से आगे चलूंगी और आपकी नेक्स्ट जर्नी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, जहां पे आपने टीचिंग में बहुत साल दिए अपने जीवन के, और आपने जिस एज ग्रुप को पढ़ाया वो बहुत ही यंग और वो जो अडोरेबल टॉडलर्स का जो एज ग्रुप होता है उनके साथ आपने डील किया प्री प्राइमरी, तो वो एक्सपीरियंस ने आपको किस तरह से शेप किया? क्योंकि नेचुरली मैं मानती हूं कि हर चीज, हर पड़ाव आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको शेप देता है, कुछ आपकी अंदर ऐड करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, तो टीचिंग ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया? पेशेंस दिया, जॉय दिया, या सिर्फ एक नजरिया, एक सिंपल सरल नजरिया दिया?
0: बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्लोज टू माय हार्ट टॉपिक, मैं बुक्स के बारे में एक आई जस्ट
1: जी
0: क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो बुक्स के बारे में मतलब फैंटम तो बस एक मैंने जस्ट झलक दे दी है, बट मे बी आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट बुक्स, मे बी वी मीट सम अदर टाइम.
1: जी, वी कैन जस्ट हैव दिस होल एपिसोड ऑन दैट. यस,
0: ब्यूटिफुल बुक्स आई हैव रेड एंड वील टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम.
1: यस,
0: नाउ कमिंग टू माय लव्ड प्रोफेशन.
1: जी,
0: जैसे मैंने कहा कि मुझे आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, तो हर उम्र हर एज ग्रुप के लोगों के साथ मेरी अच्छी बनती है आज तक. इन दैट आई हैव अ स्पेशल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, अब से नहीं, इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड.
1: राइट,
0: सो वो बहन के साथ जो हुआ वो बात अलग है, बट देन आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माय कजिन्स, यंगर कजिन्स, जो मेरे से 5-6 साल ही छोटे हैं, बट देन दे आर मदर्स, दे हैव फेथ इन मी, दे न्यू आई वुड टेक केयर, तो वहां से वो बच्चों का जो लगाव है वो रहा है. एंड देन आगे जाके आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बेबी सेट माई नीस वेन माई सिस्टर वॉज वर्किंग इन विन हर स्कूल. हाँ, सो बिकॉज माई सिस्टर माई एल्डर कजिन शी हैड टू गो टू हर वर्क प्लेस, और उनकी छोटी बच्ची थी जो 2-2.5 साल की थी, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू द चाइल्ड. एंड देन दीदी ने कहा कि आप चलोगी मेरे साथ स्कूल, बिकॉज आई वुड फिनिश माई स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज टू बी फ्री इन द आफ्टरनून, तो मैं दीदी के साथ चली जाती थी और मैं रहती थी. इन दैट आई रियलाइज दैट आई हैव दिस स्पेशल अट्रैक्शन टूवर्ड्स दीज चिल्ड्रन एंड आई कैन स्पेंड मोर टाइम. एंड देन आई गॉट इन टू टेकिंग ट्यूशन क्लासेस व्हेन आई वॉज अ चिल्ड्रन एंड आई कैन स्पेंड मोर टाइम. एंड देन आई गॉट इन टू टेकिंग ट्यूशन क्लासेस व्हेन आई वॉज अ टीनेजर, सो अगेन वो इंटरेक्शन रहा. एंड देन जब मैं व्हेन आई गॉट मैरिड वेंट टू पुणे, पुणे सिटी, एंड देन लेटर व्हेन आई हैड माई चिल्ड्रन एंड माई चाइल्ड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, द वे she was at school, the way she my daughter conducted herself in school, the principal of the school approached me and she offered me the job.
1: Amazing.
0: Ji, and every single day I found myself learning something better than yesterday.
1: No,
0: bachche, ya hum log matlab सोचते हैं कि हम किसी को सिखा सकते हैं या सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे पढ़ाते, बच्चे सिखाते हैं हमें.
1: बिल्कुल,
0: सो मेनी थिंग्स. टू बिगिन विथ, एज यू सेड, पेशेंस, द अमाउंट ऑफ पेशेंस द चाइल्ड यू नो पासेस इट ऑन टू यू.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जो एज ग्रुप मेरे साथ रहा करता था
1: जी,
0: तो वो अपना घर छोड़ के द कंफर्ट ऑफ देयर मदर्स लैप, ग्रैंड मदर्स लैप छोड़ के दे वुड कम टू स्कूल. दे माइट हैव क्राइड इन द बिगिनिंग डेज,
1: एब्सोल्युटली,
0: यस, वी वर देयर सेकेंड मदर. ये जो भरोसा उन माओ ने हम पे डाला था और वो जो बच्चे जो हम पे डालते थे, हम पर करते थे, तो आई मेड श्योर दैट I never took advantage of that.
1: Beautiful.
0: Never.
1: Beautiful.
0: And बच्चों ने मतलब मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था अबाउट दिस, क्या छोटे few lines I'll just say.
1: जी,
0: I just started like you know at 11:15 in the morning, क्योंकि मैं afternoon shift में काम करती थी, तो 11:15 in the morning I leave my home on my 2-wheeler. A lot of thoughts, all that has happened at home, my children's homework, the workload at home, looking after the household work, the entire responsibility and all other things. Inko lekar main 2-wheeler pe ja rahi hu and then ट्रैफिक भी बहुत खराब है, मैं ऐसे ही जूझते जा रही हूँ।

0: then the moment I enter the school, I sign, and then I'm waiting at the door of my class, big classroom. The first child comes, and the eye contact the child makes with me, I just forget myself. Totally. And then it's only me and my those children. That's it. And it's a place to be. It's the heaven on earth.
1: Absolutely. Absolutely. I can actually imagine your whole journey. Jis tarah se aapne abhi narrate kiya, I just actually could imagine kaise aap ye pura journey complete karte honge, and how that child, and it's the innocence of the child and the smile they carry, or maybe the tears they carry leaving the, you know, the leaving home, जो उनका दुख होता है उसको देखते कैसे आप पिघल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और आपको सिर्फ वही बच्चा दिखता है. And खैर, you had a garden of children with you in the classroom. तो बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही thank you so much for sharing this beautiful journey of your life with us. And और कोई एहसास अगर आपको याद हो उस time के teaching experience के जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें.
0: It was a common crowded school.
1: जी.
0: बहुत सारे बच्चे होते थे, like, you know, around 50 to 60, I would say.
1: जी.
0: But the workload was distributed equally amongst 5 to 7 teachers. And हमारे लिए मदद भी होती थी. We had, you know, जिनको आप कहे ताई कहते थे मराठी में, ताई.
1: जी.
0: तो we had 2 to 3 of them.
1: Nice.
0: So it was a very well balanced classroom structure.
1: Nice.
0: Beautiful school. मैं आज जो भी हूँ उसका पूरा श्रेय मेरे स्कूल को जाता है. जो अभिनव विद्यालय इन पुणे.
1: जी.
0: मेरे बच्चे भी, the teachers have shaped my children, and I owe it to my mentors there.
1: जी.
0: My guides.
1: जी.
0: So वहाँ का एक एक example, one of the days
1: जी.
0: When I was given some other duty, I was heading one class.
1: हाँ जी.
0: And as I said, it was a common crowded school.
1: जी.
0: हर type के बच्चे होते थे. So there was one child specially abled.
1: Oh.
0: On the autistic side. So जिस बच्चे को मैंने just third day पहचान लिया था कि दिस चाइल्ड नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन. तो एक दो महीने बाद वी कॉल द पेरेंट्स, एंड देन मतलब वो जो भी करना था इट स्टार्टेड. एंड द मदर एंड द चाइल्ड दे वर सो मच, यू नो, मेरे साथ उनका इतना एक सॉलिड हो गया था
1: बॉन्ड जैसा. जी जी,
0: बिल्कुल रिलेशन. और स्पेशली द बच्चा हु वुड इंटरेक्ट ओनली विद द मदर. एंड The next one was me.
1: Yes. Because he could confide, yes.
0: Yes. So, एक दिन यूं हुआ कि I was given some other duty. मैं स्कूल से बाहर गई थी.
1: जी.
0: And my class was being looked after by another senior teacher. तो हम लोग काम खत्म करके स्कूल आए, मैं और बाकी के टीचर्स.
1: जी.
0: ऐसे वापस आते हैं, and then उसी टाइम पे बच्चे they are having their, you know, toilet time.
1: जी.
0: तो सारे बच्चे चले गए थे अंदर, ये अकेला पीछे से आ रहा था.
1: जी.
0: और मैं, एंड वी यूजुअली हम लोग, वी मेड श्योर बिकॉज आई वाज विद द यंगेस्ट स्लॉट, हम लोग बच्चों के सामने नहीं जाते थे क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे टीचर दिख गई, कविता टीचर कहाँ गई थी, एंड देन ऑल दोज अनसेटलिंग हो जाता है. सो वी वुड जस्ट हाइड, एंड आई डिडंट नो दिस माय डियरेस्ट चाइल्ड वाज कमिंग. आई डिडंट नो दैट बिकॉज लॉन्ग कॉरिडोर, वहां से वो आ रहा है और मैं जस्ट निकल रही हूँ.
1: अच्छा.
0: ही सॉ मी, ही टर्न्ड, केम रनिंग टू मी एंड गेव मी अ बिग हग. मी एंड द मदर, वी बोथ हैड टीयर्स इन आवर आईज.
1: जी.
0: तो माँ ने बोला कि यू आर द ओनली वन ही इंटरैक्ट अदर देन मी. एंड ये जो है हगिंग,
1: जी,
0: ये ऐसा वाला हक तो मुझे भी नहीं देता है, शी सेड. एंड आई सेड दैट इज द बेस्ट थिंग आई रिसीव्ड इन माय एंटायर करियर.
1: यस,
0: द बेस्ट थिंग.
1: अ गिफ्ट दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन, आई थिंक.
0: वो अनपैरेलल्ड.
1: एब्सोल्युटली. क्या खूबसूरत एहसास होते हैं बच्चों के साथ। और टीचर्स, अगेन वंस अगेन आई वुड लाइक टू यू नो रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ टीचर। ये प्रोफेशन सच में बहुत थैंकलेस है। लोग बहुत सारे आजकल नहीं जा रहे हैं इन प्रोफेशंस में, बट एक टीचर का जो प्रोफेशन है वो सच में सबसे नोबल, सबसे गिविंग और सबसे लॉन्ग टर्म चेंज का जो कैटलिस्ट है वो क्रिएट करने का प्रोफेशन सिर्फ एक आई थिंक टीचर का ही है। किस तरह से आप ये कच्ची मिट्टी को आप यू नो एक घड़े में एक शेप करते हैं अपने प्यार से, अपनी केयर से। और अगेन, अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा हो उसके साथ इस लेवल का इंटरेक्शन कर पाना कि वो आप में कन्फाइड कर सके और इस तरह से आपके साथ यू नो खुल सके, तो आई थिंक उसको तो आपने अपना पूरा जहान दे दिया एक टीचर होने से। तो थैंक यू सो मच मैम एंड कंग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़े रहे। आई एम श्योर आपने बहुत ही खूबसूरत कर्म संचित करे हैं और आप एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं कहीं ना कहीं। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, खोलो खोलो दरवाजे, तारे जमीन पर फिल्म से।

0: वेलकम बैक कविता मैम। आगे चलते हैं, आपके सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने हमें बताया कि आप एक बहुत एविड ट्रैवलर भी हैं और ट्रैवल ने आपकी पर्सनालिटी को बहुत ब्यूटीफुली शेप किया है, तो आपकी किसी ट्रैवल एनेक्डोट को हमारे साथ शेयर करना चाहें, या कभी सफर में कोई ऐसा साथी मिल गया जो एकदम स्ट्रेंजर था बट आपके लिए गाइड जैसा बन गया, तो वो किस तरह का एहसास था? और इसी के साथ मेरा अगला सवाल इसी में एक सब पार्ट ये है कि आपने इतना ट्रैवल किया है तो आप हमें बता सकते हैं कि ट्रैवल इंसान को किस तरह से शेप करता है, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ट्रैवल क्या एवेन्यूज खोल देता है, वो अगर आप हमारे साथ साझा करें तो।
1: आई वुड लाइक टू गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, इज दैट ओके?
0: जी जी बिल्कुल।
1: एक तो द ट्रैवल इन इटसेल्फ टीचेस यू टू टेक रिस्क।
0: जी,
1: आप अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो एंड देन आपके साथ कोई है या ना, कोई है भी या नहीं भी है, तो भी यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर एंटरिंग एन अननोन प्लेस। तो आई हैव ट्रैवल मेनी टाइम्स अलोन बट मुझे कभी बोर होता ही नहीं, इवन वेन आई एम अलोन I enjoy my own company.
0: जी,
1: वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है, when you travel you meet yourself again.
0: बिल्कुल,
1: you spend that beautiful time, valuable time with your own self.
0: Absolutely, yes.
1: And ये अब जाके मुझे ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मेरे जो गुरु है सदगुरु ईशा आश्रम के, he always says, वो उसका मजाक भी बनाते हैं, but then what he says is, if you don't like your own company, then know that you are the worst person.
0: Absolutely.
1: तो हाँ, but मेरे साथ ये पहले से रहा है कि मैं अकेली travel करती हूँ, अच्छा लगता है, and travel as in बहुत दिनों तक गई हूँ ऐसा नहीं, but then I travel alone, which I really like. As I said, risk factor, you face the risks in life. You know, calculated risk lena bhi sikhati hai. And even, I'm very particular about my food habits.
0: Yeah.
1: So, it has taught me how to handle that in my journey.
0: Bilkul. Very important.
1: And then, aap, safar mein, you meet people.
0: Yes.
1: Wo jo exposure hai, uska ek experience hi alag hai.
0: बिल्कुल,
1: एक्सपोजर का एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे पांच उंगलियां हैं अलग अलग, सो यू मीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल ऑन द वे, सो किसके साथ कितना बात करना है, कितना घुल मिल जाना है और किसको किस हद तक रखना है, ये भी हो जाता है। एंड देन एक मजेदार चीज ये होती है कि घर आने पर पता चलता है कि अरे इतना सामान क्यों लिया मैंने।
0: बिल्कुल, हमेशा, और गर्ल्स के साथ तो ये होता ही है।
1: बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है,
0: ये तो मैंने पहना ही नहीं, ये तो काम आया ही नहीं। जी,
1: सो ये रही छोटी छोटी बातें, बट देन एज आई सेड यू मीट योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग।
0: एब्सोल्युटली,
1: एंड मेन पर्पज इज ऑलवेज यू गो टू न्यू प्लेस, यू नो मोर अबाउट दैट प्लेस, वो सब तो है
0: जी,
1: बट देन ये जो एहसास है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ एंड कैलकुलेटेड रिस्क ले रही हूँ, बिकॉज मैं उस आई एम नॉट दैट कि मैंने कुछ प्लान किया नहीं और ऐसी चल पड़ी, वो नहीं, आई एम नॉट अमॉन्गस्ट दोज
0: जी,
1: मेरा पूरा प्लान रहता है ट्रैवल जो भी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, किससे मिलना है, यूजली। But then what happens on the way, the process of the travel, it is so beautiful, it is so experiential. जो मेरे साथ आज तक है, ऐसे बहुत मिले हैं ट्रैवल में जिनके साथ मैं आज तक आई एम इन कॉन्टेक्ट विद देम।
0: Wow.
1: Yeah.
0: Amazing.
1: Yeah. And now coming to the first part.
0: जी.
1: जब मैं two friends, we went to two friends and a son of one friend. जैसे चार लोग हम लोग दिल्ली से बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर आए।
0: वाओ।
1: तो मुझे थोड़ा सा अस्थमा का मतलब है, इश्यू है।
0: जी जी
1: स्पेशली हाई एल्टीट्यूड पे आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं केदारनाथ होकर आऊंगी
0: जी
1: जा पाऊंगी. बट देन भगवान की बाबा की इच्छा मैं जाकर आई.
0: वाओ
1: वो किसी मिरेकल से कम नहीं है.
0: एब्सोल्युटली वन ऑफ इट्स काइंड.
1: यस एंड देन उससे पहले मैं उत्तराखंड के हर की धुन के लिए ट्रैक पे गई थी.
0: वाओ
1: जी जब मैं वापस आई तो वहां पे आई हैड माउंटेन सिकनेस हो गया एंड देन बट वो मेरी एग्जिट थी एंड देन मेरी जो गाइड थी ब्यूटिफुल सोल शी सेड कि शी इज ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका. सो उसने कहा कि मुझे अक्का आई एम कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मी जरूरत पड़ने पर मैं आपको करूंगी मदद. बट मैं जानती हूँ आप शेरनी हो आप कर लोगी. वॉच देखना नहीं टाइम देखना नहीं हमें कोई डेडलाइन पार नहीं करनी है. शाम हो जाए चलेगा हम लोग एक वन स्टेप एट अ टाइम करते पहुंच जाएंगे बेस तक.
0: Amazing.
1: तो मैं हूँ आपके साथ. ये जो
0: हौसला
1: यस ये जो है ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है अभी भी विच आई डिड इन 2019 में. दैट गर्ल एंड अनदर गाइड लोकल गाइड
0: जी
1: और एक ग्रुप में डॉक्टर थे उनका ध्यान था मुझ पर.
0: हाँ जी
1: लाइक यू नो लाइक
0: मेडिकल
1: सुपरवाइज वो आसपास थे. उन्होंने इतना बोला कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा सो दैट यू डोंट फील दैट यू आर नॉट वेल.
0: यस और यू हैव समथिंग जो आपको रोक पाएगा.
1: फिर मैं आपके साथ नहीं चलूंगा सो दैट यू डोंट फील दैट यू आर नॉट वेल.
0: यस और यू हैव समथिंग जो आपको रोक पाएगा.
1: फिर भी मैं हूँ
0: जी
1: ये जान लो कि मैं हूँ रेडियस में हूँ वन थिंग. एंड देन वो जो गाइड थी मेरी उसने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर है
0: यस
1: बट यूज नहीं करेंगे.
0: यस
1: मैं हूँ. एंड देन नॉट द लीस्ट जस्ट बिफोर दिस माउंटेन सिकनेस अफेक्टेड मी आई मेट अ डॉग.
0: That is, I think that is the best part of the answer.
1: Yes.
0: The mountain ones, yes.
1: Yes.
0: Pahadi doggy, yes.
1: Bilkul. So, you must be aware of.
0: Absolutely.
1: So, as always, Sheru naam tha. The hairy, tall, handsome, beautiful, expressive doggo. He knew just before I started feeling uncomfortable. He knew it before me.
0: Wow.
1: तो वो मेरे साथ चलने लगा. अब हमारे ग्रुप में 25 लोग थे. टू बिगिन विथ व्हाई डिड ही चूज मी
0: जी
1: बिकॉज ही न्यू दैट आई नीडेड हेल्प.
0: एब्सोल्युटली.
1: सो ही वॉक्ड विथ मी थ्रू आउट फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स.
0: माय माय.
1: एंड ऐसे चलता था कि इनिशियली ही वुड बी लाइक 2-3 फीट आगे पीछे. बाद में जब मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी तो ही वुड टेल मी कि स्टॉप.
0: बताइए.
1: लिटरली आई वुड टेक 2 स्टेप्स एंड देन आई वुड स्टॉप. बहुत हालत खराब थी. बट देन शेरू ने मुझे वो मुझे बोलना उसने शुरू कर दिया. ही वुड जस्ट लुक इनटू माय आईज टेक अ ब्रेक लेडी देन आई वुड ब्रेक. ये एंड देन माय गाइड वॉज अमेजिंग गॉड सेंट.
0: वाओ.
1: उसने बोल के रखा था कि इफ यू वॉन्ट टू मतलब इफ यू आर टायर्ड थोड़ा सा पानी सिप पी लो बट यू आर नॉट गोइंग टू सिट.
0: राइट.
1: बैठोगी तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी.
0: बिल्कुल. हिम्मत
1: उठने में.
0: यस
1: उसने.
0: यस
1: सो दिस इज वन अमेजिंग.

0: एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरे anyway, यहीं तक छोड़ देते
1: हैं। आई थिंक गॉड इज कैरिंग यू। जी जी
0: यस। केदारनाथ के टाइम पे यू हुआ कि आई हैड बुक चॉपर का
1: जी।
0: मैं अभी जाकर बैठूंगी उसमें, सीढ़ियां उतर रही हूँ एंड देन बैड वेदर, चॉपर कैंसल्ड।
1: ओ नो।
0: या एंड देन आई वॉज वेरी श्योर कि मैं खच्चर पे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे डर लगता है।
1: करेक्ट।
0: सो मैंने सोच के रखा था कि मैं नहीं। बट देन यहाँ से मुझे घर से जब मैंने कॉल करके बताया कि यूं हो गया, सो मुझे ऐसे बोला गया कि वहां तक गई हो
1: जी,
0: कुछ भी करके जाकर आओ।
1: करेक्ट।
0: करो, बाबा से बात करो और जाओ।
1: करेक्ट। वापस
0: वहां तक, अरे जाओ भाई, करके आओ। यू डोंट नो वेदर यू विल गेट द चांस अगेन।
1: इन जगहों पे तो बाबा का बुलावा है। यस।
0: हाँ। एंड देन आई वेंट बैक, आई इंक्वायर्ड। फिर मुझे जो पसंद नहीं था कि इसमें बैठ के जाऊं
1: जी,
0: कि जो पालकी होती है डोली, उसमें बैठ के जाना, मतलब यू नो आई एम नॉट, आई एम नोबडी।
1: यस।
0: मुझे उठा के कोई ले जाए,
1: क्यों ले जाए? यस, इट्स वेरी, इट इज कम्फर्टिंग। यस।
0: या तो मैं गई बिकॉज दिस वॉज इन द यू नो हाईलाइटेड था कि नहीं नहीं यू हैव टू डू द लास्ट एफर्ट।
1: हाँ जी।
0: तो मैं गई, बात की एंड देन हम लोग निकल पड़े। मैंने मतलब पैर नहीं छुए उनके
1: जी,
0: बट उनको सॉरी बोला कि आप मुझे उठा के लेके जा रहे हो। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी, मैं द एंड मतलब हाफ जर्नी तक मैं रोती रही।
1: ओह माय,
0: इट वाज बोथ, इट वाज बोथ।
1: यस।
0: कि गिल्ट भी था एंड देन दैट ग्रेटिट्यूड एंड देन आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि मैं जा रही हूँ ऊपर
1: आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग। यस
0: यस। एंड इन ये चारों में से एक जो उनका लीडर था, उसने जो मेरी देखभाल की है
1: जी,
0: मेरे सगे बच्चों ने आज तक नहीं किया है कुछ।
1: वाओ।
0: इतना
1: वाओ।
0: यहाँ तक कि वो देख रहा था कि मेरी अगेन हाई एल्टीट्यूड, आई वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड जाते वक्त अलग लोग थे। वहां ऊपर जाने के बाद आई डिसाइडेड टू कम डाउन विथ समवन एल्स।
1: जी जी।
0: वो वहां पे जो बंदा मुझे, उसने आई कांटेक्ट किया और उसने बोला कि माँ जी मैं आपको ले जा रहा हूँ। आई सेड हाउ, मैंने तो आपको फिक्स नहीं किया। वो बोला कि नहीं नहीं मैं आपको ले जा रहा हूँ आगे वापस।
1: बताइए।
0: ही केप्ट ऑल माय बैग्स। और मेरा भी एक है कि मैं भरोसा कर देती हूँ, ज्यादा सोचती नहीं हूँ। वॉट एवर बैग आई
1: हैड,
0: माई फोन, माई वॉट एवर कैश आई हैड, वो सारा मैंने उनके हाथ में दे दिया। देखे मैं मंदिर चली गई अंदर। तो मैंने बंदे पर भरोसा किया,
1: बिल्कुल
0: सोचा नहीं कि ये, मैंने बोला कि चलो ठीक है भाग जाएगा तो जाएगा, देखते हैं।
1: ऐसी चीज, ऐसे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं गट बोलता है यू नो।
0: हाँ हाँ। एंड देन ही टुक मी टू भैरव बाबा ऊपर, जो हर कोई लेकर नहीं जाता,
1: नहीं जाता है, और वो बहुत मस्ट है, वो करना
0: मस्ट है। तो वो किया हमने एंड एज वी केम डाउन इट स्टार्टेड रेनिंग।
1: वाओ।
0: एंड पूरा 4 hours we came in the rains.
1: My mind.
0: And this person 3.5 hours में नीचे लेकर आया मुझे. And he did the things which I will never ever forget in my life. वो मुझे पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं फिर से. मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए. इसमें मेरा पैसा बहुत खर्चा हो गया. But then that is another story. मतलब not to ponder about.
1: जी, बट इट वॉज वर्थ एवरी पेनी। जी जी।
0: वर्थ मोर देन वर्थ,
1: है ना।
0: और वैसे बाबा ने बुला लिया, चले गए, हो गया। सो दिस इज माई अमेजिंग एक्सपीरियंस।
1: बिल्कुल ऐसा लग रहा है सच में, जैसे जो पालकी वाला एक्सपीरियंस है, जैसे सच में भगवान बोलता है ना, मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूँ, मैं उठा के लेके चल रहा हूँ। तो उस तरह का ये एक्सपीरियंस रहा। और सच में जब उनका बुलावा आता है तो आई थिंक सब चीजें एक तरफ और आपको पहुंचना है तो आप पहुंच ही जाते हो डिस्पाइट ऑल ऑड्स।
0: बिल्कुल।
1: बहुत ही खूबसूरत नाम, और बहुत ये ट्रैवल का तो हम एक पूरा शो करेंगे फॉर श्योर। मैं आपसे और बहुत सारी आपकी ट्रैवल एनेक्डोट्स जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने बहुत ट्रैवल किया है, एंड द ब्यूटीफुल नरेटर दैट यू आर, हमें बहुत मजा आएगा आपकी स्टोरीज सुन के। आगे चलते हैं, समय बहुत बलवान है और समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ूंगी। मैम, आपने बहुत चैलेंज भरी लाइफ जी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, बट हम जानते हैं कि बहुत सारी माइलस्टोन्स रहे हैं जीवन में जिनको पार करके आज आप यहाँ हैं जहाँ हैं डिस्पाइट एवरीथिंग। तो वो एक बहुत प्राइड फील करने का भी एक एक्सपीरियंस है, मोमेंट है, बट जब आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, और आपके एक्सपीरियंसेस से जो हमारे गेस्ट हैं जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे श्रोतागण, उनके लिए कोई बहुत प्रैक्टिकल सा मंत्र जीवन जीने का और हमेशा आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ग्रेसफुल, कि लाइफ में जो भी घटा है उसे बिटर नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ना और ग्रेस के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना। तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे लोगों के लिए जो वो अपना के अपने जीवन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं?
0: तनुषा, यू योर सेल्फ आर सच अ मच्योर पर्सन। आपके सवालों में आपके जवाब पूरे हैं।
1: नहीं,
0: सच्ची में आपने वो सारा बोल दिया जो मैं फॉलो करती आ रही हूँ। एक तो एक बात ऐसी है कि आई हैव नेवर क्राइड अबाउट थिंग्स विच हैपन्ड विथ मी, नेवर। हाँ, कभी कभी रोया होगा, ऐसा नहीं बोल सकती कि 100% नहीं रोया। नहीं नहीं, आई डिड क्राई, बट देन वो कहते हैं ना कि रोते रहो, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नो आई
1: वैल्यू करो उसने।
0: यस, एंड देन लाइफ हैज बीन टीचिंग थिंग्स, लाइफ इन इटसेल्फ इज अ टीचर, यू लर्न सो मच एवरी सिंगल डे। एज आई सेड, मेरे दो बच्चे बहुत ब्यूटिफुल है, वो मेरे फोकस रहे कि मुझे इनको देख के इनके लिए अच्छा करना है, नॉट टू पॉइजन देम। ठीक है, उनको इस दुनिया में लाना ये मेरी जिम्मेदारी थी, मतलब इट वॉज माई डिसीजन।
1: बिल्कुल।
0: एंड देन उनको एक सॉलिड सूटेबल चाइल्डहुड देना वॉज ऑलवेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: बिल्कुल।
0: एक सिक्योर चाइल्डहुड देना जो मैंने किया।
1: बिल्कुल।
0: एंड आज दोनों सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, बट देन वो फोकस थे। आई वॉज ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम द चिल्ड्रन आई मेट एट स्कूल।
1: यस,
0: आई वॉज ड्रॉइंग, लिटरली देवर माई सनशाइन।
1: एंड
0: मेरी खुद की एक जो पर्सनैलिटी आप जिसको बोलते हैं कि जिंदा दिल, चलो म्यूजिक लगा है, गाना गाओ, डांस करो, सब छोड़ दो,
1: जी जी जी,
0: रोटियां बना रहे हो, सब्जी पका रही हो, बंद करो गैस, जाके डांस करो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये जो है, दिस हैज केप्ट मी अलाइव।
1: बिल्कुल। स्पोर्ट्स का भी आपको शौक है मैम?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी डिसिप्लिन है, रेजिलियंस सब लाता है। जी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है, करना है मुझे कुछ, यू कैन गिव अप।
1: वाओ मैम।
0: एंड देन I don't know, past life and future life, I don't have any experience about it. But then, आज साथ जो है मेरे हाथ में,
1: बिल्कुल,
0: उसको तो जीना ही चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: एंड यू नो, ऐसे टाइम पे मैं तो सोचती हूँ कि उन लोगों की तरफ देखो, उन सिचुएशंस को देखो, जो हताश है, जो कुछ नहीं कर पाते, तो ऊपर क्यों देखना है कि वो उनकी उनकी जगह हमसे सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक को अपना प्रॉब्लम होता है,
1: करेक्ट,
0: अपने चैलेंजेस होते हैं,
1: करेक्ट।
0: लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट आई हैव अ हाउस,
1: राइट,
0: छत है,
1: right.
0: मैं दो वक्त का खा सकती हूँ, लोग है मेरे साथ, भगवान ने कुछ हुनर दिया है, ये तो है मेरे साथ।
1: बिल्कुल।
0: अगर मैं रोऊंगी तो रोने के लिए तो बहुत है,
1: बहुत कुछ है,
0: सो इट्स माय चॉइस वेदर आई वांट टू सफर और आई डोंट वांट टू सफर।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जवाब मैम, और बहुत रेजिलिएंट स्पिरिट है, जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपसे बात करके एक एनर्जी फील होती है कि हाँ सब कुछ हो सकता है जीवन में फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और एक ग्रेसफुल तरह के तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा बिना बिटर हुए, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बिना पॉइजन किए जैसे आपने बताया अपने बच्चों के जीवन को, जो बहुत इजीली लोग कर लेते हैं, बहुत डाउनलोड कर लेते हैं अपने पॉइजन को, अपने बिटरनेस को, बट वो ना करना बहुत ही एक आई थिंक इट शोज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट

0: हुआ। आखिर में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि आप डांस भी करती हैं, आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हैं और सिंगिंग को आप बहुत सीरियसली परस्यू कर रहे हैं, आप आई थिंक ट्रेन हो रहे हैं प्रोफेशनली इन सिंगिंग, तो थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप अपनी सिंगिंग जर्नी के बारे में बताएं और साथ ही अगर एक खूबसूरत सा गीत हमारे लिए गुनगुना दें तो हम बहुत आभारी होंगे आपके।
1: नहीं, वो तो मेरा, इट वुड बी माय अपॉर्चुनिटी
0: जी
1: टू यू नो सिंग अ लाइन और टू टू द ऑडियंस एंड स्पेशली यू।
0: जी
1: सिंगिंग जर्नी ऐसी है कि आई स्टार्टेड डांसिंग वेरी अर्ली,
0: हाँ
1: जैसे माय पेरेंट्स नेवर स्टॉप मी,
0: जी
1: आई आई वाज गिवन ट्रेनिंग फॉर दैट। क्लासिकल डांस फॉर्म की ट्रेनिंग मुझे मिली है।
0: वाओ
1: एंड देन लेटर इन लाइफ, लाइक 4 इयर्स अगो अगेन आई स्टार्टेड, बट देन थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे इसलिए आई हैड टू स्टॉप कथक डांस, मतलब क्लासेस अटेंड करना।
0: जी
1: अदरवाइज मैं हर वक्त डांस करती हूँ।
0: वाओ
1: डांसिंग
0: क्वीन जी
1: एंड देन सिंगिंग का ऐसा है कि माई सिस्टर हु हैज एन अमेजिंग पहाड़ी वॉइस, बट
0: वाओ
1: शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग।
0: ओ
1: उसको ना ऐसे पब्लिक के सामने गाना गाओ अच्छा नहीं लगता।
0: ओ
1: बट देन बचपन में क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि अरे गाओ इतना अच्छा गाती हो, तो शी वुड से नो, सो आई वॉज आस्क्ड टू स्टैंड नेक्स्ट टू हर कि चलो दीदी है आप गाओ।
0: ओ
1: सो
0: वाओ
1: दैट इज हाउ आई स्टार्टेड शेयरिंग द स्टेज विथ हर बाय
0: वाओ
1: बीइंग हर स्टैंड।
0: वाओ अमेजिंग, व्हाट एन एक्सपीरियंस, वेरी या इंटरेस्टिंग,
1: एंड देन अब ऐसे लगने लगा कि वो गा रही है, मैं कितनी देर ऐसे ही
0: खड़ी
1: खड़ी रहूंगी,
0: रहूंगी
1: बोर हो रही थी मैं।
0: जी
1: एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग अप दोज लाइंस
0: हाउ अमेजिंग,
1: एंड दैट देन माय पेरेंट्स रियलाइज्ड अरे ये भी गा रही है।
0: यस, और ये भी बहुत अच्छा गाती है,
1: दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड,
0: वाओ
1: एन एक्सीडेंटल सिंगर,
0: यस
1: बट
0: इंडीड
1: देन आई केम टू द मेन स्ट्रीम। आई स्टार्टेड
0: अमेजिंग
1: लर्निंग एंड देन नो टर्निंग बैक। माई पेरेंट्स, आई हैव द बेस्ट ऑफ द सेट ऑफ पेरेंट्स,
0: सचपुर मैम, वो दिखता है, वो
1: सचपुर
0: आपकी बातचीत में दिखता है, झलकता है,
1: जी।
0: हाउ ब्यूटिफुल योर पेरेंट्स मस्ट बी, एंड आई वुड रियली लाइक टू मीट बोथ योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन, कि वो कितने
1: यस
0: खूबसूरत पर्सनालिटीज होंगे,
1: जी
0: आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद देम
1: जी
0: जी। अब एक गीत गुनगुना दे अगर हमारे लिए
1: जस्ट
0: तो
1: गिव मी
0: जी मैम
1: 15 सेकेंड्स।
0: जी जी जी

0: My. I don't have adjectives to say anything on this performance, ma'am. I mean, divinely blessed voice. Divinely. I got goosebumps. And I don't want you to stop. I wish you could finish and sing longer for us. But, जैसे मैंने कहा समय बलवान है तो हमें रैप अप करना पड़ेगा. ब्यूटिफुल वॉइस मैम, एंड आई होप आप बहुत जल्दी SN रेडियो पर एक पूरा प्रोग्राम आपका हम सुन सकें आज के कलाकार में. और मैं आपको सिर्फ सुनती ही जाऊं इस डिवाइन वॉइस को. आप सच में डिवाइनली ब्लेसेड हैं, चोजन हैं, यू आर द चोजन वन. एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इतनी खूबसूरत बातें इतनी गहराई से और इतनी सहजता से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू तनुषा, थैंक यू सो मच. बातें तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछे हैं, द वे यू हैव बीन नेविगेटिंग द कॉन्वर्जेशन, वेरी ब्यूटिफुल. यू नो हाउ टू टच द कोर एंड रियली ब्लेस यू.
0: दोस्तों, कुछ कॉन्वर्जेशंस दिल के को बहुत सुकून दे जाती हैं, जैसे कि आज की हमारी कॉन्वर्जेशन. सच में सुकून का जो मतलब है वो मैं आज महसूस कर पा रही हूँ इस कॉन्वर्जेशन के बाद. मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ. आई एम श्योर मेरे जो श्रोतागण हैं जिन्होंने आप सबने आज हमें सुना, आपको भी ये कॉन्वर्जेशन उतना ही सुकून से छुएगी, क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन में सच्चाई थी, एक्सपीरियंस की, अनुभव की और एक जीवन जीने की. सच में जीवन जिया गया. जो तो कविता जी के साथ आज की बातचीत बिल्कुल वैसे ही थी. बहुत सारा म्यूजिक था, बहुत सारा सफर था, बचपन था और जिंदगी के कुछ चैलेंजेस थे. और उस हर रंग को इतनी सिंप्लिसिटी और इतने ग्रैटिट्यूड के साथ जी जाना, ये हमें कविता मैम ने आज सिखाया. वंस अगेन थैंक यू कविता मैम. आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर के साथ, only on SN Radio. Namaskar.
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.

0: मिलों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। लीजिए दोस्तों, सुनिए कहानी मृणालिनी साराभाई जी की, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध डांसर हैं। बेटियों के लिए पिता इस संसार सागर में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। किसी भी दिशा में चली जाएं बेटियां, पिता को बार बार खोजती और निहारती रहती हैं कि न जाने कब पिता अपनी आंखों से कुछ बात बता दे, उनके मुखड़े पर कोई उम्मीद तैरने लगे। चुपचाप बहुत थोड़ा बोलेंगे पिता और बहुत कुछ मन में रख लेंगे। बेटियों के लिए न जाने क्या क्या अच्छा सोचते रहेंगे पिता, और बेटियां भी कोशिश में लगातार लगी रहेंगी कि पिता को पूरा जान पाएं। पिता अगर अपने कर्म में कोई मिसाल कायम करें तो बेटियां भी उस मिसाल को मशाल मानकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए पिता वही हैं जो अपनी बेटियों के पंख और परवाज को विस्तार दें, और ऐसी बेटियां भी खुशनसीब होती हैं जिन्हें पिता द्वारा दिखाए गए आकाश में शानदार उड़ान का मौका मिलता है। वो बेटी भी खुशनसीब थी। बैरिस्टर पिता सुब्बाराम स्वामीनाथन अपनी बेटी के अस्तित्व की धुरी थे। उनकी मुस्कुराहट, स्नेह से सराब और चमकती आंखें। पिता ने एक दिन गर्व से कहा कि ये बच्ची बड़ी होकर कुछ बनेगी, और ये बात बस गहरे असर कर गई। पिता किसी से डरते नहीं थे, बेटी पर भी असर पड़ा उसका। पिता कभी हिम्मत नहीं हारते थे तो बेटी ने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पिता ने बार बार कहा तो बेटी भी बार बार दोहराने लगी कि मुझे नर्तकी बनना है। जब दूसरे ज्यादातर बच्चे खिलौने और चॉकलेट के बारे में सोचते थे, तब वो नर्तकी बनने के बारे में सोचती थी। उसने सबको बता दिया, मैं नर्तकी बनूंगी, नृत्य ही मेरी सांस है, मेरा जुनून है। पिता तभी कुछ अनमने से लगते थे जब वो बेटी वाद्य यंत्र पियानो के अभ्यास से मुंह चुराती थी। बेटी को वो वाद्य यंत्र पसंद नहीं था। दरअसल वो ठहरी चंचल, किसी एक जगह पर स्थिर बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। उसे गति और गतिशीलता से प्रेम था। पिता के सानिध्य में बेटी साहसी और नवाचारी भी खूब हुई। एक बार मंच पर लकड़ी का घोड़ा दौड़ाना था, बेटी ने ऐसी तेजी से दौड़ाया कि घोड़ा ही टूट गया, लेकिन वो नहीं रुकी। जब घोड़ा टूटा तो दूसरे लोग ये मान रहे थे कि नाटिका बिगड़ गई, लेकिन उस बेटी ने नाटिका को रुकने नहीं दिया। सामान्य गति में नाटिका को आगे बढ़ाती ही गई, अपना किरदार ठीक से निभाया। पिता ने कुछ कर गुजरने का जुनून ऐसा पैदा कर दिया था कि वो बेटी जब पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड गई तो वहां भी विदेशी नृत्य सीखती रही। थोड़े से ही समय के लिए अमेरिका में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में भी वो पढ़ी, लेकिन दिल हिंदुस्तान ही खींचता रहा। बहुत मुश्किल था फैसला। सब अलग अलग तरह के नर्तक थे, सब अपनी अपनी कलाओं में माहिर, लेकिन शांति निकेतन

मेटालिका में मुख्य भूमिका दी और उनसे अपने हिस्से की कोरियोग्राफी स्वयं करने को कहा। मृणालिनी ने पहली बार टैगोर के नृत्य नाटकों में भरतनाट्यम की शुरुआत की, जिससे उन्हें पहली बार बहुत सराहना मिली। वो सराहना से बहुत खुश हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा को किसी ने नृत्य के संसार में पूरी तरह से आजाद कर दिया। वो अब जिधर चाहें उड़ सकती हैं। सीखने की तमन्ना इस तरह से मजबूत हुई कि किसी महान गुरु ने भरतनाट्यम सिखाया तो किसी ने कथकली में पारंगत कर दिया, तो किसी ने मोहिनी अट्टम में सिद्ध बना दिया उन्हें। गुरु उन्हें सिखाकर धन्य धन्य हो जाते थे। वो अगर 19 भी सीखती थीं, तो उसे 21 बनाकर पेश कर देती थीं। देश की आजादी के बाद साल 1949 में उन्होंने अहमदाबाद में अपना नृत्य विद्यालय खोला। नृत्य ने ही उन्हें सब कुछ दिया। नृत्य ने ही जीवन साथी महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई तक पहुंचाया। वो मृणालिनी स्वामीनाथन से मृणालिनी साराभाई बन गई। विक्रम साराभाई जब आजाद भारत में आधुनिक विज्ञान की नींव रख रहे थे, तब मृणालिनी साराभाई भारतीय नृत्य और संस्कृति की नींव गढ़ रही थी। नृत्य में उनकी सृजनशीलता और नवाचार को पूरी दुनिया ने पहचाना। दुनिया हर वर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाती है, तब मृणालिनी साराभाई को जरूर याद किया जाता है। अपने पापा की इस बेहद कामयाब प्रिय परी को 97 साल लंबा जीवन मिला और अपने पिता को वो अक्सर याद करती थी। पिता ही मेरी पूरी जिंदगी थे।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ज्योतिष बोला, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? गीता बोली, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथों में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए, क्या क्या हो चुका है।

आकाश के पार, आकाश के आर पार घूम रहे हैं बादल, घूम रहे हैं बादल। खेतों के आर पार हवा है, खेतों में भटक रहा मैं, अपनी मां की खोई हुई संतान। गली के आर पार झूम रही पत्तियां, पेड़ों के पार पक्षियों की चीख पुकार, पहाड़ों के पार दूर बहुत दूर कहीं मेरा भी घर है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

अहंकार और संस्कार में देखिए फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है।

कुछ ऐसे पल होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच विचरती है और ईश्वर का प्रवास यानी कि बाहर निकलने की सांसें हमारे अस्तित्व की जलराशि पर चारों ओर विद्यमान रहता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वो अलग हट जाता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत अहम की सबलता और निर्बलता पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति यह है कि जब थोड़ा सा भी कोशिश करें तो बड़े बड़े परिणाम आ जाते हैं और भाग्य को बदल डालते हैं। दूसरे वो काल स्थल है जब बहुत काम करने पर भी छोटा सा ही रिजल्ट निकलता है। ये सच है कि बाद वाला पहले वाले को तैयार कर सकता है। शायद ये यज्ञ का थोड़ा सा धुआं जो ईश्वर की उदारता को वर्षों से बुलाकर नीचे ला रहा है वही काम आता है। दोस्तों, वो व्यक्ति या राष्ट्र परेशान ही रहता है जो जब दैवी क्षण आए तब सोता रहे और उसका उपयोग ना करे, इसलिए कि दीपक को स्वागत के लिए दुरुस्त नहीं रखा गया और पुकार के लिए कान बंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तीन बार लानत है जो बलवान और तैयार होते हुए भी शक्ति को यूं ही गंवा देते हैं और उस पल का गलत उपयोग कर देते हैं। उनके लिए ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता या एक महाविनाश हो सकता है। ऊपर वाले की घड़ी में तुम अपनी आत्मा को ढंग से लगाओ, मिथ्याचार बंद करो, अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चाई दोस्तों यही है, आप कर सकते हैं अहंकार कि मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, काफी सारा धन है, ठीक है किसी को मत बताइए, लेकिन मन ही मन अपने को तो पता ही होता है ना। सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। स्वभाव का सारा कपट जो कभी ऊपर वाले के नेत्रों और आदर्श के प्रकाश के विपरीत आपका बचाव था, अब वही कवच अंतराल में बदल गया है और आघात को आमंत्रित कर रहा है। यदि तुम उस क्षण जीत भी जाओ तो भी तुम्हारे लिए ये बुरा ही होगा, क्योंकि आघात बाद में आएगा और जीत के बीच में तुम्हें नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध होकर तुम सारा भय अलग कर सकते हो, क्योंकि वो घड़ी प्रायः भयंकर ही होती है, पर जो उसके उद्देश्य की सत्यता पर खड़ा रहेगा वही उस पर टिक पाएगा। यदि वो गिर भी गया तो फिर से उठ जाएगा। यदि ऐसा भी लगे कि वो हवा के पंखों पर उड़ रहा है तब भी लौट तो आएगा ही। तुम अपने कान में सांसारिक विवेक को बहुत पास से फुसफुसाने ही मत दो, क्योंकि ये घड़ी अप्रत्याशित है। उस सांस की शक्ति को तुम अपने तुच्छ उपकरणों से मत मापो, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। सबसे ऊपर तुम अपनी आत्मा को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही अहंकार से अलग रखो, तब तुम्हारे पास आगे एक आग चलेगी और तूफान मददगार होगा और महानता के जिस ऊंचे से ऊंचे शिखर को जीता जाना चाहिए उस पर आपका झंडा फहराएगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, हजारों साल पहले से दुनिया में चारों तरफ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेयर करना, पूजा करना, इबादत करना प्रचलित है। सामूहिक जागरण होते हैं, पाठ होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, कीर्तन चलते हैं, और इन सब में लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं और ज्यादातर एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना, पाठ या प्रेयर को पढ़ा जाता है, गाया जाता है। इस तरह की सामूहिक व्यवस्था और तरीका कहां से आया? हर धर्म के ग्रंथ इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के नियम बताते हैं और उनमें भी इन सामूहिक प्रेयर्स को करने के लिए बताया गया है। अब ये ग्रंथ या तो परम महान शक्तियों से आए हैं या उनसे सीखकर परम गुरुओं ने यह व्यवस्था इन ग्रंथों में बताई है। पर सवाल यह है कि इस सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या है और क्या उद्देश्य है? कुछ ऐसा है जो इन परम गुरुओं ने समझा और हमें यह सामूहिक आयोजन करने का रास्ता दिखाया। क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि दुनिया के कोने कोने में बने स्कूलों में बच्चे अपनी शिक्षा शुरू करने से पहले सामूहिक तौर पर प्रेयर करते हैं? स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थनाओं का यह विचार कहां से आया, कौन लाया और क्यों? इन सवालों के आसान और साधारण से जवाब हो सकते हैं। सामूहिक प्रेयर से सद्भावना बढ़ती है, सामूहिक प्रेयर से मन एकाग्र होता है, समाज के प्रति अच्छा सोचने और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा का भाव खत्म होता है। और भी इस तरीके के जवाब हो सकते हैं। सामूहिक स्तर के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी यह प्रक्रिया की जाती है। जैसे कोई चुना हुआ मंत्र, प्रार्थना या शब्द को 108 बार या उससे ज्यादा बार जपना। इतने बार जपने के पीछे भला क्या उद्देश्य है? प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट एजर मिशेल ने पॉल टेंपल के सहयोग से 1973 में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉयटिक साइंसेस की स्थापना की। यह इंस्टीट्यूट अपनी तरीके का पहला और शायद अकेला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में बना हुआ है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन, चेतना, अचेतना, विचारों की शक्ति, अध्यात्म, हेल्थ

शहर के दूसरे तरीके, मृत्यु के बाद चेतना जैसे कई विषयों पर रिसर्च हो रही है। इनमें से एक रोमांचक रिसर्च विचारों के वजन के बारे में है। जी हां, विचारों का वजन। इंस्टीट्यूट पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी एक विचार में कुछ वजन हो सकता है और कितना, क्योंकि यह बात तो साइंटिफिक तौर पर तय है कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सभी कुछ। अगर एनर्जी का एक समूह एक आकार लेता है, जैसे हमारा शरीर, और शरीर का कुछ वजन होता है, तो इस समूह की एक अकेली इकाई का भी कुछ वजन होगा। क्या उस एक इकाई का वजन नापा जा सकता है? कोशिशें जारी हैं। अब परिकल्पना यह है कि विचार भी एनर्जी है। अगर किसी एक विचार का वजन बढ़ाया जा सके तो शायद वह विचार आकार ले ले। तो किसी विचार का वजन कैसे बढ़ाया जाए? जिस तरह मिट्टी के एक एक कण को मिलाएं तो एक ईंट बन सकती है, उसी तरह अगर एक ही तरीके के विचार को इकट्ठा करें तो शायद उसका एक ऐसा वजन बने जो वह आकार ले ले। बात कुछ कुछ तो संभावित लगती है, क्योंकि मिट्टी के कणों को देखा जा सकता है और इकट्ठा करके उसका वजन बढ़ाया जा सकता है, पर विचार तो किसी ने देखे ही नहीं। पर ऐसा लगता है कि उस विचार में कुछ तो वजन होगा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस एक विचार को करें तो शायद वह विचार कुछ वजन ले ले और आकार में आ जाए। बात समझने में थोड़ी कठिन है, पर यह बात हमारे पौराणिक ज्ञानियों, साधुओं और गुरुओं ने समझ ली थी। आधुनिक रिसर्च तो अब शुरू हुई है। विचारों के वजन बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमारे गुरुओं ने सामूहिक चेतना के नियम बनाए। आराम से समझें, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर एक विचार को दोहराएं तो उस विचार का वजन बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही वो आकार लेने के नजदीक आएगा, यानी कि कैसे ना कैसे हमें प्रभावित करेगा। अब गौर कीजिए कि दुनिया के कोने कोने में होने वाली इस सामूहिक चेतना की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विचार क्या हैं, जिनका वजन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, सबसे आसान विचार जो स्कूलों में प्रेयर्स में दोहराया जाता है, हमें शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। यह एक उदाहरण है, और भी प्रेयर्स हैं, पर उद्देश्य एक ही है, इस विचार का वजन बढ़ाकर मन के विश्वास को मजबूत करना। इसी तरह जब किसी मंत्र का 108 बार या और अधिक बार मनन किया जाता है, कोशिश उसके वजन को बढ़ाने की ही है, जिससे कि उस मंत्र का प्रभाव हम पर पड़े। अब यह सिद्धांत सिर्फ प्रेयर्स या मंत्रों पर ही लागू नहीं होता। सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी भी विषय के विचारों के बारे में हो सकती है। सामूहिक चेतना के कुछ विचार किसी व्यक्ति को राजा बना देते हैं और किसी को रंक, किसी योजना को सफल कर देते हैं और किसी को असफल, किसी देश को प्रसिद्ध कर देते हैं और किसी को नाकारा बना देते हैं। जब कोई एक परिवार या समूह एक तरह के विचार का मनन करता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है और उसका प्रभाव उस परिवार पर या उस समूह पर दिखाई देता है। अब विचार यह करना है कि हम किस विचार के वजन को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: एक बात तो बताओ, रंग सारे कैसे पहन लेते हो तुम एक साथ? एक ही लिबास में खुशबू सारे फूलों की कैसे महका देती हो तुम एक साथ? एक ही गहरी सांस में गीत सारे पंछियों के कैसे गुनगुना लेती हो तुम एक साथ? एक ही मुस्कुराहट में मिलके मुझसे जब पुकारती हो मुझे, सुनो, प्रेम सारी दुनिया का कैसे समेट लेती हो तुम एक साथ? एक ही शब्द में बताओ ना, बताओ तो। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय 90.8 एफएम की इन रूहानी लहरों पर, और आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील पर जज्बात और मोहब्बत का मुकम्मल सफर अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, अमूमन हमारा ये सफर कुछ चुनिंदा गजलों और उनके एहसासात के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मगर आज की ये महफिल बेहद मुनफरिद है, बहुत खास है। आज का पूरा प्रोग्राम एक निहायत खूबसूरत सी डेडिकेशन है। ये नजराना उन रूहानी आवाजों और उन जहीन रहबरों के नाम,

इंद्राणी, तनुषा और बासु, ये वो नाम हैं जिनकी अकीदत, जिनका फन और जिनकी मोहब्बत इस रेडियो स्टेशन की धड़कन है। आज इस महफिल में मेरे अल्फाजों के साथ आप इन अजीम फनकारों की अपनी आवाजों में भी ये सुनेंगे कि उन्हें ये गजलें, जो सुरों का जामा पहने हुए हैं, क्यों पसंद हैं। तो आइए इस बेहद खास और पुरखलूस शाम का आगाज करते हैं। अपनी अपनी जगहों पर काबिज हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी इधर उधर हिलना पसंद नहीं करेंगे। हमारे SN रेडियोज की फैमिली की पहली खूबसूरत पेशकश है दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस RJ स्पेशल सिलसिले की पहली पेशकश मंसूब है एक ऐसी शख्सियत के नाम, जो ना हमारे सिर्फ रेडियो स्टेशन के मेयारी डायरेक्टर हैं, बल्कि अपनी आवाज के सहर से आप सबको मंत्रमुग्ध करने वाले एक बेहतरीन RJ भी हैं। जी हाँ, हमारे अपने अजीज समीर जी। वो ना सिर्फ एक खूबसूरत रेशमी आवाज के मालिक हैं, बल्कि उतनी ही खूबसूरत और बाकमाल उनकी शख्सियत भी है। ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं उनसे मिली हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं समीर जी से पर्सनली भी मिली हूँ। फरवरी महीने में जब वो पंजाब के दौरे पर आए हुए थे, तो ख़ास तौर पर अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तशरीफ़ लाए। उनकी इस सादगी और मोहब्बत ने मेरे दिल को छू लिया। वो एक नहायत ही हसास और इमोशनल इंसान है। मैं आज जो मैं माइक के इस पार खड़ी हूँ और आपसे इतने इत्मीनान से बातें कर रही हूँ, वो समीर जी की रहबरी और हौसला अफजाई का ही नतीजा है। मेरे एक पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि मैं मॉडलिंग करना चाहती थी और अब भी मैं यही चाहती हूँ, जो उन्होंने देखा और सुना था। और फिर मुझे एक दिन कहा, आरती तुम मॉडलिंग करना चाहती थी ना, तो क्यों ना तुम अपनी आवाज की मॉडलिंग करो। ये लफ्ज काम कर गए दोस्तों, और आज रेडियो की तरंगों पर मैं आपसे रूबरू बात कर रही हूँ। समीर जी, आज मैं बहुत गर्व से ये इकरार करती हूँ कि मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपकी हौसला अफजाई और आपका मुझ पे अटूट विश्वास मुझे यहाँ तक ले आया। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रोग्राम की आज ये खासियत है कि हम अपने RJ की पसंद की गजल सुनेंगे और उन्हीं की जुबानी ये भी सुनेंगे कि ये गजल उनको क्यों पसंद है। तो दोस्तों, आइए अब समीर जी की पसंद की गजल की बात करते हैं। समीर जी ने इस महफिल के आगाज के लिए जिस शाहकार का इंतखाब किया है, वो उस्ताद शुजात खान साहब की आवाज और उनके सितार के सुरों से सजी एक लाजवाब गजल है। अजीम शायर कृष्ण बिहारी नूर साहब के इस गहरे फलसफे को जब शुजात खान साहब ने अपने सोच से नवाजा, तो जिंदगी का एक कड़वा मगर पाकीजा सच उभर कर सामने आया। गजल के बोल इस तरीके से हैं दोस्तों, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं,
इतने हिस्सों

0: हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। फिर कहते हैं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। समीर जी की इतनी गहरी और बेहद खूबसूरत गजल के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, आइए अब हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और उसके बाद गजल सुनेंगे।
1: भारती जी, शुजात खान साहब के इस गजल में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, एक तो इनके जो अल्फाज हैं वो बहुत प्यारे हैं, और खासल खास जब उन्होंने ये कहा ना कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को खुश करना बहुत अच्छा लगता है, लगता है मैं उनके लिए कुछ करूं। फिर कई बार काम करते करते ऐसा लगने लगता है कि मैं इतना ज्यादा लोगों से बात कर रहा हूं कि मुझे खुद से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे क्या चाहिए, जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो अभी छूटा हुआ है। मूवीज देखने का शौक था, वो भी छूटा हुआ है। कई सारी चीजें छूट रही हैं, तो वहां पर मुझे बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है कि साहब क्या तो मुझे पसंद है और क्या मुझे अपने लिए पसंद है। वहां पर तो कई बार मुझे लगता है मेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहा, तो कुछ हिस्सा मेरे लिए रहा ही नहीं बस, और कोई खास बात नहीं। तो ये गजल मुझे ऐसा लगा कि मैं इस गजल में हूं या ये गजल मुझ में है, तो इसलिए मुझे ये गजल बहुत पसंद आती है। शुक्रिया।
2: कृष्ण बिहारी नूर।

0: दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस स्पेशल कारवां को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली पेशकश मंसूब है एक बहुत ही अजीम शख्सियत के नाम। वो भी हमारे SN रेडियो के मियारी डायरेक्टर हैं और एक उम्दा आरजे होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायक और रूह को सुकून पहुंचाने वाले एक बेहद अजीम हीलर भी हैं। जी हाँ, मेरे बहुत अजीज दोस्त नितिन राज, उन्होंने कई बार मेरी हीलिंग की है जब भी मैं किसी इम्तहान में फंस जाती हूँ। अब जिंदगी है तो कई इम्तहान भी देने होते हैं दोस्तों। मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में नितिन का भी बहुत बड़ा हाथ है। समीर जी से कहा कि आरती को ऐसा काम दो कि दिन भर मसरूफ रहे, और सच में दोस्तों मैं सारा दिन के लिए मसरूफ हो गई हूँ। गजल चुनना, फिर सुनना, फिर स्क्रिप्ट तैयार करना, फिर रिकॉर्डिंग एंड ऑल, उसमें कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। शुक्रिया नितिन, मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। दोस्तों, नितिन खुद संगीत की कमाल की समझ रखते हैं, मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े AC हैं। फैन तो आम बात होती है, और जब गजलों की बात होती है तो हरिहरन के सुर उनकी पहली पसंद बन जाते हैं। नितिन की इस रूहानी पसंद का ये शाहकार है जिसे अजीम शायर राही मासूम राजा ने लिखा है। ये गजल नितिन के दिल के बेहद करीब है। वैसे भी जो इंसान दूसरों के दुखों को समझता हो, एक हीलर की तरह जज्बातों को सहलाता हो, उसके मिजाज की हरिहरन साहब की मखमली आवाज का ठहराव बहुत सुकून देता है। गजल का मिसरा कुछ यूं है दोस्तों, इजहारे वफा तुम क्या समझो, इजहारे वफा तुम क्या समझो, इकरारे वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे, समझे ना तुम जो आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो। और अब आइए हमारे नितिन की ही आवाज में सुनते हैं कि उन्हें ये गजल आखिर क्यों इतनी पसंद है, और उसके बाद गजल सुनेंगे।
1: कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो। कुछ गजलें सुनी जाती है और कुछ महसूस की जाती है। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हरिहरन की ऐसी ही एक हमेशा याद रहने वाली बेहतरीन रचना है। अपने दिल को छू लेने वाली कविता, सुकून देने वाली धुन और हरिहरन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज के साथ ये गजल प्यार, चाहत और किसी अपने के साथ हर पल को संजोने की इच्छा की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाती है। हर सुर और हर शब्द दिल को छू जाता है।
2: कुछ दूर हमारे साथ चलो,

0: दोस्तों अल्फाज से एहसास तक की इस खास आज के स्पेशल की महफिल में अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां गुजरे दौर की सुनहरी यादें और क्लासिक रवायत अपनी पूरी पाकीजगी के साथ मुस्कुरा रही है। हमारी अगली पेशकश मंसूब है एक ऐसे अजीम तजुर्बेकार रेडियो आर्टिस्ट और माहिर पॉडकास्टर के नाम, जिनकी अपनी आवाज और पेश करने का अंदाज बरसों की साधना की गवाही देता है। जी हाँ, हमारे बेहद अजीज आलोक जी। दोस्तों आलोक जी रेडियो की दुनिया के वो पाखी मुसाफिर हैं जिनका दिल गुजरे जमाने के क्लासिक गुलुकारों के हुनर के लिए धड़कता है। अभी हाल ही में हमारी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने जिक्र किया था के एल सहगल जी, पंकज मलिक, सी एच आत्मा, के सी डे और जगमोहन जी जैसे दरखशा सितारों की गायकी उनका उड़ना बिछाना है। बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस भेजते हैं वो मुझे और मुझे अच्छे से ये यकीन हो चला है कि उनका तजुर्बा बहुत वसी है, बहुत कुछ सीखना है अभी उनसे भी। आलोक जी की पसंद पर आज महफिल में सजने जा रही है सुरसागर जगमोहन साहब की वो नायाब और पुरकशिश गजल जिसके सुर आज भी उतने ही तरोताजा हैं। शायर फयाज हाशमी साहब के इन मासूम और रूहानी अल्फाज को जब जगमोहन साहब ने अपनी उसी ठहराव भरी आवाज से नवाजा तो मोहब्बत का एक बेसाख्ता इकरार वजूद में आया। जहां दिल ये तो जानता है कि उसे शिद्दत से मोहब्बत है मगर उसे उस क्यों का जवाब उसके पास नहीं होता। आलोक जी की ये पसंद आज हमारे इस महफिल को एक तारीखी गरिमा और पाकीजा सुकून बख्श रही है। गजल का एक मिसरा मुलाजा फरमाए। रूप की कुछ कमी नहीं, रूप की कुछ कमी नहीं, दुनिया में एक तुम ही नहीं, पर मैं तुम्हारी याद में रहता बेकरार क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं कि दिल को तुमसे है प्यार क्यों। और अब आइए आलोक जी की जुबानी सुनते हैं कि क्यों उनको ये जज्बातों से भरी गजल इतनी पसंद है और उसके बाद गजल सुनेंगे।
1: मेरी आवाज के दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार आपको आदाब पेश करता है और उसके बाद आरती जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो ये खूबसूरत सा प्रोग्राम बना रही हैं जो हम सबके दिल के करीब है। दोस्तों आज जिस गीत की मैंने फरमाइश की है वह है जगमोहन सुरसागर जी का एक बेहद खूबसूरत नगमा। दिल को है तुमसे प्यार क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं। जहां तक मैं सोचता हूं किसी भी गीत को पसंद करने के पीछे हमेशा उसकी धुन या उसके बोल ही कारण नहीं होते, कई बार उस गीत के साथ जुड़ी हुई यादें उसे हमारी जिंदगी का हिस्सा सा बना देती हैं। जब भी वह सुनाई देता है यादों का एक पूरा कारवां साथ चल पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे बिट्स पिलानी के कॉलेज के दिनों में हमारा एक छोटा सा दोस्तों का ग्रुप था। उस दौर में जब ज्यादातर लोग नए फिल्मी गीतों की बातें करते थे, हम लोग बड़े शौक से केएल सहगल, पंकज मलिक, जगमोहन सुरसागर को सुनते थे। घंटों उनकी गायकी, उनकी अदायगी, उनके अंदाज पर चर्चा होती थी। उन्हीं दिनों से ये गीत मेरी यादों का एक स्थायी सा हिस्सा बन गया है। इस गीत की एक पंक्ति तो अब मुझे आज हो जाती है। पहले मिलन की छाओ में तुमसे तुम्हारे गांव में आंखें हुई थी चार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं। क्या खूबसूरत भाव थे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अब आप में से कुछ श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे आखिर इस गीत में मेरी ऐसी कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो उसका पूरा खुलासा मैं आज नहीं करूंगा। आखिर ये कार्यक्रम तो पब्लिक डोमेन के लिए है, कभी कभी मेरे पोते पोतियां भी इसको सुन लेते हैं भाई। लेकिन कहूं तो युवावस्था होती ही ऐसी है, कुछ मीठी सी यादें, कुछ मासूम से एहसास और कुछ अनकही कहानियां जो इस गीत के साथ जरूर जुड़ी हुई है। तो आइए इन्हीं यादों के साथ सुनते हैं जगमोहन सुरसागर की मधुर आवाज में ये अमर गीत, दिल को है तुमसे प्यार क्यों ये ना बता सकूंगा मैं। शुक्रिया।

0: दोस्तों अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद ख़ास आज स्पेशल सिलसिले में अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। असम की तिनसुखिया की वादियों से हमारे कुनबे का हिस्सा बनी हमारी अगली आरजे इंद्रानी, जिसे मैं प्यार से इंदु और लाड से बुलबुल भी बुलाती हूँ। इंदु की आवाज़ में एक मासूम बच्चे की चहक है। इतनी नाजुक दुबली पतली सी लड़की जो सुबह 3:30 बजे उठकर रात के 10 बजे तक मेडिटेशन, हीलिंग, संगीत टीचिंग और अनगिनत सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ रहती है कि सुनकर हैरत होती है, मगर इस नाजुक से बदन में पैशन और हुनर का एक तूफान छुपा हुआ है। क्लासिकल म्यूजिक में विशारद इंदु जब बात करती है तो बुलबुल सी लगती है, मगर जब वो सुर छेड़ती है तो उसकी आवाज का वो आला दर्जे का शास्त्रीय निखार इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों इंद्रानी एक बेमिसाल सिंगर ही नहीं बल्कि एक बेहद रूहानी हीलर भी है। जब कुछ महीने पहले मैं बहुत बीमार हुई थी तो नितिन के साथ मिलकर इंदु ने भी पर्दे के पीछे रहकर मुझे बिना बताए मेरी हीलिंग की और मैं अचानक ही ठीक भी हो गई। आज मैं माइक के इस पार से अपनी इस बुलबुल का और नितिन का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जब मैंने इंदु से उसकी पसंद पूछी तो उसने अपनी मखमली आवाज में 7-8 गजलों की एक एक लाइन गाकर मुझे भेज दी। अफसोस कि मैं वक्त की कमी से वो सारी तो नहीं सुना सकती, मगर उन्होंने जो आखिरी गजल गाई वो सीधे मेरे दिल को छू गई। लता दी की पुरसोज आवाज में जगजीत सिंह की मौसीकी से सजी संवरी ये गजल जैसे फिजा में गूंजती है तो फिर गूंजती ही रहती है। इंदु ने जो एक लाइन ही वो मुझे सुनाई वो उसी तरीके से उसी तरह का आलम जैसे तारी हो गया। गजल का मिसरा यूं है, खड़ा हुआ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, खड़ा हुआ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको, और फिर धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको। नाजिर बाकिर के का इसके शायर हैं और म्यूजिक इसका जगजीत सिंह नेगी ने दिया है। और अब हमारी इंद्रानी की प्यारी सी आवाज में सुनिए कि उन्हें ये गजल इतनी क्यों पसंद है। सुनिए उनकी आवाज और फिर गजल।
1: एक्चुअली ये गजल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे फेवरेट सिंगर लता जी ने गाया है उसके मेलोडियस वॉइस में, और ये गजल बहुत सूदिंग है। और असम में जब बारिश का माहौल होता है तब ऐसा धुआं धुआं सा एटमोसफियर बन जाता है, तो मैं उस टाइम ये गीत कभी कभी सुन लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लू लाइट चला करके अच्छा लगता है, एटमोसफियर बहुत अच्छा बन जाता है।

दोस्तो अल्फाज से एहसास तक के इस खास आरजे स्पेशल गुलदस्ते में अब वक्त हो चुका है पिंक सिटी यानी जयपुर का रुख करने का। हमारी अगली पेशकश मंसूब है एक बेहद खूबसूरत जहीन और बेहद सलीकेदार आरजे और माहिर पॉडकास्टर हमारी प्यारी सी तनुषा। तनुषा की आवाज जितनी दिलकश है उनका हुनर उतना ही आला है। वो किस कमाल के साथ सिंगल हैंडेडली लोगों के इंटरव्यूज लेती हैं और अपनी बात पर बड़ी पॉजिटिव सी कमांड रखती हैं। वो उनकी सख्त मेहनत और ईमानदारी की गवाही देता है। दोस्तों जब मेरा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो तनुषा ने हमेशा मेरा प्रोग्राम सुना, मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने एक बार चैट बॉक्स में ऐसा कमेंट लिखा जो सीधे मेरे दिल के पार उतर गया। तनुषा ने लिखा था, गजल को आज एक गजल पेश कर रही है, यानी गजल को पेश करने वाली की आवाज खुद भी गजल जैसी है। तनुषा आज मैं इस माइक के जरिए कहना चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन और अजीज तरीन कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच डार्लिंग, तुम्हारे इस खुलूस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। लेकिन दोस्तों कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ तब आया जब मैंने उनसे उनकी पसंद की गजल की वजह पूछी तो चैट बॉक्स में बहुत ही शर्माते हुए इमोजीज के साथ लिखकर भेजा, मैम आतिफ असलफ इज माई बचपन का क्रश। तनुषा इसमें इतना भी शर्माने की क्या कोई बात नहीं, हम सबके बचपन के कोई ना कोई क्रश होते हैं। आज अपनी प्यारी तनुषा और उसके उसी बचपन के क्रश यानी आतिफ असलम साहब की रूहानी आवाज में सजी ये बेहद पाकीजा पेशकश आप सबके हवाले कर रही हूँ। कोक स्टूडियो का ये वो शाहकार है जो हर डूबते दिल को एक आस देता है। दोस्तों ये ओरिजिनली साबरी ब्रदर्स की गाई हुई है लेकिन आतिफ असलम साहब ने भी बखूबी निभाया है इसको। गजल के बोल हैं, ताज दारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी समर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। फिर कहते हैं, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। तो आइए तनुषा की मीठी सी आवाज में सुनते हैं उनकी जबानी कि क्या रूहानियत है इस गजल में जो उन्हें

0: ना मुतासिर कर गई। ओवर टू तनुषा और फिर गजल।
1: मुझे आतिफ असलम का ताजदारे हरम बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आई थिंक ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, इट्स एक्चुअली अ फीलिंग। और कोक स्टूडियो से मेरी बहुत यादें हैं, आतिफ असलम से मेरी बहुत यादें हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, जब मैं 10th में थी, तब उनकी एक एल्बम आई थी दूरी, जिसके सभी गाने मुझे बहुत पसंद थे, और आज भी मैं उन गानों को सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ, और मुझे आज भी वो उतने ही पसंद हैं। तो आतिफ की आवाज़ में एक जादू है, उनकी आवाज़ बहुत सोलफुल है जो डायरेक्टली हार्ट तक पहुँचती है। आई एम श्योर सभी लोग जिन्होंने आतिफ को सुना होगा वो ये फील कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ एक में एक झनक है, एक प्यार है, दुआ है, स्पिरिचुअलिटी का इतना ब्यूटिफुल ब्लेंड है कि वो सीधा कहीं अंदर के तार टच करती है। और मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल उसी टोनालिटी का है, और इसमें एक एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे आप जब इसको सुनते हो, जब ये एंड होता है, तो आप डायरेक्टली उस डिवाइन को छू लेते हो। एक जो सोल जर्नी होती है उसको पा लेते हो, और कहीं एक तार जुड़ जाता है आपका डिवाइन से, ऊपर कहीं किसी से। तो इस तरह का एक मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे होता है जब भी मैं ताजदारे हरम सुनती हूँ। और कोक स्टूडियो मुझे बहुत पसंद है, कोक स्टूडियो के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, और आतिफ का ये गाना मुझे बेहद पसंद है। इसीलिए मेरी फरमाइश है कि हम ये सुनाएं हमारे रेडियो चैनल SN रेडियो पर, ताजदारे हरम बाय आतिफ असलम फ्रॉम कोक स्टूडियो। थैंक यू।

0: तो दोस्तों अल्फाज से एहसास तक के इस आरजे स्पेशल कारवां के आखिरी मरहले पर अब हम आ पहुंचे हैं और हमारी ये आखिरी पेशकश मंसूब है हमारे रेडियो स्टेशन के सबसे कम उम्र निहायत ही होनहार और नौजवान आरजे के नाम हमारे प्यारे बासु गोयल। बासु एसएन रेडियोस पर अपनी बेहतरीन पॉडकास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी आवाज में वो जोश और नयापन है जो सीधे आज के युवाओं से कनेक्ट करता है। बासु को वैसे तो तेज रफ्तार बाइक्स का बेहद शौक है, मगर जब मैंने उनकी पसंद की गजल की बात की तो सकुचाते हुए जो जवाब उन्होंने दिया उसने मेरे मन को छू लिया। बासु ने अपनी पसंद के तौर पर अपने पापा की पसंदीदा गजल का नाम लिया। एक यंग आरजे का माइक के इस पार खड़े होकर अपने वालिद की पसंद का एहतराम करना वाकई एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती मिसाल है। तो बासु के पापा की फरमाइश पर इस महफिल का ये आखिरी नजराना है संगीत के महागुरु मन्ना डे साहब की आवाज में सजी ये बेहद नायाब गैर फिल्मी गजल। शायर मधुकर राजस्थानी साहब के इन गहरे अल्फाजों को जब मन्ना डे साहब ने अपनी संजीदा मौसिकी से सवारा तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच सामने आया कि कभी कभी राह चलते अनजाने लोग भी हमारे दर्द में शरीक हो जाते हैं। गजल के बोल कुछ इस तरीके से हैं, कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब रात के सन्नाटे, जब रात के गहरे सन्नाटे गहरी सी नींद में सोते हैं, तब मुस्कानों के दर्द यहाँ बच्चों की तरह से रोते हैं। लेकिन उससे पहले बासु की आवाज में हम ये सुनेंगे कि उन्हें ये गजल क्यों पसंद है। तो ये गजल बासु के वालिद की पसंद के नाम, फिर गजल सुनिएगा।
1: आप सभी लोगों को हमारे रेडियो एसएन पे एक बहुत ही प्यारा सा वेलकम है। मेरा नाम बासु है और मैं आरती जी को एक बहुत ही प्यारा सा थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच आरती जी, एंड फॉर आर लिसनर्स वेलकम टू योर रेडियो एसएन। और जैसा कि आरती जी ने कहा, मेरी एक बहुत पसंदीदा गज़ल है कुछ ऐसे भी पल होते हैं बाय मन्ना डे, और ये गज़ल मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे पापा को ये गज़ल बहुत पसंद है। मैं तो अभी उम्र में काफ़ी छोटा हूँ तो गज़लें ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा ये गज़ल को बहुत सुनते हैं और पूरे घर में इसको गाते रहते हैं, तो उन्हीं को सुनते सुनते ये गज़ल मुझे भी पसंद आने लग गई। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम।

अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त आरती राय को दीजिए इजाजत। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
8: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार। जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफी बढ़ चुकी है। और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता है वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
9: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही हैं। किस तरीके से संभावनाएं यहां पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
10: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि, अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी

0: संकट में है। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है, उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है, इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है। ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है। इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता, साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्वपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है। इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबाकर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहां पर उसके पहलू जो है उन तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहां आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी, जो जैविक उद्यमी हैं, और किसानों की एक समस्या रहती थी कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो है वो खोल दी गई है। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं, पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको है, वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहाँ उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी, जो कि एक सफल उन्नत किसान है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है, जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहाँ पर हासिल की हैं, उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है, क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरेंद्र राणा जी, और वहीं ये पहुंचे, यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए, और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
2: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर 2 सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, बहुत ही सफल योजना है, और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है, जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है, और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब 2 साल पहले ये योजना चालू की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम पे, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं, और एक आपको मालूम है कि हमारा PGS इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, PGSindia-NCUF.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
1: जी,
2: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है, जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है। दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है, लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना वो चालू किया गया है, और देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है, तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई, जो आज तक नहीं हुआ है, कि किसानों के पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
1: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया गया,
2: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं,
1: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने हमें बताया, काफी संख्या में जो किसान है वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
3: इसमें मुकुल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को
1: जी।
3: मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए, उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
1: जी।
3: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
1: जी।
3: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
1: जी,
3: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
1: जी।
3: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
1: जी।
3: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
1: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है।
3: जी
1: जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के, हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनोज जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं, कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं।
4: 1.5 साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और किशन चंद्र सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
1: जी।
4: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीज़ों को खरीदते थे
1: जी बिल्कुल।
4: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफ़ी भलाई हो सकता है
1: जी।
4: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
1: जी,
4: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहे हैं बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना। तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
1: जी,
4: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
1: जी,
4: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर,
4: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
1: जी,
4: और इससे किसानों को काफी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 3 तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
1: जी।
4: 3 तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
1: जी,
4: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदभोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
1: जी,
4: कालोनिया। अभी इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं, जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब इसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
1: जी,
4: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
1: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रही है,
4: मांग भी देखने को मिल रहा है
1: जी। बिल्कुल, बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णा, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
2: देखिए हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में, जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ 2 साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
1: बिल्कुल
2: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है

0: किसानों का
1: जी,
0: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा जहाँ रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
1: जी।
0: और चूंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदत है आदि है
1: जी,
0: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते। उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
1: जी,
0: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो। और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का
1: जी।
0: पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले दो साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पे देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
1: जी,
0: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम उससे हम लोग 10-15%।
1: बिल्कुल मनु जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
0: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस
1: जी,
0: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा। तो उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में
1: जी।
0: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अभी 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी,
0: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आगे जुड़ेगी। तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा, और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की उसके किस तरीके परिणाम जो है अभी तक आपको मिले हैं?
2: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,
2: तो वहां से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था
1: जी,
2: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी,
2: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो
1: जी,
2: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो
1: जी।
2: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी,
2: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी,
2: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्यूर चाहिए
1: जी,
2: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना डीएपी पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहां उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज़।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपरू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारा जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्णचंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: नहीं, अब काफी हद तक इसमें डर कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है।
2: जी,
4: तो कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी हैं, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है। तो ये सब उनके में जागरूकता है, अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है।
2: बिल्कुल, लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसा आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी,
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए। अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में, और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा।
2: बिल्कुल,
4: तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आएगी, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा, और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो ढूंढना शुरू हो गया। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं, आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि डिकम्पोजर यूज करिए, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए।
2: बिल्कुल,
4: जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम कर रहे और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है, जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं। तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर 11 क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपके जो इनकम है वो करीब 4 लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब 4 गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं। तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती है,
2: प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है,
4: दिया और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है
2: जी।
4: तो कैसे कर रहे हैं, हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चल रहे और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को बढ़ा
4: जी दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फार्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: यानी उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में उनसे अनुरोध किया गया, वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: एक नई शुरुआत जो है नई पहल ऐसे की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कोई बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खुली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे, मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फैलाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने 3 सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही 3 डिमांड है, इसी 3 डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो ज्यादा डे टू डे में ज्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: तो अब इसकी लॉन्जिबिलिटी कितने
2: फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मान सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी।
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 लीटर 2 केजी गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी,
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
2: जी,
6: और 7 दिन में गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है, और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
2: जी।
6: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
2: जी।
6: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
2: जी।
6: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
2: जी।
6: दूसरी चीज आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
2: जी
6: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से, और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
2: जी।
6: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है, और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
2: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णचंद्रा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इस तरह के जो उत्पादन का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
4: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली, इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती केंद्र इसमें इन्वॉल्व था, 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
2: जी।
4: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, तब इसको डेवलप किया गया, डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया, ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, तो यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये बनाया गया। तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के, राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना काम इन्होंने गांव गांव जाके किया है वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है
2: जी।
4: और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमने करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है, एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए, जैसे बरसाना में है गौशाला है वहां पर उन्होंने दिया, तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया, तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
2: जी,
4: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है, सब हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
2: जी,
4: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा, और किसान जुड़ते चले आ रहे हैं, और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं, अपने आप कर दो, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें, तो उसके फायदे अनेक हैं, और एक बार जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: कि जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं, जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
5: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
2: जी,
5: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज्यादा से ज्यादा हो
2: जी,
5: तो वहां उनका थोड़ा सा बचत
2: जी।
5: दूसरा जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
2: जी।
5: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
2: जी,
5: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम
2: वो भी एक आय का जरिया मान
5: एक आय का जरिया मान सकते हैं
2: जी।
5: अब जो किसान है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए
2: जी बिल्कुल।
5: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
2: जी,
5: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए स्टिकर लगाए
2: जी,
5: तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
2: जी।
5: तो बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा लागत
2: जी, लागत कम हो जाती,
5: लागत कम लगा उससे उनकी बचत हुई। दूसरा उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ
2: बिल्कुल।
5: तीसरा जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
2: जी,
5: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
2: जी।
5: चौथा जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए
2: जी।
5: उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट, तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
2: आय का जरिया बन सकता है
5: आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
2: जी,
5: यहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
2: जी,
5: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक की गाड़ी चले गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
2: जी,
5: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सके और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें ट्रेन में या रोड में? तो अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
2: जी,
5: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचेगा
2: उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
5: खराब नहीं।
2: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने है अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
5: देखिए उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
2: जी।
5: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहे हैं जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो

0: सर है
1: जी,
0: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
0: है। जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है
1: जी।
0: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है। जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
1: जी।
0: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
1: जी।
0: तीसरे आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
1: जी।
0: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
2: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक ऊपर शुरू कर दिया है
1: जी।
2: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं और उन्होंने इस पे ऊपर काम चालू हो गया। और जहां तक ये राणा जी बता रहे हैं तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
1: जी।
2: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
1: जी।
2: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
1: जी,
2: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है। तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया, तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहें, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
1: जी।
2: आपके
1: प्रयोगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
2: दिखाएंगे या है
1: जी।
2: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी यही है कि ये सब चीजें आप एक बोतल लेंगे फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए। आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000, 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने जरूरत नहीं है। आप खुद प्रोडक्शन कीजिए, तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाए कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा। और ये कहना मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली है, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3 गुने 4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं
1: जी।
2: और उसका लॉजिक भी है क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है
1: जी
2: स्ट्रेस में है, आपकी रेनफेड एरिया। तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है। तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
1: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
2: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपके है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली प्योर उत्पाद खाएं, 6 महीने बाद आप अपने बॉडी में चेंज देखेंगे
1: जी।
2: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ये सब इससे निवारण है।
1: बिल्कुल डॉक्टर चंद्र, जो किसान है वो तो आपने बताया कैसे जुड़ेंगे, लेकिन उपभोक्ता भी है,
2: उपभोक्ता के लिए भी, मतलब किसानों के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात अपनी जमीन को बचाना है तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है। अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहेंगे, इसे मनु जी वगैरह भूल गए, इसमें थोड़ा सा एक काम ये लोग और भी कर रहे हैं कि किसानों के, इन्होंने दे रहा है कि जो भी किसान काम कर रहे हैं उनको आपका जो सीड है, सीड भी वो लोग वहां पर उत्पाद कर रहे हैं, आपस में सीड बांट रहे हैं, तो सीड उत्पादन

0: वहाँ पर
1: यानी बीज उत्पादन भी मुनाफा
0: शुरू हो रहा है
1: जी।
0: और जिसके पास जानवर नहीं है तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है।
1: बिल्कुल, एक पूरी कड़ी है, लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
0: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है। पोर्टल पर जाइए, आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
1: इस पर सारी जानकारी जो है
0: सारी जानकारी है और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
1: बिल्कुल, तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है किसान उस बाजार को समझे, साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है एक कदम आगे बढ़ाना होगा और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
2: तो जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
10: नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, छावा की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम को हर दिन आप तक लेकर आता रहता है। तो किसान साथियों, आज हम खेती बाड़ी इस कार्यक्रम में बात करेंगे जल संरक्षण के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, हमें जल संरक्षण करने की बहुत ही आवश्यकता है। हम जानते हैं जो वर्षा का जल है वह नदी नालों के माध्यम से बहकर निकल जाता है और हमें दूसरी और गर्मियों के समय जो फसल हमारी होती है उसमें बहुत ही मशक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमें सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम गर्मियों की फसल नहीं ले पाते हैं। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही क्यों आवश्यक है जल का संरक्षण, हमारे लिए क्यों आवश्यक है।
11: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
12: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
13: अभी का समय चल रहा है मॉनसून का, और ये मॉनसून हम आपको बता दें पूरे देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर सभी राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है। लेकिन क्या जो मॉनसूनी बारिश होती है इसके जरिए जो पानी मिलता है उसका उतना सदुपयोग हम कर पाते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। और इसी सवाल से कई और सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हमारे देश की बात कही जाती है तो यहां पर जिस तरीके से जलवायु में विभिन्नता है उसी तरीके से हम देखते हैं मॉनसूनी बारिश का जो वितरण है वो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिस देश में हम बात करते हैं कि कैसे जो खेती है वो पानी के बिना हो सकती है, पानी की कमी के दौरान भी हमारे जो किसान हैं किस तरीके से अच्छी उपज ले पा रहे हैं, वहां ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और तब बात आती है वर्षा जल संचयन की। जी हाँ, आज इसी विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से वर्षा जल संचयन जो है यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको हम अपना सकते हैं, कर सकते हैं, और जो ये बारिश का पानी है इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग रूप में कैसे वो हो सकता है, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको हम देंगे। संदेश दे रही है समाज में कि कैसे पानी की बचत हम कर सकते हैं, किस तरह की भागीदारी, किस तरह का योगदान उनका रहा है पानी को बचाने में, जो अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जल जीवन है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका जो महत्व है वो इस दौरान काफी समझा जा रहा है और हमारे किसान भी जानते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।

0: विकास की अंधी दौड़ में हमने प्राकृतिक जल संसाधनों का इतना दोहन किया कि आज हमें कहीं ना कहीं पानी की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम अभी से सतर्क हो जाएं और पानी को बचाकर उसका संचयन शुरू कर दें, तो पानी की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्षा जल संचयन करना होगा। इस समय पूरे देश में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं, लेकिन हम बरसात के इस पानी को इकट्ठा नहीं करते और सारा पानी बेकार हो जाता है। दरअसल वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बरसात के पानी को जरूरत की चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के पानी को एक निर्धारित की हुई जगह पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन के कई तरीके हैं, जैसे सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वो पानी होता है जो बरसात के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले हिस्सों में बहकर जाने लगता है। गंदी नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहते हैं। बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप के जरिए बरसात के पानी को कुओं, नदी, तालाबों में इकट्ठा करके रखा जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। दूसरा तरीका है छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुली टंकियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके नलों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा तरीका है बांध। बड़े बड़े बांधों के जरिए बरसात के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मियों में या पानी की कमी होने पर खेती, बिजली बनाने और नालियों के जरिए घरेलू इस्तेमाल में लिया जाता है। चौथा तरीका है भूमिगत टैंक। इसके जरिए हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में बरसात के पानी को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। आमतौर से भूमि के ऊपर के हिस्से पर बहने वाला पानी सूरज के ताप से भाप बन जाता है, जिससे हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचा कर रख पाते हैं। पांचवा तरीका है जल संग्रह जलाशय। ये साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके से जमा किए हुए पानी को ज्यादातर खेती के कामों में लगाया जाता है। ये तो बात हुई वर्षा जल संचयन की, लेकिन इसके साथ साथ किसान खेतों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें जिसमें कम पानी में सिंचाई की जा सके। इनमें से एक है फव्वारा सिंचाई पद्धति। इस विधि से सिंचाई में पानी की बर्बादी नहीं होती। बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। बूंद बूंद विधि से लगभग 60-70% पानी की बचत होती है। किसान कम पानी में सिंचाई कर सकते हैं। इस पद्धति में 50-80% तक पानी की बचत होती है।
1: तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग माध्यम हैं जिनके जरिए हम पानी की बचत कर सकते हैं, फिर चाहे सिंचाई के जो अलग अलग साधन हैं उनकी बात की जाए, या जिस तरीके से अभी तक मॉनसून की भी अगर स्थिति हम देखते हैं तो वो काफी बेहतर रही है कुछ एक क्षेत्रों में, हालांकि कुछ एक जगह कमी भी है। लेकिन यहां डॉक्टर मनोज, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से राजस्थान जैसे क्षेत्र की हम बात करते हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर एक किसान को बड़ी उम्मीदें रहती हैं बारिश से जब मॉनसून आता है, कि ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आगे के लिए भी कितना फायदेमंद है मॉनसून, और उसके साथ साथ जो एक संदेश है कहीं ना कहीं वो किसान भी देता है वर्षा जल संचयन का।
2: हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा मुख्य रूप से खेती मानसून आधारित है, और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि मानसून जून से शुरू होकर करीब करीब सितंबर तक चलता है, और हमारे किसान भाई यही उम्मीद करते हैं कि मानसून सामान्य रहे और जिससे उनको जो जल मिले उनसे उनकी खेती, न केवल ये वाली खरीफ सीजन की खेती और बल्कि अगली जो रबी सीजन की भी जो खेती है उसकी भी व्यवस्था हो सके। तो उस सब को देखते हुए इस समय मानसून की प्रगति संतोषजनक है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी कम है मानसून, लेकिन उम्मीद है कि हमारे देश में इस समय मानसून पूरा सामान्य रूप से थोड़ा सा अधिक रहेगा और सामान्य रहेगा। और किसान भाइयों से तो यही अनुरोध रहेगा कि जितना पानी गिर रहा है उसका संचयन करके, संरक्षण करके और उचित उपयोग करके उसका इस्तेमाल करें, जिससे उनकी खेती अधिक से अधिक अच्छी हो और उत्पादन बहुत अच्छा हो।
1: जी, और किस तरीके से, मतलब माध्यम क्या है इसमें, अगर हम बात करते हैं कि कैसे ना सिर्फ उसका संचयन हम कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हमारे जो किसान है इस बारिश के पानी को इसका संचयन जो है, संरक्षण जो है वो कर सकता है?
2: बहुत साधारण तरीके हैं, हमारे किसान भाई बहुत लोग जानते हैं, मैं एक बार दोबारा उसको रिपीट करूंगा और बताऊंगा। जैसे ही बारिश होती है और यह बारिश होने की तैयारी हो रही है, कुछ जगह हो गई है, तो हमारे खेतों को बहुत साधारण तरीके से किसान भाइयों को, जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में, तो हमारी मेड़ों की मरम्मत कर लें, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बनाकर और उनकी मरम्मत कर लें। और देखें, गांव में अगर तालाब है तो जिन नालियों के द्वारा पानी तालाब में जाता है उन नालियों की सफाई कर लें, बहुत खरपतवार आ जाती है, बहुत उसमें कोई सामान फेंक दिया जाता है वो बंद हो जाती हैं, उनकी पूरी तरह सफाई कर लें, जिससे भी जितना वर्षा का जल आए वो सारा सारा अगर हमारे यहाँ फार्म पॉन्ड है उसमें संचयन हो सके, या हमारे खेत में ही जो पानी गिर रहा है वो एक बूंद भी हमारे खेत से किसी और जगह ना जा सके। ये खेत की बात है, फिर हम बात करें गांव की, बात करें कि हमारे गांव का पानी गांव में ही रहे, और जितना पानी गिर रहा है वो सारा सारा हमारे खेती के लिए उपयोग में आ सके। उसके बाद जब अगर हमने संचयन कर लिया है उस पानी का, तो हम देखते हैं कि आज बारिश हुई, फिर एक हफ्ता या 10 दिन बाद बारिश हुई, और उस बीच में अगर आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो कोशिश करें कि उस जो पानी को इकट्ठा आपने किया है या संचयन किया है, उस पानी को कैसे हम, जैसे बैंक में आपके पैसा रहता है उसको हम बड़े ध्यान से उपयोग करते हैं, उसी तरीके से इसको उपयोग करें, चाहे वो हम बहुत ही आधुनिक तरीके से, कोशिश करें कि कम से कम इस पानी की को वेस्ट करें, और अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे तो हम सारा सारा पानी बचा भी सकेंगे और कोशिश करेगी कि जो संचित पानी है वो रबी फसलों के लिए भी बचा रहे, हमारे फार्म पॉन्ड में या तालाब में और जहां पर भी हमने पानी इकट्ठा किया।
1: तो ना सिर्फ देखिए जो खरीफ का सीजन है अभी, वहां तो आपकी जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति होगी ही, साथ ही इसके बाद का जो सीजन आता है रबी की जब हम बात करते हैं, तो वहां भी आपके लिए जो पानी है वो उपलब्ध रह सकेगा। कुछ अलग अलग विकल्प आपके पास है, माध्यम आपके पास है, और सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है, मदद भी जो है वो की जाती है, अनुदान भी दिया जाता है। अगर आप अपने खेत में भी अगर पॉन्ड बनवाते हैं, तालाब एक बनवाते हैं, चेक डैम, अलग अलग ऐसे माध्यम है जिनके जरिए आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ ज्योति जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी संस्था भी लगातार इस बात को बढ़ावा दे रही है कि जो पानी है हमें उसको बचाना है, लेकिन जब खेती में पानी की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और चुनौती हमारे लिए हो जाती है कि कैसे किसान जो है उसको अच्छी उपज भी लेनी है, जो फसल है उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है और पानी को भी बचाना है, कैसे ये लगातार जो संदेश है वो दिया जा रहा है?
3: किसान के लिए एक्चुअली एक बहुत ही मुश्किल चॉइस रहती है, क्योंकि हमारी, जैसे मनोज जी ने कहा कि हम अभी कृषि प्रधान देश हैं, और वो भी ऐसा कृषि प्रधान देश जहां पर वर्षा के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है
1: जी।
3: पर जैसे अभी बात की गई कि किसान जो है वो मैं आज आपके माध्यम से किसान को ये रीअश्योरेंस देना चाहती हूं कि इस कि ये जो मिथ्या है कि अगर हम इरिगेशन कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारी उपज में कमी आएगी, ये बिल्कुल एक मिथ्या है
1: जी।
3: अगर आप समय पर टाइमली सोइंग करें, टाइमली इरिगेशन करें तो कोई कारण ही नहीं कि आप आपके यील्ड में कोई कमी हो, बशर्ते आप ये करें जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि खेत का पानी खेत में, जब बरसात हो तो उस वक्त आप माड़ बनाकर या फार्म पॉन्ड बनाकर अपने खेत के अंदर वर्षा का पानी को सिक्योरली अपनी ही जमीन के अंदर समेट के रख लें ताकि जरूरत पड़ने पर पौधे उसको निकाल पाएं। दूसरा, अपने खेत की तैयारी ऐसे करें, उसके ऊपर जो बेड फॉर्मेशन हो वो ऐसी हो कि जो है वो कम पानी जो है उसमें वेस्टेज मिनिमाइज हो और पानी जो है वो प्लांट के रूट जोन को मिले, वो प्लांट उसमें फ्लडेड ना रहे। और तीसरा, जैसे इन्होंने कहा गांव का पानी गांव में, कि आप प्लानिंग ऐसी करें कि आपके गांव के ऊपर पड़ने वाली एक एक बूंद पानी जो है वो किसी ना किसी माध्यम से आपके गांव की जमीन में रिस जाए, पॉन्ड के थ्रू या आपके यहां पर अगर कोई भी सूखे कुएं हों या ट्यूबवेल्स हों उनके अंदर आप बारिश के पानी को डाइवर्ट कर दीजिए थोड़ा क्लीन करके, ताकि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। आपकी जो साइड की नालियां हैं उनका तालाब कच्चा रखिए ताकि उसके थ्रू भी पर्कुलेशन हो जाए। और इस तरह का चेक डैम्स बनाइए, अगर कोई स्ट्रीम चल रही है चेक डैम्स बनाइए, बांध बनाइए। तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिए कि आपके गांव से एक भी बूंद पानी जो है बाहर ना जाए, ताकि मॉनसून के खत्म होने के बाद जो ड्राई पोर्शन आता है उसमें आपके पौधों को जमीन की नमी के माध्यम से वो पानी मिलता रहे जिसकी उनको जरूरत है। पौधे को नमी चाहिए होता है, पानी नहीं, नमी चाहिए, तो नमी का इंतजाम कीजिए।
1: चलिए, जिस तरीके से जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें करनी होगी, ना सिर्फ खेत का पानी खेत में बल्कि इसके साथ साथ गांव का पानी गांव में भी रहेगा। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, जब से हम मान सकते हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब से लागू की गई उसके बाद से एक बड़ा बदलाव हमने देखा है कि ना सिर्फ जो किसान है पानी बचाने लगा है, क्योंकि वहां पर प्रति बूंद अधिक उपज की बात हम करते हैं, हर खेत को पानी पहुंचाने की बात हम करते हैं, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है।
2: हाँ, जैसे आपने चर्चा की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उचित समय पे शुरू की गई, 2015 में इसको शुरू किया गया था और इसमें हर रूप में पानी का हर रूप में इसका सहायता अनुदान दिया जाता है, चाहे वो पानी के संचयन के लिए, संरक्षण के लिए, जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी कि अगर आपके अपने खेत में आप तालाब बनाना चाहते हैं, सामुदायिक रूप से गाँव में सामुदायिक रूप से

0: तालाब बना के, और हमारे गांव में आपने देखा होगा साधारण तरीके से तालाब थे और वो तालाब अब वो भर गए हैं। तो हम कोशिश करें कि अब इस समय भी अभी समय है हमारे पास कि सारे श्रमदान करके उन तालाबों को मिट्टी निकाल दें, उससे उनकी जो पानी भरने की क्षमता है वो बढ़ सकेगी। और उसके बाद इन तालाबों को बनाने के लिए आपको अनुदान भी मिलता अपने रूप से, अगर आप अपने खेत आपका बड़ा है और आप बनाना चाहते हैं या आप सामुदायिक रूप से बनाना चाहते हैं उसके लिए भी अनुदान मिलता है। आप अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें कि हम ये बनाना चाहते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको ये चर्चा में बताया था कि इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो आधुनिक विधियां हैं, चाहे वो फव्वारा सिंचाई हो, टपक सिंचाई हो, अंडरग्राउंड भूमिगल आपकी पाइपलाइन हो, उस पानी को जहां तालाब से आपके खेत तक ले जाने में अगर आप कच्ची नाली में उस पानी को, ऐसे कीमती पानी को ले जाएंगे तो करीब करीब 30-40% पानी तो नालियों में ही चरह जाएगा
1: जी।
0: तो उसकी बजाय आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाएं या भूमिगत पाइपलाइन जिसे कहा जाता है, और उसमें भी आपको हर तरह की सहायता मिलती है। और इसलिए मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये समय आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर आप कोशिश करें जितना पानी गिर रहा है मैं या तो संचयन करूं, मेरी खेती में इस्तेमाल हो, और उस संचयन करके पानी को ऐसे इस्तेमाल करूं कि ज्यादा से ज्यादा समय तक वो पानी रबी फसलों के लिए उपलब्ध हो पाए।
1: डॉक्टर मनोज हमारे किसान कर भी रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में भी आज जुड़े हैं अलग अलग राज्यों से किसान, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बात सभी कर लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो कम ही हो पाता है, लेकिन आप उनमें से हैं जिन्होंने लगातार कोशिश की कि कैसे पानी को बचाया जाए अपने गांव में, किस तरीके से शुरुआत हुई और आज के समय में क्या स्थिति आपके गांव में, अगर पानी की बात हम करते हैं क्या स्थिति है वहां पर?
2: हाँ जी सर, हम 2 साल से लगभग एक जूम सेमिनार कर रहे हैं
1: जी।
2: तो जूम सेमिनार पे हम खेती बाड़ी की प्रोग्राम करते हैं जिसमें फव्वारा गुंदग्रो एक तकनीक है जो किसान के लिए बहुत बढ़िया है, उससे बहुत पानी की बचत हो रही है।
1: उसमें
2: जोगी शर्मा जी भी हमारे साथ है, जो हम के जो किसान जुड़ते हैं लोग गांव के लोग हैं उनको जानकारी देते हैं, और पंजाबी यूनिवर्सिटी है उसमें भी हम जाके देख के आए, तो हमको पता चल रहा कि जो बारिश का पानी है उसको हम पी भी सकते हैं और इसको पानी को नीचे भी धरती में पहुंचाया जाए, इसलिए उसके लिए कोशिश की और ज्योति शर्मा जी को जूम सेमिनार किया और यूनिवर्सिटी जाके और भी लोग गए हम जाके देख के आए। तो एक पंजाब में एक बरनाला है, बरनाला जिले का गांव है फवाही
1: जी,
2: फवाही रवि कुमार शर्मा जी है वो 6 साल से पानी या जो पी रहे हैं 6 साल से, उसका क्या हम उसका प्रोजेक्ट देख के आए। उसके बाद हमने अपने घर में बनाया कि हमने आपको ऐसी नया मकान बना रहे हैं उसमें हमने एक पानी को पीने के लिए बनाया है नीचे, जो छतों का है पहले उसको 10 मिनट बाहर चला जाएगा फिर उसको स्टोर हो जाएगा।
1: तो ना सिर्फ खेती में बल्कि उसको पिया भी जा सकता है, घर में उसको हम पी सकते हैं, आपने इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है?
2: हाँ सर, ये इस तरह ही क्या किया है, जो रवि कुमार शर्मा 6 साल से पी रहे हैं
1: जी।
2: तो उसे हम देख के भी आए, तो पानी है इस तरह है वो बनाया इस तरह है सारा कि उसमें जो ना धूप ना जाए और हवा ना जाए तो पानी खराब नहीं होता बिल्कुल
1: जी।
2: 2-3 साल के बाद जब पानी को देखेंगे पानी में कोई भी जीवन नहीं पैदा होगा, कोई आपको मक्खी मच्छर कुछ भी पैदा नहीं होता, क्योंकि उसको उसमें धूप नहीं जानी चाहिए हवा नहीं जानी चाहिए, इसलिए उसमें हम जो स्टोर करेंगे हमने वो लगभग 16,000 लीटर का नीचे बनाया है
1: जी।
2: है एक धरती में, और जो हमारे छत का पानी है सारा
1: जी।
2: वो पानी 15 मिनट पानी होगा जो ऊपर भी जो ऊपर से बारिश आती है प्रदूषण होता है 15 मिनट पहले बाहर जाएगा पानी
1: जी।
2: 15 मिनट के बाद उसको हमने एंड कप लगा दिए हमारे जो स्टोर हो जाएगा सारा पानी, और जो स्टोर हो जाएगा उसको फिर टुल्लू पंप की सहायता से हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से फिर सारा हमारे फिर रसोई में पाइप लगाई हुई है तो उसमें फिल्टर लगा रखा है,
1: यानी जहां जहां आवश्यकता है फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है।
2: हाँ जी, इस्तेमाल कर जाता है, और जो उसके बाद फालतू पानी होगा उसके लिए हमने नीचे का बोर किया है 110 फुट
1: जी,
2: उसमें तो डाला है
1: और
2: जिस तरह भी हमको गाइडेंस दी गई है उसी तरह वो पानी को साफ करके बिल्कुल वो पानी को धरती में फिर रिचार्ज किया जा रहा है
1: जी।
2: इस तरह वो पानी है सारे का सारा जो हम पीने के लिए बरतेंगे और जो उसके बाद जो फालतू पानी होगा वो सारे घर का पानी जो भी होगा छतों का पानी होगा वो सारे का सारा हम धरती में रिचार्ज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो पानी का ऊपर आएगा और दूसरा ये है कि जो हमारे घर का पानी है उसकी जो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। वो बात ये सब लोगों को जरूरी है कि जिस घर में 10-15 हजार में बोर हो जाता है, जो स्टोर भी नहीं कर सकते, तो जो उस नीचे पानी जाएगा तो उसके घर का जो पानी है उसका टीडीएस ठीक हो जाएगा और उसकी चुस्ती हो जाएगी। जो नीचे का पानी जहां जहां खराब है वहां पर वो चाहिए कि पानी को नीचे धरती में भेजा जाए और उसके घर का क्या उसके आंध गुआंध का पानी भी जो है पानी भी पीने जो हो जाएगा।
1: बिल्कुल कुलदीप जी, बहुत अच्छा एक आपका जो प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं डॉक्टर मनोज, न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो शायद इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, इस तरह की जो तकनीक है उसको और बढ़ावा हमें देना चाहिए, जिससे जैसे कुलदीप जी इस पानी का सदुपयोग कर पा रहे हैं वो भी शहरों में भी हर घर में हो सके, गाँव में भी हो सके।
0: हाँ, वर्षा जल संचयन हमारे शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे आजकल पीने के पानी की बहुत समस्या है और पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है, वहां पर जितने भी हमारा पक्का क्षेत्र हैं, जहां भी मकान हैं, बहुत भारत सरकार या राज्य सरकारों ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि अपने मकान में, हर मकान में आप अगर छोटा सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दें, जितना छतों पे पानी गिरता है, आपके साइड में पानी गिरता है, वो सारा सारा एक नाली से इकट्ठा करके पाइप करके नीचे एक उसका टैंक बनाएं। लेकिन उसमें यह ध्यान देने की बात है कि कोशिश ये रहे कि गंदा पानी हमारे भूजल में ना जाए, उससे पहले फिल्टर बहुत अच्छा हो जिससे कि जितनी भी गंदगी है, जो भी आपकी छत पे पड़ी है या कोई चीज ऐसी गंदी पड़ी है, वो सारे का फिल्टर होके वो भूजल के में जाए और उससे भूजल का सुधार होगा, क्योंकि भूजल हमारा बहुत नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हमारे पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत भूजल आधारित होती जा रही है, और उसके कारण अगर हम वर्षा जल संचयन इस समय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा भूजल इतना नीचे चला जाएगा कि पानी की बिल्कुल ही उपलब्धता कम खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे हम बहुत राज्यों में ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि भूजल हमारे बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।
1: जी बिल्कुल, इसको सुधारना भी जरूरी,
0: खासकर हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा सुजड़ नहीं होगा, और ये हमें वर्षा जल संचयन एक मिशन की तरह से चलाना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो।
1: जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी कि एक मिशन मोड में इसको अपनाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी हमने देखा, ना सिर्फ जो नया मंत्रालय है उसकी शुरुआत की गई और उसके बाद अलग अलग योजनाएं जो हैं या हर किसी को जागरूक करने के लिए लगातार जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ज्योति जी जिस तरीके से भूजल स्तर की एक बड़ी समस्या रही है, आपको क्या लगता है क्या इसका एक बेहतर विकल्प हमारे पास है, समाधान जो है वो हमारे पास है, कैसे इसको फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं?
3: नहीं बिल्कुल, अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी जरूर होगा और हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जो मंत्रालय जल शक्ति अभियान लॉन्च करती है हर वर्ल्ड वाटर डे पे, उसमें जो उन्होंने 5 स्टेप्स कहे हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, आप रिचार्ज, आप बोरवेल रिचार्ज करेंगे, प्लांटेशन करेंगे और रिसाइकिल करेंगे वाटर और उसका रीयूज करेंगे, उन्होंने ये जो 5 स्टेप्स बताए हैं वो 5 स्टेप्स जो हैं, हमारा भी ऐसा एक फॉर्मूला है 5 आवर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो उसमें क्या है कि अगर हम वेस्टेज पानी की कम करें, थोड़े वाटर एफिशिएंट बने, वेस्टेज कम करें, अगर हम एक पानी का पुनः प्रयोग करें, अगर कोई भी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो कि एक बार यूज किए हुए पानी का हम पुनः प्रयोग कर सकें, जैसे कि हम अक्सर किचन में कोई चीज धोते हैं तो उसके बाद उस पानी का पौधों में प्रयोग करते हैं, तो अगर पुनः प्रयोग कर सकें तो वो। तीसरा आर क्या हो सकता है, रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, जिसके बारे में अभी हमने बहुत की, तालाब के थ्रू, चेक डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर संभव प्रयास से रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर करें। रिसाइकल वेस्ट वाटर, एक बूंद पानी को हम 9 बूंद पानी बना सकते हैं अगर हम उसको रिसाइकल करते हैं, तो रिसाइकलिंग फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मिनिस्ट्री इस चीज को जानती है, इसीलिए जल शक्ति अभियान का एक अभिन्न अंग है। एंड फिफ्थ ऑफ कोर्स, पानी की इज्जत करना, फिर से याद करें कि हमारे पूर्वजों ने हमको पानी की इज्जत करना सिखाया था, क्योंकि जिस चीज की हम इज्जत करते हैं उसका ख्याल रखना हमें खुद ही आ जाता है, हम खुद ही समझ जाते
1: हैं। बेहद जरूरी कि देखिए ख्याल जो है हमें रखना होगा, शुरुआत हमसे ही होगी, और जैसा मोदी जी ने कहा कि जो एक बूंद पानी है अगर आप उसको कर सकते हैं तो उसको 9 बूंद में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। और लगातार हमारे जो किसान हैं इस तरीके से ही कुछ काम भी कर रहे हैं। कुलदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया ना सिर्फ खेती किसानी बल्कि जो पीने का जो बारिश का पानी है वो पीने के लिए भी आप उसको योग्य बना लेते हैं। कई जगह देखते हैं कि जो खारे पानी की समस्या रहती है वहां भी क्या हम मान सकते हैं कि इस तरह से अगर जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किए जाए, इस तरह के जो तकनीक है अपना ली जाए तो शायद ये समस्या दूर होगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा?
2: सर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जिस जगह खारा पानी है ना उसके लिए तो इसका प्रचार करने की जरूरत है। जो गांव के लोग है उसकी प्रॉब्लम है कि इसमें जो खर्चा आता है, खर्चा का भी आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम है। इसमें जो कुछ समय है जो संस्थाएं काम कर रही है जैसे खालसा एड है, उस तरह की जो संस्था में जिनके पास फंड है या सरकार है, एक प्रॉब्लम है उस जगह पर, उसके वो जाके 2-4 घरों में 5 घरों में इस तरह के प्रयोग करके दिखा दें तो फिर लोग अपने आप कर लेंगे। और एक मैं और कहना चाहूंगा, जो भी लोग घर नया घर बनाते हैं वो स्टैंड बना लें कि वो जब नया घर बनाएंगे तो पानी को इस तरह कर लें। एक और बात है सर, जो रिसाइकल की बात चल रही है कि रिसाइकल कैसे किया, एक संगे खालसा गांव है पंजाब में
1: जी,
2: तो क्या है कि उसके लोग यूके के वहां के है NRI लोग, उन्होंने इस तरह किया है कि जो भी सारे गांव का पानी है, जो नीचे का जो खड़े के दरगाह का पानी है, गंदा पानी है, वो सारे का सारे को रिसाइकल करके उसको साफ करके तो फिर पाइप उसकी चली जाती है, उस पानी से फिर सारे गांव के द्वारे उसकी पाइप लगा दी तो उसके काफ हो जाती है, पशु नहाए जाते हैं, सब्जियों को पानी दिया जाता है, तो आप पशु नहाएंगे वो फिर पानी नीचे चला आ जाएगा उसमें, तो फिर रिसाइकल होकर चला जाएगा। इस तरह बार बार वो बार पानी घूमता रहता है
1: जी, बिल्कुल
2: बार बार पानी का बहुत बढ़िया तरीका है जी, इस पर भी काम किया जाए तो बहुत अच्छा है सर,
1: काफी अच्छा होगा। और आप भी लगातार हम कह सकते हैं कि अच्छा सराहनीय कार्य जो है वो आप लगातार कर रहे हैं, दूसरे किसानों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। फिलहाल कुलदीप साथ साझा करेंगे किस तरीके से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वही हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी, क्योंकि हमें भी अब आगे आना होगा इस पानी को बचाने के लिए, वर्षा जल संचयन करने के लिए।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: देखिए ये बात जो है हमारा किसान भी समझ चुका है, अपना योगदान वो इसमें दे रहे हैं, कैसे बारिश का जो पानी है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कुलदीप जी से जो कि पंजाब के एक सफल किसान थे, अब आइए रुक कर लेते हैं राम लखन जी का, ये हरियाणा के नुमेवास से हमारे साथ जुड़े हैं। राम लखन जी बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप पानी की बचत कर रहे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर
3: जो बारिश का पानी है जी इसको इकट्ठा किया गया है
2: जी, कैसे इकट्ठा करते हैं आप इसको?
3: इसका गड्ढा कर लिया जाए
2: जी, और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
3: सिंचाई के उससे उसमें खेत में प्रयोग किया जाए
2: जी। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो सतही सिंचाई करते हैं कि जो कच्ची नालियां हैं उसमें पूरी तरीके से जो पानी है बहता रहता है, आप किस तरीके से करते हैं?
3: हम तो इसी तरीके से करते हैं जी, कम से कम वो
2: चलिए पानी जो है उसका कम से कम इस्तेमाल, यानी प्रति बूंद अधिक उपज जो है वो हम ले सकें, हमारे जो किसान हैं इस दिशा में आके बढ़ रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, कहीं ना कहीं एक किसान को आवश्यकता ये होती है कि हमें मदद किस तरीके से मिल सकती है, और मदद ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अनुदान के रूप में हो बल्कि जानकारी भी अगर उनको मिल जाए, इस इंतजार में किसान रहता है आधुनिक तकनीक की जानकारी उन तक पहुंचे, प्रशिक्षण उनको मिल जाए, तभी शायद हम मान सकते हैं कि वर्षा जल संचयन जो है उसका महत्व और बेहतर तरीके से किसान समझ पाता है।
4: हाँ, हमारा किसान बहुत जानकार है बट साथ साथ उसको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता रहती है, तो हमारी कोशिश रहती है बहुत से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र हैं, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हर जिले में एक है, वो वर्षा जल संचयन या वर्षा का पानी का कैसे उचित उपयोग करें या पानी को कैसे उचित तरीके से लगाएं, इस तरह का प्रशिक्षण हमारे किसान भाइयों के लिए करते हैं। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम अभी भी चर्चा में कर रहे थे कि वो पानी को कैसे खेत में अपने रोकें, पानी का आपका जो तालाब है उसकी कैसे सफाई करें, जो नालियां हैं उनका कैसे साफ करके रखें, जिससे कि सारा सारा पानी जो आपके तालाब में ही इकट्ठा हो, और फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक विधियां इस्तेमाल करें। और इन प्रशिक्षण को देखकर वो किसान बहुत प्रेरित होते हैं, जैसे नई नई विधियां इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे किसान, जैसे हमारे अभी नू मेवास से जो आपने देखा होगा कि वहां पे उस क्षेत्र में बहुत रूप से फव्वारा सिंचाई होती है, कोशिश रहती है किसान की कि उस पानी को जो इकट्ठा हुआ है वो बहुत ही उचित तरीके से लगाया जाए, जितना पौधे को जरूरत है उतना ही लगाया जाए, ना कि केवल भरा जाए। भरने से सारा पानी भूजल में चला जाएगा, आपकी जो खाद है वो भी बर्बाद होगी, आप अगर फव्वारे से लगाएंगे तो जितना पानी चाहिए उतना ही लगाएंगे, उससे अब आप पानी को चूंकि आपने इकट्ठा कर लिया है और आप उचित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये रहेगी या पानी इतना बचेगा कि वो आपके आने वाले जो समय है यानी रबी फसलों के लिए उस समय बारिश जो कम होती है वहां पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसी फसलों को लें जो मौसम की हो, ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में पानी की कम उपलब्धता है और आपने धान की खेती कर रहे हैं, केवल उन फसलों की खेती करें जो आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के अनुसार हो, जैसे अगर पानी कम उपलब्ध है तो कम पानी पीने वाली फसलों का आप उगाएं, और कोशिश करें कि जितना बारिश का पानी बच रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि आपका और आपकी क्रॉप अच्छी रहे, आपकी फसल अच्छी रहे।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए ना सिर्फ फसल अच्छी रह सकती है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी आर्थिक की अगर हम समझते हैं तो आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है, और ये खासतौर से ज्योति जी अगर देखा जाए फिर चाहे हम ड्रिप की बात करें या स्प्रिंकलर की बात करें, इनके जरिए भी जो किसान है वो जान चुका है कि कैसे उसको पानी की बचत करनी है। लेकिन जब वर्षा जल संचयन की हम बात करते हैं तो आवश्यकता रहती है उस तरह की तकनीक या जो प्रशिक्षण है वो मिले, तो क्या आपके द्वारा या आपकी संस्था के द्वारा भी इस तरीके से जो जानकारी है वो दी जाती है अलग अलग जगहों पर?
5: हमारा तो एनजीओ इसी के लिए बनाया गया था
2: जी,
5: कि हम हर संभव तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो यू नो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट जैसे हम फार्मर्स के साथ हम मीटिंग्स करते हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम हर संभव प्रयास करते हैं लोगों तक एक ये जागृति लाना कि वर्षा जल संचय जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। दूसरा, कैसे करें, अपने घर में कैसे करें, अपने खेत में कैसे करें, गांव में कैसे करें, शहरी रूप में अगर शहर के आप प्राधिकारी हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, ड्राइंग डिजाइन देना, और फिर कि आप उसके लिए सरकार में कहां कहां प्राविधान है जिनसे कि आप फंडिंग का सपोर्ट ले सकते हैं, और आप कुछ खर्चा खुद करें और कुछ खर्चा सरकार जो है अपनी अलग अलग स्कीम्स के द्वारा आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो हमारा एनजीओ फोर्स जो है, हम गांव में और शहर में हर जगह इसका प्रचार भी करते हैं और मदद भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेन करते हैं, मतलब हर वो काम जो जरूरी है इसके लिए, डेमोंस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए या सपोर्ट क्रिएट करने के लिए, हम हर वो काम करते हैं। और आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहे इसके लिए मोस्ट वेलकम।
2: बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार जो मदद है वो की जा रही है। और वर्षा जल संचयन सिर्फ ये नहीं कि हम जो खेतीबाड़ी में जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता वहीं तक, बल्कि हमारे जो किसान हैं इसका इस्तेमाल अपने घर में जो पानी पीने योग्य है उसके लिए भी करते हैं। और खासतौर से यहाँ रामलखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से इनका रुख कर लेते हैं। रामलखन जी, जानना चाहेंगे आपसे, कुछ किसानों को इस तरह की धारणा बन जाती है कि अगर हमने खेत में ज्यादा पानी दिया है तो तभी फसल अच्छी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अगर पानी कम मिलता है तब फसल अच्छी नहीं हो पाती?
3: ज्यादा देंगे तो वो बेकार ही तो जाएगा जी।
2: जी बिल्कुल, बहुत सटीक शब्दों में
3: वो देखो उतरे
2: जी। रामलखन जी, बहुत सटीक शब्दों में आपने बात कही कि ज्यादा पानी वो तो बेकार ही जाएगा। खासतौर से यहाँ डॉक्टर मनोज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो कोशिशें वो की जाती हैं, जैसा आपने कहा कि सरकार द्वारा भी, और एक मिशन मोड जो है वो जरूरी हो जाता है। हर कोई पानी बचाने के लिए हम मान सकते हैं कि एक जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन वर्षा जल संचयन में जो भागीदारी है किस तरीके से उसको हम बढ़ा सकते हैं?
4: देखिए, ये सबकी जिम्मेवारी है, ये मतलब चाहे वो शहरी क्षेत्र के नागरिक हों या जो हमारे गांव के किसान हैं, सबकी जिम्मेवारी है कि जो वर्षा का पानी गुजर रहा है और निकल रहा है, क्योंकि हमारा पूरा जो वो पानी का चक्र है हमारे देश का, वो सिर्फ जून जुलाई अगस्त हमारे पूरे मुख्य नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जिससे पानी आता है मानसून से,
2: दक्षिण पश्चिम मानसून,
4: हाँ, जिसे कहा जाता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही बारिश होगी, और उस पानी को किसी तरह भी हमें इकट्ठा करना है। अगर हम जाने देंगे तो वो पानी बहता हुआ नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाएगा, और वो न केवल आपके लिए बेकार है और पूरे क्षेत्र के लिए बेकार हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहे कि या तो हम खेती में उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, नहीं हो रहा है तो हम उसको भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करें, भूजल में किसी तरह उसको बिल्कुल साफ करके या फिल्टर करके उस पानी को उसमें, और हमारे जैसे मैडम ने बताया कि आपको रिसाइकल करें, रिसाइकल करके ही, जैसे आप रसोई में, खेत में और बहुत जगह हम पानी देखते हैं कि आपका जो गंदा पानी होता है उसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके आप अपने, अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो कोशिश करें गार्डन में सिर्फ वो जो रिसाइकल वाटर है वो ही इस्तेमाल करें, आपका जो स्वच्छ पानी आपके नलों में आता है उसको इस्तेमाल ना करें। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे का अगर किसान भाई तैयारी कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं इस समय, वो किसी तरह भी वो समतलीकरण करा लें अपने खेत का, फिर चारों तरफ मेड़ पक्की करें, मैं दोबारा वही बात बता रहा हूं, और जिससे कि वो एक तो पानी कहीं भी रुकेगा नहीं, और वो पानी जितना आएगा वो पूरा पूरा आपके खेत में ही इकट्ठा होगा, और उससे आपकी ना केवल फसल अच्छी से रहेगी और आपके लिए वो जितना भी एक्सेस वाटर है या ज्यादा है उसको निकाल के, अगर आप ये देखते हैं कुछ फसलें ऐसी हैं कि ज्यादा बारिश हो गई तो जल निकासी की व्यवस्था करके, बट वो व्यवस्था ऐसे करें कि वो कहीं पे भूजल में जाके जुड़े हो, और या आपके तालाब में जुड़े, इसलिए सारा पानी आपका एक जगह इकट्ठा हो सकता है।
2: जी डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है उसमें किसान को इतनी जानकारी नहीं हो पाती, किस तरीके से उसकी जो शुद्धता है या उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं कैसे, क्या एक छोटा सा प्लांट या तकनीक कोई ऐसी अगर किसान चाहे या कुछ किसान मिलकर अगर इस तरीके से अपनाते हैं तो क्या ये संभव है?
4: बहुत सारी तकनीक आजकल हो गई है जो कि गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए आती है। आपने देखा होगा हमारे गांव में में, जो नालों में इस तरह की कुछ पौधे होते हैं जो जितना गंदा होता है पानी में वो उसको वो लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उसको इस्तेमाल करके भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक तकनीक ऐसी डेवलप करी है जो गंदों का गंदा पानी जो गांव का होता है चाहे वो शहर का होता है उसको इकट्ठा करके और उसको ट्रीट करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीट करके उस पानी को आप खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और न केवल और आपके जो गार्डन हैं उन सब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत साधारण तरीके से आजकल तकनीकें बहुत आ गई हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उस पानी को शुद्ध करके और आपके अपने कार्यों के लिए दैनिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से उसका सदुपयोग हम कर सकेंगे और लगातार जो किसान है हमारे वो भी इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हरियाणा के एक और किसान है हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम जी, मेवात से ही, इनसे आइए बात कर लेते हैं। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत विचार विमर्श में, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जी नमस्कार, किस तरीके से आपको लगता है कि जो वर्षा जल संचयन है जो बारिश का पानी है इसको हमें बचाना होगा और इसकी भी हर एक बूंद जो है वो कीमती है।
6: देखो सबसे बड़ी बात इसको जमीन जो बारिश का पानी अगर वो जमीन में चला जाए
2: जी
6: तो उस वो सबसे बढ़िया हमारा जो भूल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा जल स्तर है
2: जी।
6: तो जैसे मैंने अपने घर में कर रखा है जो पहले मेरे बोरिंग था एक तो मैंने अपने घर का पानी उसमें डाल रखा है बोरिंग में
2: जी।
6: हाँ तो उससे क्या है कि जो जल स्तर हमारा ऊपर आ जाएगा, खेत समतल होने चाहिए जी
2: जी,
6: जो हमारे खेत है बिल्कुल समतल होने चाहिए जिससे हमारा खेत जो बारिश का पानी वो हमारे खेत में रुक जाए
2: जी। विक्रम जी लेकिन आपको लगता है जो बाकी किसान है इस तरीके से जो प्रक्रिया है या तकनीक है इसको नहीं अपना पाते हैं और बारिश का जो पानी है वो बेकार चला जाता है?
6: हाँ बिल्कुल है जी, अभी हमारे जैसे यहाँ है जो फोर्स एनजीओ है जी
2: जी,
6: इन्होंने काफी जो लोगों को जागरूक किया है और इसका काफी असर देखने को मिल रहा है जी।
2: जी जाहिर तौर पर जो असर है वो
6: अब लोग जैसे
2: जी
6: हाँ जी
2: बिल्कुल,
6: हमारे फोर्स एनजीओ वाले बताते हैं जी यहाँ लोगों को जागरूक करते हैं उनका काफी असर देखने को मिल रहा है जी।
2: जी अगर आप बताना चाहें किस तरह का असर आप देखते हैं
6: उसको, जैसे पहले हमारे फ्लड इरीगेशन करते थे
2: जी
6: तो उसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता था, अब ज्यादातर लोग मिनी स्प्रिंकलर के ऊपर आ गए जिससे हम 90% तक पानी बचा सकते हैं जी।
2: बिल्कुल,
6: दूसरा खेत में गोबर की खाद डालते हैं जिससे पानी खेत के अंदर नमी बनी रहती है जी
2: जी
6: और कम पानी की जरूरत पड़ती है। और जैसे बताते हमारे जैसे वो पहले समय समय पर वो पानी ना देकर लगातार पानी चलाते रहते थे
2: जी बिल्कुल,
6: तो उनको जैसे बताया गया कि समयबद्ध पानी देना चाहिए जैसे जब जरूर हो फसल को तो ही पानी दे
2: जी,
6: वरना पानी बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है और उसका फसल को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान करता है वो।
2: बिल्कुल ये बात हर एक किसान तक जानना जरूरी कि जो पानी है अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो वो बेकार ही होगा, फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे फायदा नहीं हमें हो पाएगा। ज्योति जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी अपना जो अनुभव है विक्रम जी हमारे साथ साझा कर रहे थे, किस तरीके से क्या चुनौतियां भी आपको इसमें कुछ नजर आती हैं कि जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किसानों को बताया जाता है तो एकदम से वो तैयार नहीं हो पाते या इस बात को नहीं समझते कि यही पानी है जिसका सदुपयोग हम कर सकते हैं या इसको रिसाइकिल करके आगे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
5: बिल्कुल, यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपना सर उठाती हैं
2: जी।
5: एक तो यह है कि हमारी मानसिकता ये है कि पानी का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेवारी है और इसीलिए हर व्यक्ति ये सोचता है चाहे वो किसान हो चाहे वो शहरी हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये जिम्मेवारी सरकार की है इसलिए हम इसमें भागीदार नहीं है। दूसरा जो है लोगों के मन में ये धारणा है, एक गलत धारणा है कि जमीन के नीचे बहुत पानी है, आप जितना भी निकाल दोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा और गहरा जाना पड़ेगा, पर मन में ये विचार है उनके कि पानी है और बहुत पानी है और अगर हम जितना गहरा जाएंगे हमें पानी मिलता रहेगा
2: जी।
5: तो ये दोनों जो, और तीसरा ये है कि लोग आप आसपास देखते हैं कि वो इतना पानी बहा रहा है, ये फैक्ट्री इतना पानी ले रही है, हमारी वजह से पानी का स्तर कम नहीं हो रहा, दूसरों की वजह से कम हो रहा है, तो ये जो ब्लेम गेम है ये एक तीसरी प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर दोष डालता है, अपना जो रोल है उसमें उसको नहीं अक्नॉलेज करता, तो उसमें वो परेशानी हमें आती है जब हम लोगों को जागरूक करते हैं। पर मुझे खुशी है इस बात की कि इन पिछले कुछ सालों में शायद हर तरफ से इतना सुनने में आ रहा है पानी की प्रॉब्लम को लेकर, और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारत की जो आगे जो बहुत तेजी से भारत देश आगे बढ़ रहा है उसकी तेज ग्रोथ में अगर कोई बाधा है तो वो पानी का बाधा है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब हम लोगों को समझाते हैं तो लोगों को बात जल्दी समझ में आती है। दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि प्योर लर्निंग, तो अगर हमें किसानों को समझाना है तो हमारी की कोशिश ये रहती है कि जैसे आपने अभी विक्रम जी से बात की, रामलखन जी से बात की, तो अब यही किसान जो है यही दूसरे किसानों को समझाते हैं तो हमारी कही हुई बात से ज्यादा उस बात का असर होता है। तो ऐसे ही अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्योर चैंपियंस क्रिएट करें, ऐसे लोग क्रिएट करें जो उन्हीं के कम्युनिटी के हों और वो अपनी सक्सेस स्टोरी उनसे शेयर करें, स्वयं शेयर करें, हमारे माध्यम से नहीं, स्वयं बात करें, और उससे बहुत असर होता है। तो परेशानी है पर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग भी सही बात सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनको सपोर्ट भी सरकार की तरफ से, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से बहुत मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि अगले 5-10 साल में भूमिका काफी बदल जाएगी।
2: जी बिल्कुल, एक नई भूमिका जो है वो हम देख सकेंगे। जो भूजल स्तर है जो एक लगातार समस्या बनी हुई है उसमें भी सुधार देखिए हो सकता है अगर हम लगातार वर्षा जल संचयन करें। विक्रम जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसा अभी ज्योति जी ने कहा कि जो एक किसान है वो किसान की बात ज्यादा मानता है, आपको भी ऐसी लगता है जब आप दूसरे किसानों को बताते हैं कि वो बारिश का पानी है इसको सजो सकते हैं, इसका संचयन कर सकते हैं, तो आपकी बात ज्यादा मानी जाती है?
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: ये ज्योति जी आपने बहुत हम कह सकते हैं स्वाभाविक बात ये है कि जो किसान है वो दूसरे किसान की बात आसानी से समझता है, जबकि जो विशेषज्ञ हैं या वैज्ञानिक हमारे जब जाते हैं तब वो थोड़ा सा समय जरूर लेते हैं। लेकिन किस तरीके से अगर विक्रम जी की भी हम बात करें, हमने यहाँ कुलदीप जी का उनसे भी पूछा था, विक्रम जी के बारे में अगर आप बताना चाहें कि किस तरीके से विक्रम जी हों या दूसरे किसान हों इन्हें किस तरह की जो प्रशिक्षण है क्या वो दिया गया, फिर किस तरह की तकनीक अपनाकर ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो वर्षा जल संचयन है वो किया जा सके या जो पानी है उसकी और किस तरीके से बचत कर सकें?
5: जी तो हमारा जो हमारे मेरे 2 दशक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपको शुरू के जो 5-10 आपके लोग हैं जिनके माइंडसेट आपने चेंज करना है उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप केवल उनको बताकर पीछे नहीं हट सकते, आपको हर कदम उनके साथ चलना है, उनको कोई परेशानी आए तो उस परेशानी का हल निकाल के देना है। तो आप देख रहे थे जैसे विक्रम जी जब बात कर रहे थे उन्होंने केवल एक चीज की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ स्प्रिंकलर की बात नहीं की, उन्होंने गोबर की खाद की भी बात की, उन्होंने रूट जोन में वीट की नमी रूट जोन में हो उसकी बात की। अब तो अभी उनके पास समय नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे, पर एक्चुअली क्या है कि हमने उनको जैसे जैसे देखा कि उनके मन में कोई शंका आई तो हमने उस शंका को दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताया, उनकी पैदावार अच्छी रहे उसके लिए उनको जो भी सपोर्ट चाहिए हमने, चाहे वो सरकार से दिलाना हो चाहे खुद देना हो, हमने दिया। तो उसका नेट रिजल्ट यह है कि जब एक या दो बार वो उनको उनकी पैदावार में कोई कमी नहीं हुई, पानी भी बचा और जमीन की क्वालिटी भी हर साल बेहतर से बेहतर होती गई, हमने सॉयल टेस्टिंग भी की तो उन्होंने खुद देखा कि उनकी जमीन की क्वालिटी भी बेहतर हो गई है, भूजल की भी क्वालिटी बेहतर हो गई है, स्तर भी बढ़ गया है। और ये उन्होंने स्वयं जब देखा तो उन्होंने स्वयं ही लोगों से बात करने शुरू की। तो कहने का मतलब यह है कि जो जब बदलाव लाना है तो उसमें जो पहले कुछ लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ हमें केवल कहकर पीछे नहीं हटना, हमें उनके साथ जुड़े रहना है, उनको सक्सेस बनाना है, सक्सेस से लोग बदलते हैं।
2: जी बिल्कुल, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि लगातार जो बदलाव है ये हमें दिखता रहे। जैसा आपने कहा कि पिछले 2 दशक की आपकी मेहनत रही है, लेकिन यही मेहनत है जो हम मान सकते हैं कि आने वाली शताब्दियों के लिए भी काफी लाभदायक रह सकती है अगर ये पूरी तरीके से सफल हो जाए। आगे भी आप हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताएंगे किस तरीके से वर्षा जल संचयन का फायदा उनको मिल सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनू रेडियो आपड़ी वाते।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार जल संरक्षण से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर रहे हैं किसान साथियों। आशा कर रहे हैं कि आपको ये सारी जो जानकारियां हमें मिल रही है इसका हम सदुपयोग करेंगे, इसका हम हमारे अपने घरों की छतों से जो पानी आता है उससे भी संरक्षण करेंगे, साथ ही जो छोटे छोटे हमारे जो नालों में जो पानी फालतू में बहकर जाता है वहाँ भी हम मेड़ बदान के सहायता से वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि वो जल को हम बचाएं और अधिक से अधिक जल को हम भूमि के अंदर ले जा सकें, जिससे हमारे जो कुएं हैं वो उनमें पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ सके। किसान साथियों चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: वर्षा जल संचयन की किस तरीके से जो बारिश का पानी है इसका सदुपयोग किया जा सकता है, यहाँ डॉक्टर मनोज जानना चाहेंगे आपसे भी हम किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो काफी महत्वपूर्ण होता है।

0: और अभी जिस तरीके से हम मान सकते हैं जो बारिश का मौसम है वो चल रहा है, मॉनसून जो है हर राज्य में दस्तक दे चुका है, तो क्या ऐसे में भी किस तरह का जो प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जाता है जिससे किसान जागरूक हो सकें?
1: हाँ, इसमें वर्षा जल संचयन को अगर हम एक अकेले रूप में नहीं दे सकते, इसे हमें इंटीग्रेटेड वे में देखना पड़ेगा। उसमें सब चीज है, पानी का संचयन है, संरक्षण है, उचित फसल का चयन है और पानी जमीन की लेवलिंग है, प्रॉपर हमने उचित जो वो है उसकी गुणवत्ता वाले बीज हैं, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट है, इन सबको मिलाकर और साथ साथ उसका उचित प्रशिक्षण समय समय पर उसको किसान भाइयों को, हम लोग भी जाकर किसानों के खेत में भी जाके प्रशिक्षण देते हैं और या उनको भी आमंत्रित करते हैं अपने संस्थानों में या कृषि विज्ञान केंद्रों में, और उनको सारे सामूहिक रूप से अगर हम ये समझा पाते हैं कि ये पानी का असर बहुत लंबे समय तक जाने वाला है, इससे आपको अगर उचित पानी दिया, पानी इकट्ठा किया, संचयन किया, संरक्षण किया और उचित तरीके से उपयोग किया और उचित तरीके से लगाया पानी को और उचित आपने खाद दी, का ज्यादा खाद देने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा पानी देने से कोई फायदा नहीं हुआ, इन सबको सामूहिक रूप से इंटीग्रेटेड वे में अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा किसान ये देखता है कि अंत में उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है, उसे उत्पादकता बहुत अच्छी मिलती है और दाम भी बहुत अच्छा मिलता है और कम दाम में। तो जो हमारे भारत का लक्ष्य है कि हमारी किसान भाइयों की जो है इनकम डबल हो सके, वो उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वर्षा जल संचयन एक बहुत उपयोगी कदम है।
0: जी, यानी कदम एक लेकिन फायदे अनेक देखिए इसके जरिए हमें मिल सकते हैं। और खासतौर से ज्योति जी, अगर देखा जाए, आप भी लगातार जब किसानों से रूबरू होती होंगी, अलग अलग गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां भी शायद इसी बात की जानकारी दी जाती होगी कि भले ही आपको एक कदम यहां पर उठाना है लेकिन उसके फायदे हमें कितने मिल सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, और मैं एक्चुअली शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फैन हूं, तो उनकी एक पिक्चर है चक दे
0: जी,
2: और उसमें एक डायलॉग है, वो है कि ताकत से ज्यादा नियत की जरूरत है
0: जी।
2: तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है इस सेक्टर में वो यही रहा है कि जब नियत बन जाती है, जब हमारे किसान भाई ये नियत बना लें कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, अगर इन तीन चीजों के नियत बना लें तो आपकी सरकार, हम जैसे गैर सरकारी संस्थाएं, हर तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, आपके इस काम में आपकी ताकत बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ नियत बनाइए।
0: जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एक इस तरह का जो वैश्विक खतरा है वो भी हम देखते हैं और उस वजह से किस तरीके से जहां पर हम लगातार जो बारिश का असामान्य वितरण है वो हमारे सामने भी आता है, क्या ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा चुनौतियां रह सकती हैं और जो समस्या अभी है जो पानी कम होता जा रहा है ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले पाएगी?
2: एब्सोल्युटली, ये जो परेशानी है क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ेगी और इसके लिए सबको आगाह होना है। बरसात होगी तो बहुत होगी, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, दरिया सूखेगी, तो इस संदर्भ में और इस चीज से हम आंखें बंद करके नहीं जी सकते
0: जी।
2: तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई और घर में रहने और हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति उसके लिए प्रिपेयर करे, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ चले, अपने वर्षा जल संचय करें और ताकि जब अधिक बरसात हो तो बह ना जाए, वो आपके पास समेटी जाए, आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाए और जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें।
0: जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ किसान बल्कि जो हमारे शहरी क्षेत्रों में लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वर्षा का जो पानी है इसका संग्रहण करें, संचयन इसका करें।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आज से कुछ साल में, कुछ ही साल बाद 50% जनता जो है भारत की वो शहरों में ही रह रही होगी, तो शहरों में की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, शायद ज्यादा, क्योंकि अगर आप वहां ऐसा नहीं करेंगे तो वहां लड़ाई होगी, जब इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह में बिना पानी के रहेंगे तो शांति नहीं रह पाएगी। तो अपने घर परिवार को बचाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और अपने बच्चों को नौकरी देने के लिए, अगर आपके पास पानी नहीं होगी तो ना फैक्ट्री चलेगी, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना कंप्यूटर बनेगा, कुछ नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
2: तो इसीलिए शहरी लोगों की शायद ज्यादा जिम्मेवारी है क्योंकि उनके पास पैसा भी है, समझ भी है और उनको न केवल अपने यहाँ पर अपने गांव,
0: जी.
2: पीछे जो अपने गांव हैं उनके लोगों को भी पूरा पूरा सपोर्ट करना है कि वो हर प्रकार से वर्षा जल संचय करें.
0: और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आवश्यकता है पानी की वो हम सबकी है, फिर चाहे हम गांव की बात करें शहरों की बात करें, जो पानी है वो सब जगह एक सा है, उसका जो महत्व है वो एक है. और खासतौर से डॉक्टर मनोज आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है, किस तरीके से पानी की बचत हम कर सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण जो है आपने बताया कि किसानों की जो आमदनी है इसके जरिए भी दोगुनी हो सकती है, और किस तरीके से यहां पर अब हमें कदम उठाने होंगे जिससे आने वाले समय में इस तरह की जो समस्याएं हैं चुनौतियां हैं वो हमें नजर ना आए.
1: इसमें हम लोगों का एक आदमी का रोल नहीं है, सरकारी गैर सरकारी किसान शहरी क्षेत्र के नागरिक, हर आदमी का इसमें एक रोल है
0: जी.
1: जो पानी को इकट्ठा करने के लिए और पानी का उचित इस्तेमाल करने के लिए
0: जी.
1: उसके लिए हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो या भारत का कृषि मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो
0: जी.
1: चाहे वो नहरी क्षेत्र में अब नहर न बना के अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बनने की योजनाएं हैं और जैसा बन रहा है, और इन सबको तैयारी करके अगर हम पानी का इकट्ठा कर लेंगे तो उचित उपयोग जरूरी है. उचित उपयोग करेंगे तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, उचित तरीके से उगाएंगे तो हमारी उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी और अपने हमारा गांव और खुशहाल होगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो हमारा देश आप समझ सकते हैं कि कितना तरक्की करेगा. आज इसी उसका स्टार्ट सबसे मुख्य रूप से पानी है. अगर पानी को हम बचा के रखेंगे तो हम ये मान के चलें कि चाहे वो हमारे पास बैंक में कितना पैसा हो, अगर पानी उपलब्ध नहीं है या हमारी जमीन के नीचे पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गई या सतह रूप में हमने पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गई तो ये सारी तरक्की बेकार हो जाएगी. इसलिए मेरा तो सबसे अनुरोध है, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के नागरिक हों, गैर सरकारी संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं, जो हम लोगों के किसी मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, कृषि के वैज्ञानिक हैं, जो एक एक आदमी काम कर रहा है पानी को बचाने के लिए, उन सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी इस मिशन को हम कामयाब कर पाएंगे.
3: किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने लगातार जल संरक्षण को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना. किसान साथियों, आपने जाना कैसे आने वाला समय भयानक हो सकता है. किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत आवश्यकता है, हमें पानी के बचाव की आवश्यकता है, ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू अन्यथा पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. किसान साथियों, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस पद्धति में कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई हो सके, ऐसी सिंचाई को हमें करने की आवश्यकता है. साथ ही जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने हमें जैसे बताया कि फसलों को पानी की नहीं नमी की आवश्यकता होती है, तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें इन बातों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास हमारे जितने भी जल स्रोत है उसमें से हम काफ़ी पानी बहाते हैं और पानी का काफ़ी पानी हम बर्बाद करते हैं. तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें अपने रुख को मोड़ने की आवश्यकता है, हमें यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है. इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज़.

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वो मंच है जहां पर नए गायक, नए टैलेंट अपने प्रतिभाओं को दिखाते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी से। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर पुष्पा से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कौन है वो, कहाँ है वो, क्या करती हैं वो। डॉक्टर पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: नमस्ते, मैं पुष्पा हूँ, मुझे आप पुष्पा कुमारी के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और वर्तमान में मैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं अभी जोधपुर में हूँ। इसके पहले हमने 20 साल कोलकाता में बिताया है और वैसे मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है और यहाँ 2 साल हुए हैं मुझे जोधपुर आए हुए, पर ये जगह भी मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा जोधपुर भी सिटी है, इसको सूर्य नगरी कहते हैं हम। और बिहार के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, वो तो है अपनी परंपरा और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर पुष्पा एक साइंटिस्ट हैं, अभी वो जोधपुर में हैं जिसको राजस्थान का रियल हेरिटेज सिटी बोला जाता है, जहां पर अगर आपको रियल राजस्थान देखना हो तो आपको जोधपुर में दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर पुष्पा के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब डॉक्टर साहब। चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में मैं एग्जैक्टली क्या बनना चाहती थी ये मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि बचपन तो मैंने बहुत बिंदास गुजारे हैं। बचपन में मैं बहुत शैतानी भी करती थी और पढ़ाई में बहुत अव्वल रहती थी मैं। पढ़ाई मैंने बहुत मन से किया बचपन से ही। और स्कूली शिक्षा जब हमारी समाप्त हुई, मैं बता दूं आपको कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी पढ़ाई मैंने वहां से की। और जब हमने स्कूली शिक्षा समाप्त की, उसके बाद मेरे जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने MBBS के लिए कोशिश की। 3-4 साल अटेम्प्ट भी दिए उसमें, पर भगवान ने कुछ और फैसला रखा हमारे लिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं प्लांट जेनेटिक्स में काम करूं, रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो भी मेरा नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम मुझे एक मौका मिला, एक JRF शिप की इंटरव्यू की एक एडवर्टीजमेंट छोटी सी हमने देखी आफ्टर MSc, तो हमने उसमें अप्लाई की। और उसके इंटरव्यू के लिए हम गैंगटोक गए। गैंगटोक बहुत खूबसूरत सी जगह है, और वो जगह देख के मुझे लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया और तब से हमारी दिशा बदल गई। और उसके बाद हमने रिसर्च में अपना कैरियर शुरू किया 2002 से, और उसके बाद मैं फिर साइंटिस्ट बन गई। और डॉक्टर जो थे, जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, डॉक्टर पुष्पा कुमारी जरूर बन गई हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। डिजिग्नेशन, खैर मेरा पर्सनली मानना है ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। आपका जो काम होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो गुण हैं उनसे आपकी पहचान होती है। आप क्या काम करते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर पुष्पा की ही आवाज में।

0: बहुत प्यारा। पुष्पा जी, बचपन से लेकर आज तक की जीवन में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे थे और क्यों?
1: ये तो एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं अपने सारे टीचर्स का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही थी और इनफैक्ट मैं बहुत सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ। और वैसा ही आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे टीचर भी हमारे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को कम या ज्यादा महत्व नहीं दिया, किसी भी टीचर को। जितने भी हमारे गुरुजन शिक्षक रहे, शुरू से हमने सभी को इक्वल मान दिया, सम्मान दिया। और वैसे मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब जैसे क्लास 1-2, ऐसे जो मुझे याद है, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, हमारे एक टीचर जो अभी भी है हमारे, रामबालक सर हम उनको बुलाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया है और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इनफैक्ट गाना गाना भी उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने शुरुआत की कि चलो ठीक है, इसको गाना आता है। उनको बहुत अच्छा आता था गाने, वो मुझे भी साथ साथ गवाया करते थे। और उसके बाद फिर अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ, आज मैं जो बनी हूँ, उसमें हमारे स्कूल में नवोदय विद्यालय के जो प्रधान जी थे, जो है अभी भी, डॉक्टर श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी, तो वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते हैं, करते थे उस समय। और जो उन्होंने हमारे अंदर वैल्यूज दिए हैं, और उसके एवज जो मैं आज बनी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी किसी के भी सामने खड़ी हो सकती हूँ। और मतलब आप क्या कह सकते हैं उसमें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन वे जो होता है, एक ट्रूथफुलनेस जो होता है, अपनी ड्यूटी के लिए जो आपकी सच्चाई है, वो आप कैसे वो करते हैं, कैरी करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई और इनकलकेट किया हमारे अंदर, जो वैल्यूज होते हैं मानव के जीवन में जो होने चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी हर बच्चों को मिले, कि उनको ऐसे अच्छे टीचर और गुरु मिले जो उनका जीवन संवार सके, जो मुझे मिला, मैं भगवान का बहुत बड़ा उपहार समझती हूँ।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत।
1: और मैं एक और नाम लेना चाहूंगी इसमें, जो हमारे गुरु हैं अभी फिलहाल, मैं जिनसे संगीत की शिक्षा ले रही हूँ, ये मुझे अभी मिले हैं, मतलब 6-8 महीने पहले, वो भी SM के थ्रू इनसे जान पहचान हुई हमारी, और इनसे मैं अभी जुलाई से मैंने सीखना शुरू किया है। ये भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और इनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है, और इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, और जो मेरी सांगीतिक शिक्षा रहेगी अभी जीवन में इसके आगे, मुझे लगता है कि इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उसमें।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात कही आपने पुष्पा जी। जो मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है, आपके टीचर्स से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे, बहुत मोटिवेटेड रहे, सारे टीचर्स को आपने बहुत रेस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। मुझे जो समझ में आया वो ये कि आपके सारे टीचर्स ने आपको बहुत विनम्र और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ तैयार किया। आप विनम्र हैं, हर चीज का श्रेय आप देना चाहती हैं, ना कि खुद लें। ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कलाकार के लिए कि वो विनम्र रहे, अहंकार का आप ही उसको छू के ना जाए, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही प्यारा गीत पुष्पा जी का, जो हम पुष्पा जी के सारे टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं, और खास करके वो टीचर जो आज की डेट में पुष्पा जी का साथ दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। तो आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी आपसे पूछना चाहूंगा आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए, ऐसे ऐसे कौन से तीन शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, जो आपको सबसे अच्छा डिफाइन करेंगे, आपकी शख्सियत को बयान करेंगे, आपकी शख्सियत पर सूट करेंगे, ऐसे तीन शब्द बताइए।
1: अच्छा, इसमें आप सबसे पहला तो ले सकते हैं, मैं बहुत ही डिसिप्लिन रही हूँ, तो यू कैन से दैट आई एम अ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन, और जिसको मतलब क्या करना है उसके लिए किसी को कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो मैंने खुद से किया। जब मुझे सेंस हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, देन आई एम वेरी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट कि मुझे ये करना है। और दूसरा मैं कह सकती हूँ आपको, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ तो कंपैशनेट हो सकती हूँ मैं दूसरों के प्रति। मुझे लगता है कि कोई सामने अगर कोई दुखी हो रहा हो किसी रीजन से, और मैं अगर उसको समझ पाती हूँ तो उसको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे अगर किसी के बात करने से या उससे बात करने से अगर उसकी कुछ तकलीफ कम हो जाए या फिर उसकी समस्या का समाधान हो सकता हो तो मैं करना चाहती हूँ। और खुश देखना चाहती हूँ मैं दूसरे लोगों को भी, और ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ। अगर कुछ घटना ऐसी भी हो जाए जिससे दुख पहुंचे तो मैं उसमें थोड़े, अब मानव हूं तो दुखी तो हो ही जाती हूँ थोड़े कुछ पलों के लिए, लेकिन फिर मैं उसमें बाद में ये सोचती हूँ कि इसमें अच्छा क्या हुआ या इसका अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान कुछ करता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखता है और एक जो नहीं दिखता होता है। तो जो अच्छाई जो नहीं दिख रही होती है, अगर उसमें कोई अच्छाई छुपी हुई है तो हमें उसको देखना चाहिए, और मैं देखने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ अपने आप को भी, और ऑप्टिमिस्टिक आप कह सकते हैं मुझे।
0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात
1: जी,
0: बड़े ही प्यारे तीन शब्द जिन्होंने आपको डिफाइन किया। दोस्तों अब आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर पुष्पा कैसे हैं। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत पुष्पा जी की आवाज में।

0: बहुत खूब। चलिए एक मजेदार सा ट्विस्ट लेते हैं, एक मोड़ लेते हैं। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने क्या बनाया और वो कैसी बनी?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। खाना बनाना मुझे कभी आया नहीं, और इसके कुछ मजेदार वाक्य हैं जो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी
1: सबसे पहले एक्चुअली मैं स्कूलिंग हमारी ऐसी थी कि वहाँ हमें मेस की सुविधा रही, कभी भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो पहलू था, बाद बाकी सारे काम हमें खुद करने होते थे, तो सब तो हमने सीख लिया। खाना बनाना नहीं आता था, और घर में भी मैं बहुत लाडली प्यारी थी सबकी, तो किचन तक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी लोग जाने नहीं देते थे, तो चलो ठीक है, अभी खाना बनाना आया नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि घर में कोई था नहीं, मैं अकेली थी और पापा थे। शाम को पापा के बहुत सारे दोस्त आते रहते थे, हमारे पापा समाज सेवा में रहे शुरू से, तो लोग मिलने के लिए आते रहते थे बहुत सारे। उस दिन भी कई लोग इकट्ठे आ गए। उन्होंने, मेरा भाई चाय बनाया करता था, तो भाई था नहीं, पापा ने बोला कि चाय चाय बना दो, चाय चाय भिजवा दो। अब कोई था नहीं, तो मैंने चाय बना दी और चाय बना दी और दे भी दी। उसके बाद सब लोग चले गए, पापा ने कुछ बोला नहीं। और दूसरी बार जब कुछ हुआ तो मैंने उनको पूछा कि पापा मैं बना दूं, तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला ना ना रहे दा, मतलब ना ना छोड़ दो, प्लीज आप मत बनाइए, रहने दीजिए। इसका मतलब ये था कि वो चाय ऐसी बनी होगी कि उन्होंने दूसरी बार प्रीफर किया होगा कि मैं नहीं बनाऊं।
0: ओ माय गॉड क्या बात है, क्या बात है।
1: और खाना बनाने के संदर्भ में मैं ये बताऊं आपको कि जब मैंने अपनी रिसर्च के लिए गैंगटोक सर्कल में जब ज्वाइन किया था एज अ JRF, तो जब मैं वहां गई तो वहां मुझे खाना बनाने की सबसे पहली बार जरूरत पड़ी 2002 से। तो मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो हमारी दीदी ने मसाले दिए थे मुझे कि सब्जी में डालने के लिए, हल्दी और धनिया मिर्ची। ये उसने रेशियो बताया था कि 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची ऐसा डालना। और मैं अगर सब्जी बनाऊं, एक आलू और एक आदमी के लिए एक आलू और कुछ इतना डालू, तो उसमें मसाले में वही डालती थी, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया।
0: ओहो, फिर तो क्या बनता
1: तो वो क्या बनता था उसके बाद वो खाई ना जाए और फेंकी भी ना जाए। तो मैं उसको क्या करती थी कि उसको मैश करके और फिर वो बना के कुछ पॉलीथीन में डाल के उसको कचरे में ले जाके उसको डिस्पोज, गैंगटोक में आप जहां तहां कचरा भी नहीं फेंक सकते, तो उसको बैग में भर के फिर हमें मार्केट में ले जाके डालना पड़ता था। तो खाना बनाने के साथ जो हमारी है थोड़ी सी मतलब ये समझदारी उतनी अच्छी है नहीं हमारी, अब तो थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं तो बन जाता है खाने के लायक।
0: ओके ओके ओके ओके, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात। दोस्तों आपने सुना किस तरीके की घटनाएं और किस तरीके की जुझारूपन पुष्पा जी ने दिखाया।
1: जी, खाना बनाने से वास्ता हमारा नहीं रहा शुरू से, तो इस फील्ड में मैं थोड़ी
0: रियली फन बहुत बढ़िया
1: जी।
0: तो चलिए दोस्तों, हो जाए पुष्पा जी की ही आवाज में एक प्यारा सा गीत।

0: आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा पुष्पा जी कि गाना गाने के अलावा, संगीत के अलावा आपकी हॉबी क्या है?
1: जी मैं एक्चुअली सबसे बड़ी हॉबी तो मेरी गाना सुनना और गुनगुनाते रहना और गाते रहना ही रहा है बचपन से. इसके अलावा मैं ड्राइंग भी करती हूँ, तो बचपन से मैं थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर लिया करती थी. उसमें पेंसिल आर्ट ज्यादा अच्छा था हमारा, क्योंकि फिर जब मैं पेंसिल का कुछ वर्क करती थी तो हमारे एक टीचर थे, वो उनको अगर पसंद आए तो वो कहते थे ये मुझे दे दो, तुम इसको और कुछ मत करो. तो कभी कलर कलर जो है उस पे करने का मौका नहीं मिला. तो पेंटिंग इनफैक्ट विद द कलर्स उतना अच्छा नहीं था, पर हाँ अब ये जो ड्राइंग हमने उस समय की उसका मुझे अभी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है कि मैं बोटानिकल आर्ट्स की जो लाइन ड्राइंग होती है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, और जिसके लिए मुझे मतलब क्यू जर्नल्स या वहां से भी अप्रिसिएशन मिले कि आपकी बोटानिकल लाइन ड्राइंग्स बहुत उम्दा क्वालिटी की है और काफी अच्छी बनी. हमारी अभी जो बुक आई है उसमें भी सारे हमने खुद बनाए हैं. और इसके अलावा पुरानी फिल्में देखना मुझे पसंद है, और फिलहाल आप वॉक करना मुझे बहुत पसंद है. जैसे मैं इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे मैं जाती ही जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है करना.
0: बहुत खूब, बहुत खूब. बस यूं ही बात को जरा सा आगे बढ़ाने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा पुरानी फिल्में देखना आपको पसंद है, कौन सी फिल्म लेटेस्ट में आपको पसंद आई है?
1: अभी हमने थोड़े दिन पहले दोबारा से मंडी देखी थी, और एक मूवी आई थी आलाप जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, और वो मैंने देखा ऐसे ही
0: क्या
1: आपके प्राइम उस पे. जी दो मूवी हमने पुरानी देखी है, मतलब 10-15 दिन पहले तक.
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी का ही.

0: जी
1: पुष्पा जी, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ
0: जी
1: लोगों के व्यवहार में, किसी के मैनरिज्म में कहीं कुछ आप ऐसा पाती हैं जो आपके एक अच्छे खासे मूड को खराब कर देता हो? ऐसा क्या होता है?
0: हाँ जी सर, होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, और उस समय कोई सामने आपके साथ जो लोग हैं या फिर आपके ऑफिस में, आपके घर में, कहीं भी, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं।

0: का जो टाइम है वो पूरा चला जाता है उसमें। आपकी पॉजिटिव जो दिशा में एक आपकी सकारात्मक एनर्जी जाना चाहती थी वो फिर वहां से ड्रैग आउट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उल्टे दिशा में लेके जाती हैं। आपको कभी कभी आप इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, तो या फिर अपने ही लोगों में जब अनबन सी रहे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई बात समझ नहीं रहा, आपका कोई अपना ही खास आदमी हो वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, या उस तरीके का कुछ ऐसा आ जाता है मैटर, तो फिर ये इन सारी चीजों से थोड़ी परेशानी तो होती है
1: ओके ओके ओके, हम
0: जी।
1: इंसान हैं पुष्पा जी। दोस्तों आपने सुना, किसी भी इंसान की तरह पुष्पा जी भी परेशानी महसूस करती हैं लोगों के व्यवहार से। ये सवाल जानबूझकर मैं हमारे टैलेंट से इसलिए पूछता हूं दोस्तों कि हम इनके जवाब को सुनते समय खुद को चेक कर पाए कि कहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, और किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हम अपने आप को सुधार लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक प्यार सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी की ही आवाज में।

0: आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी, हमें बताइए ना, आपकी जिंदगी में अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
1: सर देखिए, मैंने लगभग अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा ही पार कर ली है अभी तक तो, और मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने लोग हैं, जैसे मेरी माँ पापा, पापा तो अब खैर फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उनका धरती पर, लेकिन फिर भी जान में तो रहते ही हैं।
0: जी
1: और जो अपने मतलब भाई बहन हैं, तो इनको सबको जरूर लगता है कि दीदी ने बहुत अच्छा किया है कुछ, तो दे थिंक कि मैं जैसे मैं साइंटिस्ट बन गई या फिर मैंने किताब लिख ली, मेरी कोई बुक पब्लिश होके आ गई,
0: जी
1: तो इन सारी चीजों से उन लोगों को लगता है कि हाँ दीदी ने कुछ अच्छा काम किया है। मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ तो योगदान है मेरा। जैसे मैं अभी बताऊं आपको कि मैंने मेरा जो काम है बेसिकली साइंटिस्ट के तौर पर, वो मैं बैम्बूज के ऊपर काम करती हूँ। मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ और टैक्सोनॉमी पे काम रहता है हमारा। टैक्सोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, उसकी क्या उपयोगिता है, और उसमें आप और फर्दर उसका क्या यूज हो सकता है, कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑन ग्राउंड जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा जो हमने 2002 में अपना सफर शुरू किया था रिसर्च का, और लगभग 20 साल काम करने के बाद एक हमारे BSI की तरफ से जो पब्लिकेशन आई है, हमारी फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज हमारा पूरा रिवाइज हुआ है, उसमें बैम्बू स्वाइटी एक सेपरेट वॉल्यूम बन के आई है, जो कि 50-100 साल तक लोग उसको रेफर करेंगे, और वो एक बेस जो जो होता है रिसर्च का वो रहेगा, तो पूरी दुनिया में उसको लोग जानेंगे। तो ये मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये हमारा एक योगदान, एक उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं।

0: अपनी सोच सकारात्मक रखें तो सब कुछ अच्छा दिखता है और अच्छा होता भी है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो अपने लोग हैं कम से कम उनसे जुड़े रहे, क्योंकि आजकल डिजिटली तो हम लोग जुड़ गए हैं, लेकिन जो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता था वो काफी हद तक, और एक विश्वास जो है वो काफी हद तक बहुत दूर हो गया है लोगों से। तो उन सब चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़कर, और जो जीवन के जब लास्ट एक वो आता है, आदमी जब सोचता है कि हमने पूरे जीवन बिता लिए और ये नहीं किया, लोगों से जुड़े नहीं रहे, तो अंत समय में एकाकीपन और ज्यादा खलता है। उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहता करने को, तो समय हमें एक बेहतर वो देने का तो जरूर उपाय करता है, आपको मौका देता है, तो आप उस तरीके से जिए। और अंत में मैं अपने आपके इस चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी लोगों को कि यहाँ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो एक से एक बढ़िया कलाकार है, और सब लोग अच्छा कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा हो सकता है, और वो अपनी प्रतिभा को और अच्छा निखार सकते हैं, यहाँ पे उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जारी रखें और भरपूर भरपूर सहयोग जो है वो देने की कोशिश करें।
1: बहुत खूब डॉक्टर पुष्पा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यारी बातें कही आपने। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने। थैंक यू सो मच।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया लोगों से जुड़ने का, क्योंकि ये एक पहला हमारे लिए भी मौका है जहाँ हमारे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं लोगों से सीधे जुड़ सकूँ, बात कर सकूँ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को हमारा प्रणाम, नमस्कार।
1: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूं। आज हमारे साथ जो प्रतिभा, टैलेंट, गायक मौजूद हैं वो हमारे बहुत सीनियर गायक हैं, बहुत रेस्पेक्टेड सिटीजन हैं। ये हैं अरविंद कुमार सक्सेना साहब,

0: बहुत ही प्यारी शुरुआत, बहुत ही प्यारी गायकी, बिल्कुल पुराना अंदाज सर, सुन के बहुत मजा आया। अरविंद सर, हमारे सभी लोगों को जानने के लिए जो भी आज इकट्ठा हुए हैं आपकी गायकी को सुनने के लिए, थोड़ा सा बताइए ना, आपकी संगीत की, आपकी गायकी की शुरुआत यात्रा कब से शुरू हुई और आज तक आपके संगीत के सफर में क्या क्या रहा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए।
1: गाने का शौक तो मुझे शुरू से बचपन से ही रहा है। एक तो कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर भी संगीत में ही था। मेरे सभी परिवार के जो मेरे मदर फादर सिस्टर सभी लोग गाते थे, हारमोनियम वगैरह बजाते थे, ढोलक बजाते थे, तो एक संगीत का वातावरण तो घर में रहा ही सही। फिर स्कूल में जब थे हम लोग तो विभिन्न जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन सभी में पार्टिसिपेट करना था, करना हुआ, और क्योंकि शौकीन रहे। लेकिन नौकरी के बाद जब हमारी नौकरी लगी तो उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि हम थोड़ा यूनियन में ज्यादा दखल अंदाजी हो गई और एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। पूरे राजस्थान का मैं जनरल सेक्रेटरी था, बैंक ऑफ राजस्थान एम्प्लॉयज यूनियन का, तो वो व्यस्तता ऐसी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया। घर पे मेरे ट्यूटर आते थे, दिनेश डांगे जी हैं जो स्वर्गीय, अब तो रहे नहीं वो दुनिया में, उनसे मैं सीखता था। तो क्लासिकल की मैंने शिक्षा वहां से शुरू की और उसके कोई 2-3 साल सीखा होगा, तो फिर वो भी कहीं व्यस्त हो गए और हम भी अपने नौकरी में व्यस्त हो गए
0: जी।
1: उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमने दोबारा से महेश मुसाफिर एकेडमी है उसको ज्वाइन करा, वहां से फिर कुछ क्लासिकल सीखा और फिल्मी गाने और ये तो गाते रहते थे मौके पे, जब भी कोई मौका मिलता था।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना कि जिस तरीके से उम्र बढ़ती है इंसानों की प्रतिभा भी बढ़ती है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अरविंद सर ने बढ़ती हुई उम्र के साथ संगीत को अपनाया, क्लासिकल शिक्षा शुरू की, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बुजुर्गियत में लोग निराश हो जाते हैं, बैठते हैं कि साहब बहुत काम कर लिया, अब नहीं करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन वहीं गलती होती है। अरविंद सर लगातार आगे बढ़ते रहे, संगीत के प्रति जो उनकी मोहब्बत थी उसको उन्होंने अगले नए आयामों तक ले गए और उन्होंने संगीत को सीखा। वो आपको इनके गीतों में सुनाई भी दे रहा है दोस्तों, तो आइए इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं, संगीत को सुने अरविंद जी के, और फिर आगे बढ़ते हैं अरविंद जी से बात करने के लिए।

यस तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से पता कर ही लिया है कि आज हम संकल्प 22.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा में नंबर बनाने का जो पूरा और कंप्यूटर को आप डेडिकेट होके पढ़ेंगे। रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, तो दूसरा ये मान के चलिए कि 2-3 क्लासेस में हम बाकी सभी सब्जेक्ट को फिनिश कर लेते हैं, तो ये भी अच्छा है कि आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं। रही बात क्लासेस के मोड की, तो क्लासेस हम वीडियो पीडीएफ दोनों देते हैं। अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो हमारा लाइव रिकॉर्डेड दोनों है। आप बोल रहे हैं सर मुझे आज ज्वाइन करना है, आज में ही पूरा बैच देखना है, तो भाई पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। नहीं सर आप डे बाई डे पढ़ाएंगे तो हम डेली लाइव भी जोड़ेंगे, और लाइव का एक ऐसा टाइम है कि हर स्टूडेंट आ सकता है। जैसे सीपीएसईडी को ज्यादातर जॉब वालों को नीड है, तो जॉब वाले शाम को फ्री है, तो हमारी क्लास का शाम को ही टाइम है, ठीक है, तो उस बात की चिंता करनी नहीं है। अगला पॉइंट है कि आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो हर एक टॉपिक के बाद हम एक्स्ट्रा लाइव प्रैक्टिस और डिस्कशन सेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी रखते हैं, अगर किसी टॉपिक में पॉसिबिलिटी बनती है, वरना हम लोग डिस्कशन प्रैक्टिस और डाउट तो रखते ही रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे जाते हैं, तो आगे जाने के बाद हम कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम से पहले आपका रिविजन और प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है, साथ ही साथ में जो खास बनाता है इस बैच को वो है सेपरेट क्लास रहती है, 100% क्वालिफाई स्पेशल क्लास। ये क्लास वो है स्पेशली जॉब वालों, जैसे जॉब वाले का